प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: सुबह के 6 बज रहे हैं, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा अकबर अली से। सुमायरा आपको सलाम।
1: नमस्कार रादाब। साल 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस का घाटा बेहतर हुआ, वो 1.1 बिलियन रुपए तक आ गया, यानी मूल घरेलू उत्पाद GDP का 0.6%। पिछले साल की इसी अवधि के दौरान घाटा 6.2 मिलियन रुपए था और ये घाटा GDP में 3.7% का प्रतिनिधित्व करता है। ये हालत पर्यटन और सेवाओं की बदौलत बेहतर हुई है, लेकिन मॉरिशस अपने निर्यात से ज्यादा पैदावारों का आयात करता जा रहा है। राष्ट्रीय बजट में पेंशन सुधार के सिलसिले में बहसें जारी, श्रमिक संघ का दबाव है और वो सरकार के साथ बातचीत करने की मांग कर रहा है। कल सिकोम एम्प्लॉयज यूनियन प्रेस से मुखातिब हुआ प्रवक्ता दीपक बेनीडी ने बजट में ऐलान किए गए कदमों को लेकर अपनी नारजामंदी दोहराई है। स्वास्थ्य सेवाओं में उच्च शिक्षा की तरक्की में मॉरिशस ने एक नया चरण पार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट स्टडीज IIMM मॉरिशस के बीच सहयोग हो रहा है ताकि मॉरिशस में भावी डॉक्टरों के प्रशिक्षण को और ठोस बनाया जा सके। इस समझौते के जरिए मंत्रालय की निगरानी के तहत संस्था के मेडिकल तलबा सर शिव सागर राम गुलाम अस्पताल, खास अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों में अपना क्लिनिकल प्रशिक्षण ले सकते हैं। वाकवा में तकामका पुल अब फिर से कार्यरत होने लगा है। ये पुल 60 से ज्यादा साल पुराना है, जिस पर दो बसें एक ही वक्त पर नहीं गुजर पाती थीं, लेकिन कार्यों के बाद अब ये पुल फिर से कार्यरत है। विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी से निपटने के लिए इलाज की कोशिश की जाने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया कि पहले मरीज की जिम्मेदारी ली गई है। कोंगो में 1400 से ज्यादा मामले पाए जा चुके हैं और 438 लोग जान से गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।
2: Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत समात फरमाई। सैयदुश शुहदा हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन कुरान पाक के नातिक थे, उनके रहनुमा थे, उनकी ज़िंदगी कुरान मुकद्दस की तफसीर थी और उनकी कुर्बानी कुरान की हिफाजत। जब जंग उरूज पर थी तब भी ज़िक्र इलाही जारी थी। कुरान पाक दिल का सुकून है, रूह की ग़िज़ा है। जो कुरान और ज़िंदगी पर कायम हो जाए वो हुसैन के काफ़िले में शामिल हो जाता है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन और शेर रखा। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद माजिद हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से इल्म दीन का बेशबहा खजाना पाया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इल्म से भरपूर गुफ्तगु ऐसी दिलनशी होती थी कि लोगों की ये ख्वाहिश होती कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु खामोश ना बैठें।

सामईन कराम, मैदान करबला में हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन पर जान, माल, औलाद, भूख, प्यास, खौफ और तानेबाजी जैसी सब आजमाइशें आईं। आप रदी अल्लाह ताला अन के ख़ानदान वालों को बेहद सताया गया, मगर आप रदी अल्लाह ताला अन सब्र व इस्तकामत का पहार बने रहे। दुश्मनों के जुल्म व सितम के बावजूद आप रदी अल्लाह ताला अन उन्हें बराबर नेकी की दावत और इस्लाम की तालीमात देते रहे। एक लफ्ज़ भी बेसब्री का अदा ना किया, हत्ता के सजदे की हालत में भी अपनी जान का नजराना बारगाह खुदावंदी में पेश कर दिया।

मोहतरम सामईन, उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आपका खैर मकदम करता है। हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन नमाज, रोज़ा, सदकात व खैरात, तिलावत कुरान और हज व उमरा वगैरह जैसी सारी इबादात कसरत से किया करते थे। आप रदी अल्लाह ताला अन को हज का बड़ा शौक था। चुनांचे मरवी है कि आप रदी अल्लाह ताला अन ने 25 हज पैदल अदा फरमाए। सामईन अब ये नाज शरीफ मुलायजा फरमाइए।

0: सामईन कराम इमाम आली वकार हजरत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तन की करम नवाजी की क्या बात है। कभी आप रदी अल्लाह तन किसी की मुश्किल दूर फरमाते, कभी किसी गरीब की हाजत पूरी फरमाते, कभी किसी मुसाफिर को नवाजते, तो कभी किसी की मजबूरी और बेबसी का जिक्र सुनकर उसकी इमदाद के लिए तैयार हो जाते। यकीनन सखावत का अजीम वस्फ आप रदी अल्लाह ताला अन्को अपने नाना जान रहमत आलिमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासत में मिला था।
1: बिल्कुल गलत लिखा हुआ तारीख में है ये।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये हकीकत है कि जो शख्स अपने दिल में मोहब्बत अहले बैत बिलखुसूस इमाम आली वक़ार हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लेता है, वो दुनिया व आखिरत की बरकतों से नवाजा जाता है। दरअसल अहले बैत की मोहब्बत दुनिया व आखिरत की बेशुमार भलाइयों का सरचश्मा है, यहाँ तक कि अहले बैत की मोहब्बत शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने का ज़रिया है।

सजदे तो सब ने किए, तेरा नया अंदाज था। सजदे तो सब ने किए, तेरा नया अंदाज था। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज था। मोहतरम सामईन, इसी शेर के साथ हमारी आज की सबाल खैर नशरियात अख्तिताम पजीर होती हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस माह मुकद्दस के फ्यूज़ व बरकात से माला माल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाजत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सामईन, आपका मेज़बान निसार अख्तर अब इजाज़त का तलबगार है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

द्वारा पण तमे अमारी साथे कनेक्ट थई शको छो 5250600 तो चालो करिए एक शरत एक मधुर शरुआत राजेश अहिरना आजना आ प्रथम गीतनी साथे जेमा साथे स्वर आप्यो छे गीताबेन रबारीए।

प्रणाम श्रोताओं, घड़ी मिलाते चलिए समय 10:45 हो चुके हैं। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। कहते हैं जब सभी मार्ग बंद हो जाए तो बस एक ही द्वार खुले रहते हैं और वो हैं परमात्मा के। जिसने भी नाम धरा परमात्मा का, उनका हमेशा कल्याण ही हुआ है। जिसके हृदय में भक्ति शक्ति और आस्था है, उन पर परमात्मा की कृपा अवश्य रहती है। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से।

जाता है कि माता रानी की अनेक रूप हैं और वो शक्ति का स्वरूप है। जब जब भी उनके भक्तों पर संकट आती हैं, तो माता रानी किसी न किसी रूप में अवश्य अपने भक्तों की रक्षा हेतु अवतरित अवश्य होती है। तभी तो कहते हैं उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है।

श्रोताओं कहा जाता है कि परमात्मा ही मनुष्य के सभी विघ्न हर लेते हैं। जब कुछ भी समझ में ना आए तो परमात्मा का नाम जपते जाएं।

शक्ति। श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में यही पर समाप्त हुआ। आशा है आप सभी के मन में प्रभु की भक्ति रहे, आस्था रहे और कृपा। कहीं पर अगर शांति मिले तो वो है परमात्मा के ही द्वार। पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को प्रणाम और शुभ दिन।

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: घड़ी मिलाते चले दिन के 12 बजे हैं।

0: चिलेवी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार। आदाब। शुगर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की पुरानी सीईओ निष्ठा ज्योति निद्रू ने ऐलान किया कि आज वो अपने वकील से मिलने वाली हैं और सोमवार से ही वो अदालती कार्रवाई शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि एक खत के जरिए उन्हें इस हफ्ते के दौरान पद से निकाले जाने की खबर मिली। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर टिप्पणी की है और कहा कि इस वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है। एमर्शस के चंद उच्च अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। उनमें लोरों रुकुरा का नाम है जो कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं। अभी हमारी जानकारियों के मुताबिक उन्हें दूसरी बार के लिए सस्पेंड किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के महानिदेशक दाउदागी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्रोल रिपोर्ट से अंजाम होंगे। अनुला जैसे फिर से आरटीओ कंपनी के सीईओ के पद पर फायज हुए हैं। बुध को आईबीएल ग्रुप के सीईओ की औपचारिक नियुक्ति हुई। अनुला जैस को इस क्षेत्र में तजुर्बा है। अप्रैल 2018 से 2022 तक वो ये जिम्मेदारी संभाल चुके। ग्रुप की एक औपचारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी है कि जेरोम दुशातोनव ने अवकाश ले लिया है। विदेश में इस वीकेंड के दौरान 15 से 20 मिलियन लोग तेहरान की गलियों में होंगे। वे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमानी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं जिनको 9 जुलाई को दफनाया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 30 देशों के जिम्मेदार इसमें भाग लेने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए।
2: Quatre Bowl Road, bon accueil, mes chers, 76 years old, Shrimati Narvada Joy Mangal, Shrimati Narvada Joy Mangal, jo Narvada ke naam se zyada jani jati thi, ki mrityu ho gayi hain. Arthi aaj 2 baje inki behen Indira Babulal ke ghar, Quatre Bowl Road, bon accueil se utha kar antim sanskar ke liye Bushon ki shamshan bhoomi le jai jayegi. Cremation today at 2 p.m. Kashmir Road, L'Espérance Trébuchet, mayor 60 saal ki, 68 years old,

0: श्रीमती सीता महादेव बैरब, श्रीमती सीता महादेव बैरब पैदाइशी नाम और कोहरी जो विद्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही कल तीन बजे इनके घर कश्मीर रोड लिस्पिहांस त्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ये जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 3 PM। नागिया रोड बागामिया रोजबेल में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री भूपेंद्र नाथ पमिसा जो भूपेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे इनके बेटे अग्निश पमिसा के घर नागिया रोड बागामिया रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माखीजानी रोजबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। कोकोलेन लिस्काली में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड श्री सत्तू सिनिवासन जो बायन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े ग्यारह बजे इनके घर कोकोलेन लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माखीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Radio.TV. You're listening to RM3 Radio Mana.

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: तो दोस्तों अभी आप तीसरी मंजिल फिल्म का गाना सुन रहे थे, आशा जी के साथ अपनी आवाज मिला रहे थे रवि साहब, जिनके 12:09 हुए हैं। मैं वेदिता आप सबों का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में, जो कि चलेगा 2 बजे तक और मैं आपके साथ साथ रहूँगी। चलिए तो यहाँ पर आपके मैसेजेस का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, नंबर आपको बताई हैं अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं 4028-0700। नहीं व्हाट्सएप पर भी अपने मैसेज भेज सकते हैं, नहीं तो आप हमें टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अभी इस समय हम लाइव हैं टिकटॉक पर। और चलिए हम बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त भी आ गए हैं, तो हम वेलकम करना चाहेंगे एजे का जो इस समय अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज है हमारे साथ, नमस्कार कैसे हो आप। अनिल राजन आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है।
2: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: फिल्म का नाम है हीरा लाल पन्ना लाल और ये गाना आप सुन पाएंगे किशोर कुमार की आवाज में, साथ दे रही हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और भूपिंदर।

0: भाई साहब अभी भी पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। खैर कब कैसे क्या हो जाता है पता नहीं चलता, जो होना है होता है, होके ही रहता है। हम और आप साथ में हैं और यहाँ पर हमारे पास जो गाने हैं, चलिए उसको डेडिकेट करने का समय हो गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करती हैं मिस्टर नूरुद्दीन के लिए जो पेरिस से इस समय हमें सुन रहे हैं। एंड वी हैव सोना सीतल फ्रॉम होलैंड, हाय देयर, वेलकम टू सुहाना सफ़र, वेलकम टू बर्शिस। और साथ में यहाँ पर हमारे और भी दोस्त हैं जैसे कि सुनील चरण जी भी हैं हमारे साथ, और इनके अलावा और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें सुन रहे हैं, अनिल राजन, कुजन, करुणा, इंदिरा, अंजलिक, राधा, कनन, और साथ में हेमा, राम नरेश, प्रतिभा, कतिबा मंगर, आरती सुकरा, सूर्या, यलेश, रेहा, ललिता, दिनू, मोहिनी हमारे साथ है। तो चलिए इसी के साथ गिरवर का भी हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, और वर्षा आपका भी हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर करुणा दोमा हमारे साथ है, एंड वी हैव सूबी, कैसे जी, आपका स्वागत करते हैं। और गीता जी आपका स्वागत है प्रोग्राम में। ऋषि रामबली, हाय, कैसे हो आप भाई? कोशिश कर रहे हैं बस थोड़ा बात कर लें, आवाज़ थोड़ी ख़राब चल रही है, आपको पता है बदलते मौसम के साथ कितना भी प्रिकॉशन लो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कोई बात नहीं, हम हैं, आप हैं साथ में। यहाँ पर वीना और विकास के लिए गाना डेडिकेट करते हैं, और खूबसूरत गीतों के सफ़र में ये प्यारा वाला गाना सुनता है जो कि हमने लिया है आपके लिए रवि साहब की आवाज़ में, साथ दीजिए आशा भोसले।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। वैसे हम तो अभी अभी आए हैं, चलिए अभी अभी आए हैं तो आप भी तो अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
1: सुहाना सफर
0: गाना होगा रोशन, विमला, तनवीर, खालिद और पिन के नाम। यही गाना राजू, इंदिरा रामदुनिया और रिक्शा के नाम भी डेडिकेट करेंगे। हमारे साथ मेधा सुकून भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए गाना होगा। रोशन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विमला जी आपको भी गेट वेल सून। और वी हैव अ विमता रामफल और नीलम आपका भी स्वागत करते हैं। और यहाँ पर बाकी जो गाना है वो अलग अलग मूड के गाने होंगे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए जी, सुनीता आपके लिए गाना होगा, सुनीता ऋषि, आई डोंट नो आपका नाम, मेरे ख्याल से सुनीता ही होगा। और यहाँ पर गाना होगा आपके लिए, कहते हैं मेरी बेटी की वेडिंग एनिवर्सरी है, एक अच्छा सा गाना चला देना। ठीक है जी, सतराम चौधरी जी नमस्कार, हेलो हेम भार्गव बेबी ओबिगा एंड बिंता, आप सबों का प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। प्रेमचंद जमन जो हमें यूके से सुन रहे हैं, जानती हूँ वहाँ पर गर्मी बहुत है, तो ऐसा करते हैं खूबसूरत ठंडा ठंडा गाना चला दें आपके लिए लता जी की आवाज़ में।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: सुहाना सफर में कौन बनी है हम सफर ये जानने का समय आ गया है। नेक्स्ट गाना जो होगा चलिए डेडिकेट करते हैं आपके लिए। आपने लिखा है हैप्पी बर्थडे लेकिन आपने बर्थडे भी नहीं लिखा, शायद आपका आधा मैसेज गायब है। दादी सीता पापा अभिषेक स्मिता और श्वेता के लिए गाना। और नेक्स्ट गाना जो होगा कहते हैं पतिदेव आज घर पे है तो उनके लिए गाना डेडिकेट कर दीजिएगा। चलो ठीक है। और वैसे यहाँ पर तो मीला रामा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट होगा हैप्पी बर्थडे टू पापा रफीक बहादुर, 73 इयर्स के हो गए हैं, उनकी बेटी सबीना और उनके लिए बहुत सारा प्यार। यहाँ पर हमारे साथ आयशा भी जुड़ गई हैं। हाय हाय नित, कैसे हो आप? कैसी हो मंजुलिका? सब कह रहे हैं कि आप ना थोड़ा ख्याल रखा करो, हल्दी वाला दूध पियो, सितरनेल का पानी पियो, जिंजर ले लो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी सब कुछ कर रहे हैं। हम बस आवाज़ में ख़राबी है, मूड तो हमारा वैसे भी चकाचक है, आज फ्राइडे है। श्यामा महिलारी आपका भी हम स्वागत करते हैं और थैंक यू सो मच। आयशा आई लव यू टू एंड यही गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। सो नेक्स्ट गाना हमारा डेडिकेट करते हैं कहते हैं आज हाय ट्रैवल, आज मेरी बेटी की वेडिंग एनिवर्सरी है केविन और दर्शनी, उनके लिए गाना हम चला रहे हैं। और चलो भाई आयशा कहते हैं थोड़ा स्माइल तो कर दो। हाँ भाई हम स्माइल कर लेंगे, आप घबरा नहीं, हम ठीक है। यहाँ पर गीता काली चरण के लिए गाना डेडिकेट करते हैं। महमूद जी आपका हम स्वागत करते हैं, वेलकम। एंड अनुष्का हमारे साथ हैं, उनके लिए भी थैंक यू। बृंदा नारायण आपका भी स्वागत करते हैं। एंड रेशमा हमारे साथ

साथ हैं। वैसे नित कहती है कि उनके हस्बैंड नितेश जो है ना उनके लिए अगर हो सके तो कोई प्यारा सा गाना। प्रीति आपका वेलकम है, सुनीता अमृत कैसे हो आप। चलो जी ऐसा करते हैं गाने की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर नंद और लामोचे से काफ़ी सारे लोग हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि गाना कौन सा होगा, तो भाई एक ऐसा गाना जो शायद मूड बदल दे,

शेरी जी के साथ जो हमारा नेक्स्ट गाना आ रहा है वो लता जी की आवाज में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ये रूबा गंगा के लिए, रानी जोश्री, नीमा, अनुति, सूर्यदेव, तेज, सनातन जो अभी भी एग्जाम से घर आए हैं उनके लिए थोड़ा रेस्ट करो और गाना एंजॉय करो। रीम रमीनी फ्रॉम इटली, हाय।

तितली शिमला सी साहा दीप्ति गंदौरी इंडोनेशिया से भी मैसेज आया है थैंक यू सो मच वी हैव विनय एंड प्रमोद कुमार जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना है आपके लिए लेकर आए हैं

0: भाई जिनके सहारे आप थी अगर वो मिले नहीं तो कोई बात नहीं है, विदिता है ना आपके साथ।
1: सुहाना सफर
0: प्रोग्राम में सुहाना सफर, यहाँ पे हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे दिविना बंधु के नाम हाय और मीला रामा आपके लिए, आपकी बहन शीला के लिए आज उनका बर्थडे है तो विशिंग हर वेरी हैप्पी बर्थडे। कुलविंदर कौर हाय आपका स्वागत करते हैं हम, एंड रानी जी कहते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है, एक्चुअली मेरा भी ये फेवरेट गाना है और इस गाने से हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट तो ज़रूर करते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं रेखा जी का हम स्वागत करते हैं, वी हैव प्रियंका नेक्स्ट गाना उनके हस्बैंड लवराज के लिए और साथ में ये गाना ज्योति चमन के नाम डेडिकेट करेंगे। रीना सिबनोत हमारे साथ हैं, परी साथ आ गई देने के लिए और यहाँ पर चलिए बीते दिनों को याद करती हुई हमारी श्यामा जी हैं और वहीं पे ज्योति चमन जी कहती हैं क्या गाना?

गाना है, वाह। चलो तो इसी गाने के साथ अभी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ आप लोग जब मैसेज भेज रहे हो तो अपना पूरा नाम बताइएगा। और इधर ज्ञानेंद्र दहाल हमारे साथ हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आदि, हाय, कैसे हो आप? चलो आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एंड ये गाना जो है आपके लिए भी मन रखना, वनीषा के नाम डेडिकेट करते हैं। जी जी, कैसे हो? एंड प्रीति द्वारका, आपका भी वेलकम है। और साथ में यहाँ पर हम डेडिकेट करेंगे गाना कविता के लिए, जो देव कैसे हैं वो गाना डेडिकेट करेंगे मोहन, रेखा, अंबिका, प्रेमिला और सबीना के लिए। वहीं पे अमृता, आशु और कृष्णदेव साथ में हैं। रागिनी जी, अरिश्ना पालेमू से हमारे साथ जुड़ी हुई, हाय। गाना जाएगा उनके हस्बैंड प्रीत के लिए, उनकी बेटी कियाना मुनिया के नाम, पविष्णा, गीता एंड दिवीना बंधु। चलिए खास तौर पे ये गाना आपके नाम, साथ देते रहिएगा। डोंट फॉरगेट, हमारा टिकटॉक इस समय लाइव चल रहा है।

0: जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जानना चाहेंगे आप?
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: चिरेवी सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गाना लीना और कल्याणी हरी साथ में ईरानी कुंदन जी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और विहार

काजल कविता लाचा जो कि साथ में। हाय प्री, कैसे हो आप बताओ। दीप्ति, आपके लिए बहुत सारा प्यार। और साथ में यहाँ पर जिन लोगों ने अपने नाम नहीं लिखा गाना उनके लिए, लक्ष्मण मालू, आपका भी स्वागत करते हैं हम। बिल्कुल आप आ जाइए, एमबीसी आ जाइए हमसे मिलने के लिए, प्रॉब्लम नहीं है। किंग यूज़र, ये प्रोग्राम जो है आप मॉरिशस से सुन रहे हैं और ये है आपका RM3 रेडियो मनोरंजन। वैसे आज दर्शनी और केविन की वेडिंग एनिवर्सरी है, जो कि रहते हैं पुस्दे फ्लाग, और उसकी बेटी का नाम है कैनवी। कविता चनु जी स्वागत है, रॉक गंगाराम आपका भी स्वागत है। हेलो अलीशा, वेलकम।

वाले गाने के साथ आगे बढ़ेंगे अब हम एक बजे के समाचारों की ओर. दनिश दी, अफीजा और साइलेश, रेखा लखन साथ में माला. सुल्ताना खानदाई के लिए हम ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे. और हमारे साथ अभी आरती सदाशिवन जुड़ी हुई हैं. चलिए उनके लिए गाना. करुणा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. अभी करेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं. पूजा नमस्कार, स्वागत है. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में समाचारों के बाद.

0: सुहाना सफर।
1: चलिए जी, सुहाना सफर प्रोग्राम है, विनीता का साथ है। आप इस समय RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं। गाना होगा कुस-कुस के नाम, वहाँ बिल्किस मूसा बड़ी हंस रही है, मालिनी विश्राम, साधना मीता, रेखा फ्रॉम पबोंजे, परवीन बेबू एंड लक्ष्मी रघुबर, और साथ में अभी अपने शॉप में बैठी है मरिया, और कपड़े जो हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ कर रही हैं। और राइट, सो ये है लक्षा के लिए राइट, एंड मेधा सुकून आपके लिए गाना होगा, आपकी चाची के लिए ओके। प्रिया तलजा नमस्कार, हाय राहुल कैसे हो आप, और साथ में यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करते हैं संजू के लिए जो इटली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में जितने भी लोग इस समय ड्राइव करें, स्पेशली जो लोग हमें बस में सुन रहे हैं, डोंट वरी, बस में आप बेबस नहीं हो क्योंकि हम आपके साथ हैं, और जब हम साथ में होते हैं तो गाने ऐसे कमाल के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो मैं सोच रही थी कि सिर्फ हंगामा करेंगे, लेकिन मैं इस गाने को इग्नोर नहीं कर सकती। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट, बहुत ही रोमांटिक गाना है, लता जी के साथ बबला जी का आवाज़ की आवाज़ है। ये गाना हम संजनी के नाम डेडिकेट करेंगे, राम राम आपको। दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है, ज़रूर हमें बताइएगा। वैसे इस गाने को सुनने से बीते दिन याद आते हैं, वही जहाँ पे श्रीदेवी जी ने अपना ट्रेंड शुरू किया था साड़ी का, उसके बाद सभी लोगों ने उन्हीं के जैसे सजना साड़ी पहनना शुरू कर दिया था। यू रिमेम्बर चांदनी, और वाइट कलर यहीं पे फेमस हुआ था। अवनी वेलकम, स्वागत है आपका प्रोग्राम में।

0: आगे आगे चले पीछे पीछे कौन
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: चलिए जी दिन के 1:13 अब 13 क्या होगा खा लिया आज 3 जुलाई है ना हेलो कैसे हो भाई ये तो लल्ला लल्ला करते रहेंगे लेकिन हमारे बीच कौन आए हैं इनको तो पूछ लेते हैं ये हैं सिंचा इरू रेखा कपूर और विदुला का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में नमस्कार और परी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तम जी आपका प्रोग्राम में स्वागत है

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जहाँ प्रोग्राम है सुहाना सफर, चलिए यहाँ पर गाना होगा जीवन सरजू के लिए। उमा है गोकायु से, दीपक बिहारी, केशनी कुमार, यश फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड, उमेश त्रियोले से और राधिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और साथ में ये जो गाना होगा हम तरुण के नाम डेडिकेट करेंगे, और तरुण जी ने गाने की फरमाइश की है, चलो हम देखेंगे थोड़ी देर में। बबीता बंधु आपका स्वागत करते हैं, एंड नंदिनी जी थैंक यू सो मच। नंदिनी जी हमेशा कहती है ना कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आज तो लगता है आवाज़ गई। चलो कोई बात नहीं, आवाज़ गई लेकिन हिम्मत नहीं गई है। वैदेही का वेलकम है, साद आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर किसी ने कहा कि आप ना छोटे से जिंजर के टुकड़ों को काट लीजिए और उसको च्युइंगम की तरह चबाते रहिएगा, अच्छा रहेगा, आपकी जो कफ है वो दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। और गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे हर्षा बुदन के नाम, और साथ में ये गाना जाएगा आपके लिए। वैसे नाम तो नहीं लिखा है लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना हो जाए। वैसे इस गाने के

फरमाइश आई है ये गाना ऑलरेडी मेरे लिस्ट में है मेरे लिस्ट में इजाजत फिल्म का गाना वापस फिल्म का गाना इल्जाम फिल्म का गाना वारिस फिल्म का गाना भी है सुनते रहिए झूमते रहिए और हमारे गीतों को

चलिए जो हमारे प्रोग्राम का अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली जियाद तिलकदारी के लिए जो इस समय हमारे साथ हैं। माया जी कहती हैं, भाई आप ना थोड़ा सा शहद पिया करो, ये क्या आवाज़ की हालत बना के रखी है। हाँ जानती हूँ, इतने सारे लोग हैं अभी हमारे साथ, इतना प्यार भेज रहे हैं। विमी विगैन आपका भी स्वागत करते हैं और साथ में आपके लिए काजल बल्दी जो साथ दे रही हैं।

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए भाई, हम भी जानते हैं आपकी नज़र कहाँ पे है। आप बार बार घड़ी देख रहे हैं ना, आधा घंटा है अभी प्रोग्राम में। चलो तो साथ देने के लिए थैंक यू अनीता पे। तो यहाँ पर आपके लिए गाना होगा और हैप्पी फ्राइडे टू यू आल्सो। ऋषि हाय, कैसे हो? रीना रामादित हमारे साथ। हेलो अनीशा, कैसे हो आप? और साथ में यहाँ पर हमारे कौन है, ऋषि कहते हैं कि थैंक यू RM3 पे जो गाने चल रहे हैं, कमाल के चल रहे हैं, यू मेड माई डे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। एंड यहाँ पे फरानाज के लिए गाना होगा और उनकी प्यारी बेटी नूश के नाम, साथ ही साथ सिकुराम फैमिली के लिए जो साथ दे रहे हैं, मिसिंग यू लोड्स बट लव यू ऑल, ये उनके लिए मैसेज है। एंड दीवा गर्ल हमारे साथ हैं, ललित मोहन जी गुड आफ्टरनून। पूजा आंटी सिमी आपको बहुत सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ उनके लिए नेक्स्ट गाना चला दूं, जहां तेरी ये नज़र है। चलो माधुरी 1-2-3 करती हुई आ गई। एंड यहां पर जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच लोना। एंटीबायोटिक्स के अलावा अभी और कुछ हो नहीं सकता, आपको भी अगर बीमार है तो डॉक्टर ज़रूर दिखाइएगा बिफोर इट्स टू लेट। डैनी रोज़ा वेलकम, आशा उबिलक स्वागत है आपकी, आज आपका बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये हैं बेटे अभिषेक, मृणल और पूजा की तरफ से।

0: सुहाना सफर, सुहाना
1: सफर। दिन के 1:36 हुए हैं। जहाँ तेरी नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है। मैं जानती हूँ आप घड़ी घड़ी घड़ी देख रहे हो, क्योंकि घड़ी इशारा करिए कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ समय में हमारा प्रोग्राम भी 20 मिनट पर खत्म हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले शर्मिला अबुदन हमारे साथ, सागर, सृष्टि, वेश, तरुण, अनु, नीलिमा, नीलाबाई, आशा लखनौत और रीना भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए उन सबको हेलो कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई गाने मज़े के हैं, अच्छे लग रहे हैं। निशी गंगू, कैसे हो आप? आज आपके बेटे यश का बर्थडे है, उनको हमारी ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड नमस्ते रीना सिग्नोत। चलो जी, नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं आपके लिए, सभी CWA सैपुल वालों के लिए जो काम कर रहे हैं। ओके, एंड और यहाँ पर कहते हैं कौन कि एक छोटा सा बच्चा है जो हमारे पास है, शायद गाने सुन रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा। दादा बन गए, आपका मैसेज थोड़ा सा मैसी है, कोई बात नहीं। वन सॉन्ग फॉर माय बेस्टी, चलो रीना नेक्स्ट गाना आपकी बेस्टी के लिए, और यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए। कौन है भाई, गाने की बहुत सारी फरमाइश आई हैं। आशा ओबी लोग, दर्शना कहती हम फीलिंग लो, कोई अच्छा सा गाना, चलो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा हम कविराज मोहन नमहट आई डोंट नो, या नमस्ते कुछ तो लिखा होगा आपने, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। कविराज जी नमस्ते।
2: RM Free Radio.

भाई लालवाड़ी के पुलिस स्टेशन में सभी हमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये सुदेश जी की तरफ से गाना होगा. You are doing a great job. Hats off to you guys. And a big salute जितने भी पुलिसमैन इस समय हमें सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं. This one goes specially for you. Enjoy. वैसे तो जो पहला वाला गाना था वो डेडिकेट करना था कालिया का, जहां तेरी नजर है. इनकी नजर होती है सब पे. हाँ

चलो जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यार तो बहुत मिलता है मुझे, इतना सारा प्यार मिलता है, टिकटॉक पे इतने सारे दोस्त हैं। सबीना कहती है टू ऑल पेशेंट्स का

का। हैव अ वंडरफुल वीकेंड, आपको भी कहेंगे दीप्ति जी। रॉटरडम्स कैसे हो, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में जुहायरा। नेक्स्ट गाना फ्रेंड नबीला के लिए और साथ में रेशमा के नाम अजय पांडे। स्वागत है आपका प्रोग्राम में और यहाँ पर कुदो में जितने भी लोग काम करें मार्केट में उन सब के लिए फॉर माय पेरेंट्स प्लीज़ डेडिकेट कीजिएगा ज़रूर। जितने भी लोग सुन रहे हैं सुनील जी स्वागत है और चले गाना सुने। एक मैसेज आया है तूमा की तरफ से कहते हुए आर यू फ्रॉम भाई मॉरिशस का रेडियो है ये है RM3 रेडियो मनोरंजन।

आवाज ठीक ना हो तो थोड़ा सा आराम करना चाहिए. आप लोग अपनी आवाज पे ज्यादा स्ट्रेस मत करना और हमारे साथ जुड़े रहना. चलो जाने का टाइम हो गया है. सन आपका स्वागत है. दानी रोजा एंड वी हैव बांबा कैसे हो. और यहाँ पर एक और हमारे लिसनर हैं बेबो. सभी लेडीज ने आपको हेलो बोला है एंड शिव के लिए गाना होगा. हमारे जाने का टाइम हो रहा है दोस्तों. अब हम आपसे मुलाकात करेंगे. कब आपसे मुलाकात करेंगे? अब हम मंडे को 12 बजे इसी प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है सुहाना सफ़र. यहाँ पर जानी जाती एक बार फिर हम जो नेक्स्ट गाना होगा हमारा इन तमाम दोस्तों के नाम डेडिकेट करेंगे. ख़ास तौर पर ये गाना सुदेश जी ने बोला मैंने शायद मिस कर दिया. अगर मिस कर दिया तो हम फिर से आपके लिए डेडिकेशन कर देते हैं भाई. ये हैं सुदेश जी जो कि इस समय हमें लाल माटी के पुलिस स्टेशन में सुन रहे हैं. उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके लिए प्लीज़ आप गाना चला दीजिए. तो ये प्यारा सा गाना आपके लिए समुंदर फिल्म का, आपके सभी कलेक्स फ्रेंड्स के लिए जो साथ दे रहे हैं हमारे, जितने भी पुलिस अफसर्स इस समय काम कर रहे हैं चाहे वो लाल माटी में हो चाहे कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, आप सबों को कहेंगे कि फिर आप डूइंग अ ग्रेट जॉब. मोकोहाश टू यू.

हाय मिच, हाउ आर यू, कैसे हो आप? चलो तो अब हमारे जाने का टाइम हो गया है एंड चलते चलते आपको बहुत सारा प्यार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए एंड यही गाना शारदा जी आपके लिए साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात मंडे को होगी। गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए एंड अपने मूड को थोड़ा सा स्माइल के साथ चेंज करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिएगा सब कुछ कैसे अच्छा अच्छा होने लगेगा, है ना। बहुत सारा प्यार आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, पर एक बार फिर थैंक यू सो मच। मंडे को मिलते हैं।

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में अमरीकी सेना ने लगातार तीन रातों तक ईरान पर हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने बार बार ईरान के राडार सिस्टम को नष्ट किया और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा दी।
1: इसी के साथ है संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ देर में शोक समाचार। भागीरथी लेन ओकुले में 86 साल की 86-year-old की कुमारी लीलावती भंजन, जो नत से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर बाद के 3 बजे उनके भाई नारायण दत्त भाई भंजन के घर भागीरथी लेन ओकुले से उठाकर बिगागा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM3 Radio.

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं आपके जाने पहचाने कार्यक्रम गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, लोक गीत जिन्हें हम फोक सॉन्ग्स भी कहते हैं, इसमें हम संस्कार गीत जो बच्चे के जन्म पर, जैसे ललना जन्म के गीत, विवाह पर या हल्दी पर, परछावन दूल्हे के स्वागत में, मृत्यु पर निर्गुणियाँ गाए जाते हैं, खेतों में श्रम गीत और मौसम बदलने पर ऋतु गीत, प्रमुखतः सावन के गीत, वर्षा में न होने पर हर परौरी आदि सब शामिल होते हैं। ये सब हमारे लिए लोक गीत कहलाते हैं, जिनको कभी भी लिखा नहीं गया था पहले। अब चाहे वे साहित्यिक रूप ले रहे हों, पर पहले ये मौखिक ही रहा और लोक गीतों की परंपरा हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से बखूबी जुड़ी हुई है। श्रोताओं, हमारे साथ आज एक साहित्यकारा जुड़ी हुई हैं, वे हैं श्रीमती कल्पना लाल जी। आप उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, अनेक रेडियो कार्यक्रमों में भी वे आती रहती हैं, टीवी पर भी आपने उनको देखा होगा। आज हम उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती कल्पना लाल जी, आपका आज के गीत नृत्य परंपरा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद अंजू जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी अपने मन की कुछ बातें साझा कर सकूं।
1: आपकी 9 पुस्तकें आ चुकी हैं, जिसमें कविताओं के संग्रह कम से कम 4 या 5 हैं
2: जी।
1: उसमें आपने यहाँ की भी परंपराओं के बारे में, यहाँ की भी बोली, भोजपुरी जो बोली जाती है, उसको भी संजोया है अपने साहित्य में। पर आपके लिए लोक गीत क्या है?
2: देखिए अंजू जी, लोक गीत तो वो गीत होते हैं जो गाए जाते थे
1: जी।
2: उनको हमने कभी भी जो है समेट कर नहीं रखा था। बड़े बूढ़े दादी नानी ये लोग जब थे उस समय, वो लोग गाते थे और उन गीतों को जो है वो अपने से आगे पहुंचाते थे,
1: पीढ़ी दर पीढ़ी
2: चलते जाते थे
1: चलता
2: और
1: था।
2: उनका जो है अपना एक क्या बोलते हैं कि उनका कुछ ना कुछ मन जो उनका होता था, जो वो सोचते थे, जो वो समझते थे कि हाँ आगे परंपरा बढ़

0: नहीं चाहिए
1: जी,
0: तो उन परंपराओं को लेकर के जो है वो गीत रचते थे।
1: वो समूह की सामूहिक जो चेतना थी वो हमारी संस्कृति और परंपराओं की धरोहर बनी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपने इतना कुछ लिखा है, क्या आपने भी कभी प्रयास किया कि कुछ लोकगीत लिखे जाएं? क्योंकि जो अनुभव हैं, जो जीवन में कटु सत्य हैं, वही साहित्य में भी आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर सबसे ज़्यादा कटु सत्य हम पाते हैं लोकगीतों में। इस पर आपका क्या विचार है?
0: देखिए, लोकगीत जो हैं वो जैसे अभी मैंने आप बताया, नानी दादी ये लोग लिखा करते थे, और लिखा क्या करते थे, ये लोग मुंह से बोलते थे,
1: मौखिक
0: होते थे, और एक से दूसरे को आगे बढ़ता जाता था
1: जी।
0: हमेशा रहते थे, और उसके बाद भी जब वो अपने बच्चों के साथ उन गीतों को गाते थे तो उनके वो बच्चे भी जो हैं, उनके और पारिवारिक लोग जो हैं, वो उनको अपने हिसाब से उसमें कुछ बदलाव करना होता था तो वो करते थे, लेकिन वो जो थे आज तक चल रहे हैं।
1: तो वो मौखिक साहित्य ही तो था।
0: बिल्कुल।
1: जो लोक कथाओं में, लोक गीतों में और हमारी संस्कृति से जुड़ जाता था, हमारी परंपराओं से जुड़ जाता था।
0: बिल्कुल। परंपराएं यूं तो कहते हैं बहुत नहीं बदला करती
1: जी,
0: लेकिन
1: हमें उनका प्रारूप नहीं बदलना चाहिए।
0: उनका प्रारूप बदलना भी नहीं चाहिए और बदला भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ बदलती हैं और धीरे धीरे उनको, हालांकि हम शुरू में तो नहीं अपनाते, लेकिन धीरे धीरे वो हमें हमारे अंदर बसती चली जाती है
1: और बदलाव आवश्यक है,
0: लेती आती है जी।
1: और
0: बिल्कुल
1: परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए सुंदरता के साथ।
0: बिल्कुल। हर परिवर्तन अच्छा भी नहीं होता है और हर परिवर्तन इतना अच्छा होता है कि उसको आपके साथ आगे बढ़ना,
1: सिक्के के दो पहलू,
0: बिल्कुल चलना चाहिए।
1: जैसे कि हमारे पूर्वज यहाँ पर आए तो रामायण कंठस्थ थी।
0: बिल्कुल।
1: किसी के पास लिखित रूप में नहीं थी क्योंकि वे इतना पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्हें वे कंठस्थ था, उनके माता पिता द्वारा उन तक पहुंचाया गया और उसके बाद वो लोक गीतों के माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचाया गया।
0: वो कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि वो बैठ करके जो है एक अपने
1: बैठका में
0: घर में भी अपने बच्चों को लेकर के जो है वो लोग
1: गाते थे
0: रामायण की चौपाइयां जो है वो लोग बच्चों के साथ गाते थे, इसलिए बच्चे भी उसको सीखते थे।
1: बिना संध्या किए भोजन नहीं होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सब संस्कृति के साथ हमारी परंपराओं में भी रचा बसा हुआ है।
0: बिल्कुल। और परंपराएं तभी आगे बढ़ती हैं जब आप उसे आगे बढ़ाएंगे, अगर
1: उनमें जिया जाएगा
0: और वो बच्चों को भी उसमें जीना आना चाहिए, तभी वो परंपराएं आगे जाएंगी। आपने अपने तक अगर रख लिया तो कल को तो वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसलिए जो है, अब रामायण है, अभी जैसे आपने कहा रामचरितमानस है, जो भी हमारे संस्कृतियाँ हैं, गीता है, अगर आप अपने उन बच्चों को लेकर के उनके साथ आगे बढ़ेंगे तब वो बढ़ेगी परंपरा, नहीं तो वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। और आज तक हम देखते हैं कि ये सब हमारे हिंदुत्व की जो
1: पहचान है
0: और यही पहचान
1: और
0: जो
1: यही
0: है
1: हमारे अस्तित्व की भी पहचान।
0: बिल्कुल
1: है।
0: और ये आगे बढ़ती जा रही है, कितने हजारों साल से चल रही है, लेकिन आज तक कोई नहीं कह सकता कि वो समाप्त है। समाप्त नहीं है, बल्कि उसके भले ही कहीं पे रूप बदल गए हों, लेकिन वो फिर भी आज है, जीवित है और हमेशा जीवित रहेगी।
1: आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, आपने कुछ ऐसा लेखन कार्य किया है जो कि मॉरिशियस ये समाज के लिए या मॉरिशियस के अनुभवों से आपने परंपरागत जो हमारे पौराणिक लोग आए थे, हमारे पूर्वज आए थे यहाँ पर, उनके ऊपर या उनके अनुभव जो आपके लेखन कार्य में आया हो?
0: देखिए, इस पे मैंने एक कविता ही समझ लीजिए उसे, गीत के रूप में लोकगीत कहें
1: जी,
0: लेकिन वो जो है उसको ददिया का संदेश, दादी का संदेश जो है जो उसके बच्चों के लिए है, उस पर लेकर मैंने कुछ लिखा है, एक गीत है
1: जी,
0: वो आपसे साझा करती हूँ।
1: अवश्य, स्वागत है।
0: दादा दादी आए रलन बिहरवा के गांव से, दादा दादी आए रलन बिहरवा के गांव से, भोजपुरिया लाए रलहन, भोजपुरिया लाए रलहन अपन संगे गांव से, दादा दादी आए रलन बिहरवा के गांव से, सपनवा के पास

0: पाछे पाछे मोरिसवा उतर गईलन पाथर तरे सुना बाटे सुनी सुनी हाए आइलन गिरमिटिया नाम पड़गल गिरमिटिया नाम पड़गल सुरतिया उतर गईलन कृष्णा नाम छूटल बाटे कि सुनुआ उहो गईलन रामायण औरी गीता दूनो ही आपन बाटे रामायण औरी गीता दूनो आपन बाटे आपन देश आपन माटी आज दोन छूटल बाटे महावीर स्वामी के धजा महावीर स्वामी के धजा आज सगरो लो केला संझवार बेटवा मैवा गावे मोतियाला आधा पेट भात खाई के आधा पेट कोड़ा खैली आधा पेट भात खाई के आधा पेट कोड़ा खैली अपन जांगर लगाई के सांझ सबर फजर गईली गोरवा के राज में माँ गोरवा के राज में माँ भारी दुख उठैली आंसुअन के घूंट पीपी लाइकन संग मुस्कैली। तो बहुत लंबी है इसलिए फिर भी कुछ
1: देखिए इसमें आपने परंपरागत हमारे जो पूर्वज आए उनके दुख को भी इसमें संजोया और आज के छात्रों के लिए आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा संदेश है कि हमारे जो पूर्वज आए थे वे कितना दुख उठाकर आधा पेट खाना खाकर आज मॉरिशस को ये रूप दे पाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल और इस तरीके की बातें अगर इस तरीके के गीत संगीत नहीं होंगे तो आज की जो हमारी जनरेशन है वो उनको नहीं समझ पाएगी भूल जाएगी। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम उनको उस पीढ़ी से
1: अवगत कराएं
0: इतिहास से अवगत कराएं उस पीढ़ी के साथ जोड़ने का प्रयास करें
1: जो कि हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ती है।
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा अब हम आते हैं जैसे लोक कथाएं हैं
0: जी
1: राजा रानी की कथाएं परियों की जादू की जैसे हमारे देश में मुड़िया पहाड़ है सियंतक की कहानी है दादी नानी अपने बच्चों को सुनाती है
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं वो एक लोक कथा से जोड़ती हैं उनको और ये लोक कथाएं मौखिक थी आज परिवर्तन है आज हम टीवी है रेडियो है मोबाइल है रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं हमें पर जब सियंतक की कहानी किसी ने यहाँ पर रची होगी उस समय तो वो एक लोक साहित्य था
0: बिल्कुल
1: जो कि मौखिक था रूप नहीं ले पाया था लिखित पर मौखिक था परंपरागत सुनते और एक दूसरे तक पहुंचाते में वो कहीं ना कहीं लेखन रूप ले गया इस पर आपका क्या विचार है।
0: देखिए लोक साहित्य जो है वो जैसे अभी आपने कहा कि अगर नानी दादी चाहती हैं या वो पीढ़ी चाहती है कि वो आगे बढ़े तो इसके लिए उनको ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। आज भी ऐसी कहानियाँ हैं कविताएँ हैं या ऐसे बातें हो रही हैं जिनको कि हम अपने बच्चों तक अपने आने वाली पीढ़ी तक रखना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा हमें उनको कुछ सिखाना होगा
1: उन्हें
0: कुछ
1: होगा
0: बिल्कुल प्रारूप देना होगा। अगर हम वो नहीं देंगे तो बच्चे उस तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि आज का जीवन अलग है उस समय में और आज के में जमीन आसमान का अंतर है।
1: आज देखिए हमारे श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे सुन पा रहे हैं और ये आपको बाद में टीवी पर देखने को भी मिलेगा आप उसमें से कुछ ना कुछ जान पाएंगे और उन जानकारियों को अपने कथाओं में अपने गीतों में और अपनी लोक साहित्य में जोड़ पाएंगे। ये माध्यम बन रहा है पर उस समय तो वो मौखिक ही रूप रहा होगा।
0: बिल्कुल
1: जैसे गंगा तालाब पहले परी तालाब कहा जाता तो वहाँ पर परियों की कहानियाँ आती थी तो ये भी मौखिक रूप था।
0: बिल्कुल
1: अब हम उसे जैसे गीत गवाई है अब जो लड़कियाँ या महिलाएं जो सीख रही हैं वो लिख लेती हैं मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेती हैं याद कर लेती हैं पर हमारी दादी नानी या माताएं जो गाती थीं वो मौखिक था उनको कंठस्थ था।
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि पहले जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें आता है ईडियम्स मुहावरे जो हैं मेरे जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है तो फूटी कौड़ी पहले प्रयोग में होती थी वो भारतवर्ष था यहाँ पर तो सेंट्स और रुपए का प्रयोग होता है करेंसी में

0: पर भारत में फूटी कौड़ी, फिर साबत कौड़ी, तीन फूटी कौड़ियां एक साबत कौड़ी बनाती थी। तो वो मुहावरा जो है कि मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो नहीं बदल पाया है। कोई नहीं कहता कि मेरे जेब में एक बातचीत में कह सकते हैं एक पैसा है, पर जो मुहावरा है वो फूटी कौड़ी का ही दिया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इस पर आप क्या विचार देंगी कि ऐसे मुहावरे, ऐसी बातें जो हैं जो उन्होंने, हमारे बड़े लोगों ने अनुभव किया होगा, उसी के रूप में तो मुहावरे आगे बढ़ पाए होंगे।
1: बिल्कुल अंजू जी, देखिए ये जो आज फिर हम देखते हैं कि हमारी नानी दादी भले ही हमारे पास नहीं है, हमारे से जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कही हुई बातें, उनके दिए हुए संकल्प और जो वो चाहती थी कि उनके बच्चे करें, वो आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है, हो रहा है। लेकिन उसके लिए भी जो है हमें अपने आप को आगे बढ़, क्योंकि होता क्या है कि हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम करें और पुरानी बातों को याद रखें, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमें स्वयं को याद रखना होगा और उससे जो है बच्चों को आगे बताना होगा। नानी दादी की कहानियाँ हैं, क्योंकि पहले की जो कहानियाँ हुआ करती थी वो कहानियाँ लिखी
0: राजा रानी की, परियों की,
1: बिल्कुल कहीं लिखी नहीं
0: की,
1: कहीं लिखी नहीं जाती थी, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती थी, एक दादी से दूसरी दादी तक या एक नानी से दूसरी नानी तक पहुंचती थी। अगर वो कहानियाँ नानी दादी नहीं सुनाती तो वो कहानियाँ कब की विलोप हो चुकी होती।
0: बिल्कुल,
1: तो आज भी भले ही हमारे सामने इंटरनेट है,
0: कटु सत्य होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज भले ही हमारे सामने इंटरनेट है, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आज भी अगर हम बच्चों को आगे बढ़कर कुछ नहीं सुनाएंगे, छोटे बच्चों को हम सुनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल के, वो भी बैठते हैं नानी दादी के पास की कहानियाँ सुनाओ,
0: बिल्कुल
1: भले ही टीवी पर देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये भी एक
0: बेड टाइम स्टोरीज,
1: बिल्कुल ये भी वो मौका है।
0: रात को जब लेटते हैं तो बिना लोरी सुने या गीत सुने या कोई कहानी सुने नींद नहीं आती,
1: ये भी काम है एक नानी दादी का
0: जी।
1: अगर आप जो है उससे बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो बच्चे क्या जानेंगे राजा रानी की कहानियां क्या होती थी। आजकल तो कोई राजा रानी नहीं है,
0: बिल्कुल
1: है ना, कोई जो है आगे बढ़ करके कैसे आएगा, बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक ये नानी दादी की कहानियां उन तक नहीं पहुंचेंगी। क्योंकि आपको तो कहानियां याद हैं, आपने भी अपनी नानी दादी से सुनी होंगी, और उन कहानियों को आगे बढ़ाना ये आपका जिम्मेदारी है, आज आपको करना होगा, तभी वो आगे बढ़ेंगी जितना आगे आप बढ़ाना चाहें। हो सकता है आपके भी मन में कुछ कहानियाँ हो, भले ही नानी दादी की ना हो, लेकिन ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हो आप
0: जो
1: बच्चों
0: आपने
1: को
0: अनुभव से
1: अपने अनुभव से सीखी हो।
0: बिल्कुल,
1: तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नानी दादी की ही कहानियाँ हो। एक समय आएगा जब आप भी नानी दादी बन जाओगे और दूसरी पीढ़ी जो है आपके सामने खड़ी होगी, तो उसको इस पीढ़ी से जोड़ने के लिए इस पीढ़ी की जो कहानियाँ हैं, जो बातें हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस समय की कहानियाँ हो, अपने समय की कहानियाँ उन बच्चों को जितना जल्दी आप सिखाएंगे उन्हें आगे तक याद रहेगी। क्योंकि आपको भी अपनी दादी नानी की कहानियाँ याद हैं,
0: आपको कुछ बीज तो रोपने पड़ेंगे तभी कुछ नया खिल के आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सो वो कहानियाँ आप उनके अंदर डालेंगी, उनकी रुचि उसमें आगे बढ़ाएंगी, तो कल को वो अगर हिंदी पढ़ता है या वो जो भी भाषा पढ़ता है, भोजपुरी पढ़ता है, तो उस कहानी से वो अपने आप को जोड़ पाएगा कि ऐसा भी कभी हुआ करता था
0: जी।
1: क्योंकि वो
0: जो
1: समय
0: लोक गीतों में पाया जाता है,
1: बिल्कुल जो हमने भी नहीं देखा है, वो चीज भी आप उन तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती है।
0: चलिए एक गीत कार्यक्रम को सजाते हैं, एक लोकगीत हमारे

गायिका हैं जो हमें या गायक हैं जो हमारे साथ साझा करेंगे, कविश जी। कविश के साथ साथ जैनेश जी बैठे हुए हैं प्रोडक्शन सीट पर और दीप शिखा जी सहयोग दे रही हैं कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में। चलिए गीत के साथ कार्यक्रम को सुनते हैं।

0: RM3 Radio.
1: गीत नृत्य और परंपरा।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत नृत्य और परंपरा में आज हम लोक गीतों और फोक सॉन्ग्स जिसे हम कहते हैं उन पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती कल्पना लाल जी। श्रीमती कल्पना लाल जी, बातचीत हमारी हो रही थी कि लोक गीत लोक साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो लोक गीत आपके लिए क्या है?
3: देखिए, लोक गीत जो हैं उनको हम जीवन की पाठशाला भी मान सकते हैं, क्योंकि उससे कुछ जैसे आप पाठशाला से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, उसी तरीके से मनुष्य जो है वो जीवन से सीखता है, जीवन की पाठशाला से सीखता है। और ये जो लोकगीत हैं ये पाठशाला का ही एक रूप है, क्योंकि जो आप कहते हैं, जो आप सुनते हैं, जो ये गीत हैं, जैसे
2: अभी हमने गीत सुना,
3: बिल्कुल
2: कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो चंदा मामा की कहानी या लोकगीत ना सुन पाया हो।
3: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ऐसी पाठशाला है जहाँ आपको फीस नहीं देनी पड़ती।
2: बिल्कुल,
3: पैसे नहीं देने पड़ते, पैसे नहीं लगाने पड़ते, आप उनसे जीवन की चीजें सीखते हैं,
2: कटु सत्य सीखते हैं।
3: बिल्कुल, ये भी सुख
2: जान पाते हैं ऐसे,
3: ये सुख दुख के साथी हैं हमारे।
2: बिल्कुल।
3: और जो खुशी के गीत हैं, दुख के गीत, मतलब जैसे आप यहाँ मॉरिशस में भी आप देखते हैं कि शादी ब्याह होता है उसमें सोहर गाते हैं, दुख होता है तो बिरहा गाते हैं, विदाई गीत होते हैं,
2: झूमर है, ललना है।
3: बिल्कुल। लेकिन ये
2: बच्चे का जन्म हुआ तो ललना गाया जाता है।
3: बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे समय हैं जिसको कि याद रखना आपके लिए भी आवश्यक है और बच्चों को जानने के लिए भी आवश्यक है।
2: बिल्कुल।
3: और जो ये उस समय हुआ करता
2: और
3: था,
2: इन गीतों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति से भी जुड़ पाते।

0: जाते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है अंजू जी कि पहले ये सब गीत संगीत जो हुआ करते थे ये लोग आपस में मिल बांट करके करते थे, एक ग्रुप बना करके बैठ जाते थे, रात को हो गए खाली बैठे हैं,
0: पहले तो ना टीवी था ना कोई
1: कुछ नहीं था,
0: कुछ तो नहीं
1: बैठ
0: था।
1: करके गीत गाते थे, जैसे हम लोग हमारे भी जीवन में अंताक्षरी होती थी।
0: बिल्कुल,
1: हम लोग जब कुछ नहीं होता था करने के लिए तो भाई बहन सब मिलकर बैठ गए और अंताक्षरी कर रहे हैं, तो ये भी अंताक्षरी भी उसी का एक रूप है। उन गीतों को आप इस रूप में ले लीजिए या अंताक्षरी को इस रूप में ले लीजिए, दोनों का मकसद एक ही है।
0: बिल्कुल,
1: और दोनों ही जो है कितने, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे सावन के गीत होते थे, कजरी, होली, ये सब जो है होली के भी गीत होते हैं
0: जी, तो ताल ठोकी जाती है मॉरिशस में भी।
1: बिल्कुल,
0: अच्छे से।
1: और उस समय भले ही जो है वो लोग लिख के ना रखते हों, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है अपने आप बढ़ जाते हैं,
0: मौखिक रूप से
1: पहुंच जाते हैं, आपके मन को हर्षाते हैं, आप खुश होते हैं, अपना समय बिताते हैं, और जो बच्चे उस समय सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो भी उस जो है उसको सीख लेते हैं। एक सीख है जो आप बिना किताबों के, बिना पर्चे पर कुछ लिखे हुए उन बच्चों तक पहुँचाते हैं। यही जीवन आगे हुआ करता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है आपकी बातचीत पहुंच जाती थी, आपके गीत संगीत जो है वो दूसरों तक पहुंच जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: और ख़ास तौर से जब रात वगैरह होती थी या कुछ नहीं होता था तो वो लोग बैठते थे कहीं, इकट्ठा होते थे,
0: अपना दुख सुख बांटते थे।
1: उस दुख सुख के साथ साथ तो गीत संगीत जुड़ा ही हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: तो उस दुख सुख के साथ में जो है वो गीत भी गाए जाते थे, और उन गीतों को सुन सुन के वहीं बैठे हुए बच्चे भी सीख लेते थे।
0: लोक गीतों की महत्व की बात करें, आपने बहुत कुछ जानकारियां बांटी कि हमारे नए बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं, इसमें कटु सत्य भी तो आते हैं। आपके लेखन में भी मैंने पाया एक पुस्तक में कि आपने बहुत सी कड़वी बातों की, सच्चाई एक दूसरे के साथ साझा की, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: अंजू जी, कुछ कुंडलियां हैं
0: जी
1: जो लिखी हैं, और उन कुंडलियों में भी आपको काफ़ी कुछ सुनने को, समझने को, लोगों को मिलेगा। मैं कुछ आपके सामने पढ़ती हूँ। झूठ बोलो अगर दुनिया में तो नमक मिर्च लगाए, झूठ बोलो दुनिया में तो नमक मिर्च लगाए, नमक मिर्च लगाए के जाने मकसद पूरा हो जाए। जाए भाड़ में दुनियादारी, आजकल ये भी है, जाए भाड़ में दुनियादारी, चाहे जो हो जाए, चलन आज यही है भैयो, हर कोई अपनो घर चमकाए। कौन किसके पीछे रहता तो, है
0: कुछ ही शब्दों में आपने कितनी बड़ी सच्चाई खोल के रख दी। जो छात्र या जो बच्चा या जो भी इससे अवगत होगा तो वो इतनी बड़ी सच्चाई को कुछ पंक्तियों में पहचान जाएगा
1: और समझ भी जाएगा
0: और शिक्षा प्राप्त करेगा।
1: और ये आवश्यक है कि आज के बच्चों को जो है इस तरीके की शिक्षाएं मिलनी भी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: एक और आपको बताती हूँ, खुशियाँ अपने तक ही रखे, खुशियाँ अपने तक ही रखे, ना दुख में पूछन जाए, झूठो ही नौ आंसू बहाए। दान में कौड़ी ना निकले, खुद को सेठ कहाए, पाप हजारों करके भइयो, पापी गंगा नहाए।
0: देखिए, हमने कौड़ी की बात की और आपके लेखन में वो कौड़ी की बात आ गई, तो कहीं ना कहीं रची बसी हैं ये परंपराएं हमारी संस्कृति में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक उदाहरण और आपको देती हूँ
0: जी।
1: धन दौलत के पीछे भागे बिन सोचे भरमाए, बिन सोचे भरमाए देखो सुख चैन लुटा आए। पर कब्र में लटके फिर भी बंधन तोड़ो ना जाए। आपने ये भी देखा होगा कि पैर कब्र में लटके फिर भी बंधन तोड़ो ना जाए, कुछ ऐसा तू कर ले भैयो कि माटी शान से जाए। ये एक शिक्षा है जो इस तरीके से देने की,
0: करो तो तुम्हारी
1: बिल्कुल
0: कोशिश भी, कोई गलत इंसान मरता है जिसका देहावसान होता है तो हम कहते हैं अच्छा हुआ, शुक्र है वो स्वर्ग से धार गया, पर कोई अच्छा आदमी जब हमें छोड़ के जाता है तो उनकी बातें याद की जाती हैं और सभी अफसोस करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि इतना अच्छा इंसान था, हमारे बीच नहीं।

0: रहा, जो यहाँ पर हम सबको प्यारा था वो ईश्वर को प्यारा हो गया।
1: बिल्कुल।
0: पर अब जो मैं बात जानना चाहूँगी कि माँ द्वारा, नानी दादी द्वारा जो भी लोरी या जीवन में जो भी बच्चों को सुनाया जाता है, उसके प्रभाव से कहाँ तक प्रभावित हो पाते हैं लोक गीतों के माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से?
1: देखिए, लोक गीत और लोक साहित्य का अपना एक दायरा है
0: जी।
1: आपके भी घर में बच्चे हैं, अगर आप नहीं सुनाएंगे कहानी
0: हाँ,
1: तो बच्चे नहीं सुनेंगे। जब तक कि आप आगे बढ़ करके उसे नहीं सुनाएंगे, बच्चों को उनसे नहीं जोड़ेंगे।
0: आजकल तो एक फोटो दिखा दी जाती है, इसमें क्या देखा उस पर कुछ लिखिए,
1: बिल्कुल
0: कुछ पंक्तियां लिखिए, तो ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो इसी प्रकार हम पुरानी समय की तस्वीरें दिखाकर भी उनसे थोड़ा सा साहित्य लिखवा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लोक कथाओं से जोड़ सकते हैं, लोक गीतों से जोड़ सकते हैं।
1: लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक आपका दायरा है उन बच्चों के साथ में। क्योंकि ये जो लोकगीत हैं, ये जो लोरियाँ हमने अभी बात की है, ये दादी नानी की ही हैं, और जब तक हम उनको बच्चों तक नहीं पहुँचाएंगे वो आगे नहीं जाएंगी। और हमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक बार अगर आप बच्चों को इन लोरी को सुना दें सोते समय, या उनसे
0: बड़ी आसानी से
1: याद कर लेते हैं। आज भी बच्चे हैं जो बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं।
0: मामा दूर के हमें कभी सीखनी नहीं पड़ी, वो हमारे में रची बसी थी।
1: बिल्कुल।
0: चंदा मामा दूर के, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ये मतलब हमारे रची बसी लोरियां हैं, रची बसी गीत हैं जो हमसे जुड़े
1: ऐसे गीत भी दादी नानी के बारे ही जो है आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब तक नानी दादी आगे नहीं बढ़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि आज का जो समाज है,
0: आज तो एकल परिवार है, दादी नानियां होती नहीं है।
1: बिल्कुल, यही मैं कहने वाली थी कि आज का जो परिवार है वो एकल परिवार है, बच्चे नानी दादी को जानते ही
0: कभी कभी जाते हैं,
1: कभी कभी जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जाते हैं आ जाते हैं, बस उतने में बच्चे कहाँ से सीखेंगे।
0: तो हम लोग गीत को की परंपरा को भूलते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। ये किसके लिए ज़रूरी है? बच्चों के लिए ज़रूरी है, साथ में नानी दादी के लिए, एक माँ के लिए भी ज़रूरी है कि माँ बच्चों को नानी दादी से जोड़े।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि रिश्तों को जीना सिखाए और बच्चों को सिखाए। और बहुत से ऐसे गीत संगीत होते हैं जिनसे कि आगे बढ़कर हमें कुछ कहना नहीं होता, लेकिन बच्चे उनसे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सीखते तभी हैं जब आप उनको उसका अर्थ समझाएं, खासतौर से तो
0: आप स्वयं जी कर दिखाएं।
1: जी कर, बिल्कुल, ये भी दूसरा है। लेकिन बिना आपके कदम आगे बढ़ाए बच्चों के कदम हमेशा पीछे ही रहेंगे। इसलिए अगर उनको आगे बढ़ाना है तो आपको आगे आना होगा जब भी समय मिले। क्योंकि आजकल की तो पढ़ाइयाँ भी जो हैं, स्कूल जो हैं, परीक्षाएं जो हैं, वो इतनी ज़्यादा समय बच्चों का ले लेती हैं कि उनको समय ही नहीं मिलता कि वो और कुछ नया या कुछ अलग सीख सकें। तो इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है, एक बच्चा सो रहा है, सोते सोते आप उसको बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं, जब तक वो सोएगा नहीं। नींद में भी बच्चों को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज की दुनिया में माँ बाप के पास उतना समय नहीं है,
0: दोनों काम करते हैं।
1: नानी दादी जो है आजकल वो भी इतनी, आजकल आप देखेंगे परिवारों में जो है सब नहीं होते हैं, एक इकट्ठा नहीं होते हैं, एक साथ नहीं करते हैं काम, लेकिन फिर भी
0: परिवारों की कमी है। अब
1: बिल्कुल कमी है, लेकिन उसको भी पाटा जा सकता है। उसको भी आप रोज नहीं, जब
0: हफ्ते में एक दिन ही हो,
1: जब भी आपको मौका मिले,
0: बिल्कुल
1: आप बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें कहानियां सुनाइए, उन्हें कहानियों के
0: वीकेंड पर दादी नानी से मिलवाने ले जाइए।
1: बिल्कुल, कहानी के द्वारा आप उनको कितनी अच्छी बातें भी सिखा सकते हैं, कितनी कविताएं सिखा सकते हैं, कितनी कहानियां सुना सकते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसा हो कि बच्चे आगे बढ़ें तो एक अच्छे नागरिक बनकर बढ़ें। जब और ये काम जो है माँ बाप के पास तो आजकल आप सभी जानते हैं कि उतना समय नहीं है, लेकिन नानी दादी जब तक हैं तब तक सोचिए कि बच्चे जो है आगे इस दिशा में ज़रूर बढ़ेंगे अगर उनको मौका दिया जाए।
0: तो इस आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे लोक गीतों से, लोक साहित्य से हम अपनी संस्कृति को बच्चों द्वारा बचाए रखना सिखा सकते हैं, और बच्चों के साथ उनको जोड़ के, दादी नानी को जोड़कर हमारी संस्कृति को

0: बचा सकते हैं, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, इतने त्योहार होते हैं हमारे यहाँ तो
0: जी,
1: उन त्योहारों में भले ही आप आगे बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन त्यौहार क्यों होते हैं, क्या बच्चों को सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि भाई होली क्यों होती है,
0: रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं,
1: रक्षाबंधन क्यों होती है, होली का ही जरा सा,
0: हमारे सभी त्योहारों में रिश्तों को जीना ही सिखाते
1: हैं। बिल्कुल, होली पर आप जरा सा जो है उसके ऊपर रंग लगा देंगे तो बच्चा भी खुश होगा और आगे बढ़कर आपको भी रंग लगाएगा, आसपास वालों को रंग लगाएगा और जानेगा कि होली क्यों होती है,
0: रंगों का महत्व क्या है,
1: रंगों का महत्व क्या है। इस तरीके के बहुत से जो हैं लोकगीत भी हैं इस तरीके के, जिनको कि आप बच्चों के साथ गा सकते हैं और उनके द्वारा जो है उनको काफ़ी कुछ आगे बढ़ा सकते
0: हमारे
1: हैं, सिखा सकते
0: गीत
1: हैं।
0: गवाई में ही जब हम जोड़ते हैं हल्दी के लिए,
1: बिल्कुल
0: हम स्वागत करते हैं, परछावन करते हैं, तो राम जी आइलन, तो हम उनको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे लिए जो दूल्हा है वो राम है और जो विवाह कर रही है महिला
1: वो सीता है,
0: वो सीता है।
1: बिल्कुल,
0: तो अपनी बिना कुछ ज़्यादा समझाए उनको राम और सीता के साथ जोड़कर अपनी परंपराओं को सिखाना, अपनी संस्कृति से जोड़ना हुआ।
1: बिल्कुल, अब देखिए यूनेस्को ने भी सन 2000 में इसे जो है साहित्यिक विरासत के रूप में जोड़ा है।
0: बिल्कुल,
1: और विशेष रूप से हमारे देश में तो ये विरासत है ही जो बाहर से आई है, लेकिन यहाँ पर आज तक वो विरासत कायम है,
0: जीवित रखी गई है और वो हमारी दादी नानियों का ही काम है।
1: बिल्कुल, अब दादी नानियों ने तो अपना काम कर लिया, अब किसकी बारी है, अब हमारी बारी,
0: माताओं की बारी है।
1: अब माताओं की बारी है, अगर हम उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो जरूर बढ़ेगी, लेकिन अगर उसको जो
0: उसका प्रारूप नहीं बदलना चाहिए,
1: प्रारूप तो बहुत आवश्यक है, अगर आपने उसका प्रारूप ही बदल दिया तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: और जो आजकल हो रहा है तो उसके लिए भी जो है हमें पूरा ध्यान देना होगा कि शादी ब्याह में भी जो है जो होते
0: हैं से खान पान से
1: बिल्कुल
0: हर चीज को हमें संजोने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, बिना उसे संजोए जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर बिना संजोए आप आगे बढ़े तो उसका प्रारूप जो है वो बदल जाएगा और आपका किया हुआ जो है वो काम नहीं आएगा। इसलिए जो है आपको आगे बढ़ना होगा, और एक बात ये होती है कि अगर आप बच्चों को खुशी खुशी कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो उनके मन से छू जाती हैं, तो जो उनके मन को भा गई वो हमेशा के लिए आ जाएंगी, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए उनको कहीं ना कहीं आपको अपनी पकड़ में रखना होगा, उनको वो बातें बताइए जो ऐसी
0: जो उनको रुचिकर भी लगे,
1: रुचिकर भी लगे, जिसमें उनका मन करे कि आगे क्या। फिर आप कहानी सुनाए तो बच्चे पूछेंगे आगे क्या हुआ, राक्षस ने क्या किया, है ना, तो इस तरीके के प्रश्न बच्चे पूछेंगे, और आप उनका जब जवाब देंगे तो उस जवाब को वो हमेशा याद रखेंगे। मान लीजिए अगर एक कोई कहानी आप सुना रहे हैं जिसमें कि क्या होता है, एक व्यक्ति जो है चोरी करता है और आगे जा करके जो है उसको दंड मिलता है, तो बच्चे ने क्या सीखा कि चोरी करना पाप है, चोरी करोगे तो दंड मिलेगा, तो कुछ तो सीखा उसने ना जो सही है जो आगे जीवन में उसके काम आएगा।
0: गीतों के माध्यम से हम उनका चरित्र निर्माण भी कर
1: बिल्कुल
0: रहे हैं।
1: बिल्कुल, चरित्र निर्माण तभी होता है जब आप उसको कुछ अच्छा बताएं, कुछ अच्छा सिखाएं, और सिखाने का मतलब यह है कि आपको ये भी बताना है ये सही है तो ये गलत क्यों है, जो गलत है और जो सही है उसको साथ लेकर चलना होगा, तभी बच्चे जो हैं वो ये सीखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है।
0: देखिए, हम बहुत छोटे थे तो हमने कविताएं हिंदी साहित्य में हमने कविताएं भी पढ़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: बिल्कुल,
0: ये पुराने गाथाएं थी जो कि कविता के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान, माँ देवी वर्मा और कितने राष्ट्रीय कवि हुए जिन्होंने अपनी कविताओं में ऐसी ऐसी बातों को साझा किया हमारे साथ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को हमारे छात्रों को भी तो जोड़ने का एक माध्यम है।
1: बिल्कुल, और साथ ये है कि
0: महापुरुषों की गाथाएं बताना आवश्यक है।
1: क्यों बताना आवश्यक है
0: जी?
1: इसलिए कि जो उनका जीवन था
0: वो उदाहरण था,
1: वो एक उदाहरण था और वो उदाहरण आपको देना होगा। आप कहानियां 10 सुना दीजिए लेकिन अगर उसमें कोई उदाहरण नहीं होगा, अगर उसमें कुछ उनके लिए मन की चीजें नहीं होंगी, कुछ अच्छाई नहीं होगी, तब तक वो उनके मन से नहीं लगेगी।
0: मॉरिशस में ही

0: लिखें तो श्रीमती अंजलि
1: जी
0: कुपेन जी को उदाहरण रूप में हमारी कहानियों में हमारी कविताओं में जगह देना आवश्यक है।
1: बिल्कुल, ये तो ऐसा खजाना है जो कभी मिट नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उस खजाने को समेट के रखना, उस समेट से कुछ आगे बढ़ाना, कुछ उसे और सिखाना, कुछ और
0: सीखना,
1: क्योंकि बिल्कुल बच्चों को सीखने के लिए भी कुछ कहानियाँ चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी कहानियाँ जिनमें कुछ अच्छाई हो और कुछ बुराई हो, दोनों साथ मिलेंगी तब वो बच्चा समझेगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है।
0: जब तक आप रात नहीं होगी तो दिन का महत्व नहीं जानेंगे,
1: बिल्कुल,
0: जब तक आप ने गर्मी नहीं झेली तो सर्दी का आनंद कहाँ जान पाएंगे।
1: बिल्कुल, तो ये दोनों तरफ से आता है।
0: बिल्कुल,
1: एक ही चीज खाली आप अच्छाइयां सिखाते चले जाएं तो उसको क्या पता चलेगा एक बच्चे को कि हाँ बुराई क्या है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब बुराई और अच्छाई दोनों
0: हम चोर
1: एक साथ चलेंगे,
0: को भी जोड़ते हैं कहानियों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब दोनों को आप साथ लेकर चलेंगे
0: जी,
1: तभी जो है आपका मकसद पूरा होगा, नहीं तो बच्चे बीच में भटक जाएंगे, नहीं समझेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे अच्छाई की क्या अच्छाई क्या है और बुराई क्या है।
0: तो दोनों पहलुओं को दिखाना आवश्यक है।
1: बिल्कुल, दोनों पहलुओं को साथ के लेके चलना है, दोनों का क्या अच्छाई है इसमें क्या बुराई है, ये भले ही कहानी के माध्यम से हो, गीत के माध्यम से हो, या पुराने जो हमारे संस्कार हैं उनके माध्यम से हो, तभी बच्चों तक पहुंच पाएगा, नहीं तो वो भटक जाएंगे बीच में।
0: चलिए एक गीत के माध्यम से कवि कार्यक्रम को सजा रहे हैं, बातचीत उसके बाद जारी रहेगी।

0: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM3 Radio. Radio.
1: गीत, नृत्य और परंपरा.
2: गीत, नृत्य और परंपरा में आपने गीत बड़ा अनुरूप सुना कि सात सुरों से गीत बनता है और यही संगीत हमारे मन को लुभाता रहता है. चर्चा हमारी लोकगीतों पर ही हो रही है, पर साथ साथ में लोकगीत के हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य भी जुड़ता है, क्योंकि साहित्य से ही तो नई कविताएं, नए गीत उभरते हैं. और जब हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. कल्पना जी से बातचीत जारी है और अब हम जानना चाहेंगे कि आपके अनुरूप जो लोक गीत है, लोक साहित्य है, उसमें शिक्षा प्रद बातें भी आती हैं
3: जी,
2: तो इस पर आपका क्या विचार है?
3: देखिए, अभी हम बात ही कर रहे थे कि दादी नानी और ये जो गीत संगीत है
2: उनके अनुभव
3: हैं, उनको हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएं.
2: बिल्कुल.
3: तो लोक साहित्य जो है वो ऐसा साहित्य है जो कि बातचीत से आगे बढ़ता है, कहीं उसका लेखा जोखा नहीं होता है ना. और ये काम जो है वो दादी नानी करती हैं. तो जब तक वो जो है,
2: महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारे लोकगीतों में, लोक साहित्य में.
3: जीवन में अगर आप देखेंगे महिलाएं नहीं होंगी तो बहुत से हम
2: हमारी संस्कृति
3: बिल्कुल
2: को निभाती, निर्वाह करती भी तो महिलाएं ही हैं,
3: क्योंकि दादी नानी ही हैं जो कहानियां सुनाती हैं और उन कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाती हैं. जैसे लोकोक्तियां हैं
2: जी,
3: लोकोक्तियां जो हैं वो दादी नानी ही आगे बढ़ाती हैं.
2: बिल्कुल.
3: नाच गाने हैं जिसमें बुझव्वल आता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला जाता है, लोगों को जोड़ता है. साहित्य जो है वो उनके इन्हीं धरोहर से आगे बढ़ता है. अब ये गीत ऐसे गीत है, जैसे गाँव में बुआई होती है, कटाई होती है, उस समय वो लोग गीत गाते हैं.
2: हाँ, क्यों श्रम के गीत चलते
3: क्यों
2: हैं?
3: गीत गाते हैं इसलिए कि वो मेहनत का काम है और वो जो है उस मेहनत को खुशी खुशी करते हैं. अगर वो मुंह बना करके थके थके हो करके उसको करेंगे
2: तो फिर वो सोना नहीं उगल पाएगी, मिट्टी भी
3: वहीं का वहीं रह जाएगा. लेकिन इस तरीके से वो इकट्ठे होते हैं, 10-10, 15-15 लोग एकत्र होते हैं और जब वो गन्ने के खेत काटते हैं, उन सब करते हैं, ये काम करते हैं, तो वो गीत गाते हैं.
2: और जैविक जो कृषि होती है उसमें तो आजकल म्यूजिक चलाते हैं ताकि पौधे लहलहाएं, उस संगीत के साथ जुड़ पाएं
3: जी. और साथ ही जो है वो कोई भी मौका हो, वो लोग गीत संगीत को नहीं छोड़ते हैं
2: जी.
3: क्योंकि शादी होती है तो बनना होता है, घुड़चढ़ी होती है, एक रिवाज है. उन्होंने इसको रिवाज में बदल दिया. क्यों रिवाज में बदल दिया? जिससे कि कुछ ना कुछ तो नया करते रहें, नहीं तो शादी ब्याह वगैरह में और भी बातें बहुत सी होती हैं जिसमें मन नहीं लगता.
2: बिल्कुल,
3: कहने की बात है, मन नहीं लगता, कुछ नया.
2: और आज की युवा पीढ़ी को तो हर चीज नई चाहिए,
3: कुछ नया चाहिए. तो वो ऐसे में जो है मिलकर उन्होंने गीत गाया करते थे, ढोलक बजती थी, नाच गाना हुआ करता था चौपाल के किनारे.
2: मॉरिशस की बोली में बोलें तो ये हमारा सिस्टम है.
3: बिल्कुल,
2: इसे
3: बिल्कुल.
2: करना अनिवार्य है.
3: बिल्कुल
2: जी.
3: तो ये जो है जब इस तरीके से करेंगे तभी उन लोगों का मन भी होगा और तभी
2: वो कर भी पाएंगे.
3: लेकिन अगर सारे ही थक के बैठ गए तो कोई
2: कुछ
3: नहीं
2: कर पाएगा.
3: तो
2: बिल्कुल.
3: इन गीतों से, इन चीज़ों से जो है उनका मन बहलता था, उनका मन लगता था उन चीज़ों में, गीत गवाई में और नाच गाने में. तभी ये जो है नाच गाने गीत गवाई आज तक जो है चल रही है. उन्होंने इसको एक क्या बोलेंगे,
2: जड़
3: बना दिया, जोड़ दिया उन्होंने कि किस तरह, अगर इनके बिना जो है मान लो सब कुछ अधूरा है.
2: बिल्कुल.
3: तो अधूरा तो नहीं करेंगे, उसे अधूरा करने के लिए उसको कुछ अच्छा भी होना चाहिए, कुछ मन उनका उसमें लगना चाहिए. तो इन्होंने इस तरीके के गीत जो थे वो बना दिए. शादी ब्याह है, महिलाएं नाचती गाती हैं, देवी की पूजा करती हैं और जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं इसको उन्होंने आगे बढ़ाया. अगर ये नहीं होंगी तो आगे
2: उसको जोड़ के
3: रखना पड़ेगा. और जोड़ के तभी रख सकते हैं जब हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उससे जुड़े.
2: बिल्कुल.
3: जब तक आप उस पीढ़ी को नहीं जोड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते.
2: एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना आवश्यक है.
3: इसीलिए गीत जो हैं वो बहुत
2: आसानी से पहुंचता है गीतों के माध्यम से,
3: गीतों के माध्यम से पहुंचता है, और वो ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो गीत ना होते तो कौन बैठता है रात भर उसमें, लेकिन जब गीत होते हैं, नाच गाने होते हैं, ढोलक बजती है, तो कोई किसी का जाने का मन भी नहीं करता है, सब उसी में रम जाते हैं बिल्कुल ही।
2: बिल्कुल।
3: और इसी तरीके से जो है, जैसे शिक्षा का पुराना तरीका भी इसी तरीके से है कि दादी नानी ने जो है उसको इस तरीके से रखा कि उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जो है उनको दिखाई दे। लोकगीत हैं वो आज तक चल रहे हैं, लेकिन कहीं किताबों में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से वो बढ़ते रहेंगे। इतने गीत गवाई होती हैं, आप देखते हैं किताबें कहाँ हैं, लिख कर कहीं नहीं लाते, लेकिन उनको जो है वो गा करके जब करते हैं, कंठस्थ हैं, गा करके उसको ढोलक बजती है तो उसका समा जो है वो
2: बंद जाता है
3: और लोगों का मन उसमें रम जाता है। तो ये भी अब देखिए मॉरिशस ही है, 200 साल से जो समय हो गया, 200 साल के बाद भी आज तक ये जो है गीत गवाई और ये सब चल ही रहे हैं।
2: बिल्कुल।
3: और इनके बिना शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता।
2: बिल्कुल।
3: कुछ ऐसे गीत होते हैं जिनके बिना जो है वो कहेंगे काम पूरा नहीं हुआ,
2: अधूरा है।
3: इसलिए जो है इनका आना भी जरूरी है,
2: और देवी माँ का आवाहन करना, शिव का आवाहन करना, सभी देवी देवताओं का आवाहन करके गीत गवाई से प्रारंभ होके चौतारी तक चलता ही रहता है,
3: कुछ बच्चों
2: लोक
3: के लिए,
2: कथाओं के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से,
3: और यही गीत जो है एक साहित्य का रूप भी ले लेते हैं
2: जी।
3: इनको जो है जो कलमबद्ध कर देता है वो साहित्य हो गया।
2: बिल्कुल।
3: और उस समय को आज के समय से जोड़ के रखना एक
2: आवश्यक है
3: और आवश्यक है और जरूरी इसलिए है कि अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसको जोड़ना, आगे बढ़ाना और उसमें रुचि उत्पन्न कराना,
2: जड़ से नई शाखाओं, नई कोपलों का फूटना भी तो आवश्यक है
3: बहुत ज्यादा। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए जरूरी है कि हम उसे।
2: आपके साहित्य में भी बहुत सी शिक्षाप्रद बातें हैं, कुछ हमारी श्रोताओं के साथ साझा करें, क्योंकि कार्यक्रम को अंत की ओर लेके जा रहे हैं हम।
3: मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी इसमें
2: अवश्य।
3: उसका शीर्षक है आत्मज्ञान। ये भी आवश्यक है हमारे जीवन के लिए कि आत्मज्ञान भी जो है आगे बढ़ना चाहिए
2: जी।
3: मृत्यु शैया पर बैठा मैं, ये तो सभी को के लिए है, मृत्युशैया तो सबके लिए है,
2: कब है?
3: बिल्कुल, जीवन का कटु सत्य है। मृत्युशैया पर बैठा मैं, मुड़कर देखूं पीछे आज, असंख्य चेहरे जाने पहचाने पर मुझको कोई न जाने आज। लड़ता और झगड़ता था जिसकी खातिर दुनिया से, लड़ता और झगड़ता था जिसकी खातिर दुनिया से, जाने क्या क्या कर बैठा उसकी खातिर दुनिया से। लोग आपस में भी इस तरीके का जीवन होता
2: तो
3: है।
2: आपकी कविता ये संदेश दे रही है कि कहीं हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि कटु सत्य की ओर जाना ही है हमें।
3: बिल्कुल। मानवता की सीमा लांगी, सच झूठ की गांठें बांधी, क्योंकि हर कोई अपना ही अपना चाहता है, दूसरे का नहीं चाहता।
2: ये आज का परिदृश्य है समाज में।
3: असमर्थता की इस तन को बेबसी का पहने ताज, साफ नजर अब आता है, नहीं किसी संग नाता है, झूठे हैं ये रिश्ते सारे, भले ही हम कितने जुड़े हैं, लेकिन तब भी एक समय आता है जब हम उन रिश्तों से दूर भागते हैं। अंत समय बस खड़े किनारे, करें आज भी खुद पर नाज, जीवन घर सच्चाई है, हम सब जानते हैं जीवन घर सच्चाई है, तो मृत्यु उसकी परछाई है, उससे कोई नहीं भाग सकता, आज नहीं तो कल

0: आपके सामने आएगी ही। ता उम्र मैं ना माना, अंत समय अब आ पहचाना, एक एक कर उठे पर्दे। पर्दे भी धीरे धीरे ही उठते हैं
1: जी,
0: एक साथ नहीं उठते हैं। अंत समय अब पहचाना, एक एक कर उठे पर्दे, आज खुले उसके सब राज, देर बहुत अब हो चुकी। अब अगर आप सोचेंगे मैं फिर वापस पहुंच जाऊं और फिर अपनी बातें रखूं, तो वो नहीं हो सकता। देर बहुत अब हो चुकी, फूलों से काठी सजी, जिस माटी को रौंदा मैंने, जिस माटी को रौंदा मैंने, वही बुला रही है आज। माटी को क्यों रौंदा?
1: संदेश दे दिया आपने हमारे श्रोताओं को के जीवन में मृत्यु कटु सत्य है, पर जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। सत्य से अपने जीवन को जोड़ें तो सरल और सहजता से हम जी पाएंगे।
0: ये कविता का है, लेकिन हमारी दादी दादियों ने भी हमें यही सिखाया है कि जीवन कैसा होना चाहिए।
1: बहुत सुंदर संदेश आपने अपनी कविता के माध्यम से दिए। कार्यक्रम को अंत की ओर लेके जा रहे हैं। जो लोक गीत लोक साहित्य है वो तो है ही हमारे बीच, पर आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को संजो रही है, उसके लिए एक संदेश के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे।
0: देखिए अंजू जी, संदेश तो वही रहेगा जो आप भी जानती हैं, हमारी नानी दादियाँ भी जानती हैं, हमारी बहनें भी जानती हैं कि हमें क्या करना है। हमारा संदेश यही रहेगा कि आप बच्चों को अपने सही मार्ग पर चलाएं, उन्हें जीवन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। का आज जो है वो कल नहीं है, जो कल नहीं है उससे अगले दिन नहीं है।
1: पर परिवर्तन के साथ साथ हमें जो परंपराएं हैं उनका प्रारूप ना बदलें, उनको अच्छे से संस्कृति से जुड़ते हुए हमें जीवन जीना चाहिए।
0: बिल्कुल। और जो आज के गीत संगीत हैं, जो आजकल चल रहे हैं, जो हमारी नानी दादी का दिया हुआ है, उसको भी ना भूलें और उसको साथ लेकर आगे चलें, तभी हमारा जो है संघर्ष पूरा होगा और हमारा कार्य भी पूरा होगा। और जब तक बच्चों को हम उस राह पर नहीं डालेंगे, तब तक हमारा काम भी पूरा नहीं होगा, हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़ी, और पूरी टीम की ओर से भी आप सब श्रोताओं को भी धन्यवाद देंगे जो हमारे कार्यक्रम में जुड़े। और आज हमने बातचीत की लोकगीत और लोक संस्कृति लोक साहित्य पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य कार्यक्रम के साथ अगले शुक्रवार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुभ संध्या।

0: लगातार प्रयासों का हिस्सा हैं। मॉरिशस के निदेशक ने कल अपने कमर्शियल डायरेक्टर फ्रांसीसी नागरिक लोरां रिकुरा सहित 6 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ये फैसला इसके अनुबंधों से जुड़ी कई अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया है। लोरां रिकुरा को पिछले 2 वर्षों के भीतर दूसरी बार निलंबित किया गया है। और अब विदेश खबरें भारती बिहारी के साथ।
1: फ्रांस ने बताया है कि जून में यूरोप में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर के दौरान पिछले सप्ताह 2000 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यूरोप में कई हिस्सों में फिर से अत्यधिक तापमान देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान इलाके में एक यात्री बस के खाई में गिरने से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। बस 36 यात्रियों के साथ क्वेटा से निकली थी, लेकिन रास्ते में खराब हुई एक दूसरी बस के कुछ और यात्री भी इसमें सवार हो गए।
0: और इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Upcenter 95.5, North, South 95.6, 95.6, East, West 98.2.
4: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, हर शुक्रवार को हम कोई भी लीगल मैटर्स के साथ यहाँ पर आते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। तो आज भी हम जिस विषय के साथ आए हैं उसमें शायद आपको कहीं ना कहीं कोई आपके उन सवालों का जवाब मिल जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे बीच कपिल देव रघुनंदन जी हैं, हमारे वकील, जहाँ हम आज बात करने जा रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट और अगर समय रहा तो चेंज ऑफ नेम, दोनों विषय पे बात करेंगे। तो चला मिलके स्वागत करी लाजा। नमस्ते,
1: नमस्ते जी, जी।
0: कार्यक्रम में तो हर स्वागत बा।
1: शुक्रिया।
0: तो आज के हम के जिसे विषय रख रहे जा डेथ सर्टिफिकेट ना, तो जिसे हमने जब जन्म ले ला जा तो हमने के बर्थ सर्टिफिकेट रहला, वैसे ही हमने के डेथ सर्टिफिकेट जब कोई दुनिया से गुजर जाला तो ऊपर ला निकाली की।
1: जरूर, जरूर।
0: लेकिन जैसे

0: बोली राजा की हमने की जो न बर्थ सर्टिफिकेट है ओकर खातिन भी दूसर कोई चाहला निकाले के और जब हमने मर चला सा दोनों पर भी हमने के चाहला कोई दूसर कोई जो हमने के सर्टिफिकेट निकाले ला
1: जरूर पसी तो मर गए सर।
0: हाँ
1: हाँ जी बड़ी खूब सही है जोली से भाई बोला हम आज से जैसे भाई बोला था हमने आक दे देसी मतलब सा डेथ सर्टिफिकेट में जैसे बोला मज है बा हमने के पहला चीज जाएला कभी को आदमी या को लड़का कुछ भी हो वो गुजर जला तो पहला के चाहेला एगो रेंडेवू करे के ब्यूरो लेता सिविल जाए के डिस्ट्रिक्ट जो लंद्रॉ में वो हुआ मजे गुजर गल बा ये अभी देखा नहीं सब कब हो गया एगो आदमी गुजर जला तो का करे के चाहला तेना छोटा छोटा कौनसेई अच्छा है हमें कि भाई बहन लोग है जाने के चाहेला ऐसा एगो काम है अभी एगो आदमी तुहर परिवार हुआ बा तुहर आगे बा वो गुजर गल बा वो घरवा में अब आदमी पैनिक में नहीं जाने ला का करी कैसे कुमा जो के कुमा जे नॉर्मल हमने के कानून बुलाओ के चाहेला कुमा जे डिक्लेयर करे के कि गुजर गल बा तो कहाँ जाए के चाहेला आलो कैसे एगो आदमी गुजर जला तो ओके चाहेला लेता सिविल जाए के जो डिस्ट्रिक्ट में कुमाजे ओ गुजर गलबा सुबोजों वाकवा में है गुजर गलबा या तो कुमाजे तो ऊ जाई के चाहला के वाकवा के लेता सिविल जाई के और ओके संगे चाहेला ले जाई के एक बान डॉक्यूमेंट जोन जोन कुमाजे जैसे के जो नेसेसर बा एगो चीज पहला चीज ओके जाई के चाहला पहला डॉक्यूमेंट ओके संगे चाहला चाहेला एगो डॉक्टर के पापी दुखतिया के पापी दुखतिया फसी नॉर्मलमा कभी गोदमी गुजर जला चाहे वो दुखतिर के बुलाई के वो दुखतिर हुआ ओके एग्जामिने करी जब दुखतिया एग्जामिने करी तो ओके दे एगो कुमा जे एगो है एगो कुंस्ता कैसे उमर गलबा और कौन चीज अभी देता है मैं देखब सर कैसे मर गलबा तो ऊ दे पपी हुआ अब ओके चाहना संगे दूसरा दुखी मान ले जाए के आग दे निशांस मयाज जे शादी कर ले हुई
0: अच्छा
1: हाँ चाहेला कुमा जब उकमा जैसे बुझो शादी कर ली तो अगर पति या पत्नी होई ओकर लाख मयाज हुआ ले जाई के चाहेला लेता सिविल हुए जहाँ देख राय करी ओकर मजा गुजर गल बा और चाहेला ओकर कत ए दाँचीते है जो नदमिया गुजर गल बा ओकर कत ए दाँचीते ओके ले जाई के चाहेला सर देख ला हिया ओके चाहेला पहला ओकर कत ए दाँचीते जो नदमिया गुजर गल बा लाग देने सांस चाहेला ओकर पसीबु में देखे ना कब गुजर गल बा और चाहेला जे शादी कर ले हो ओकर लाख मयाज तो देख लो ये कब हुआ जाए तो अब लोफ सेवा से कुमा जे एक्सप्लिके करी कैसे होलवा तो देख लाई तब हमने देखब सर अब दिताई में हमने देखब सर एगो एक्ट ऑफ डेथ एगो डेथ सर्टिफिकेट जैसे हमने बोले सब फांसे में आग दे से एकर वाले का है एकर कौन च जाने ला एक बान आदमी कब जीते हुएला कब जियेला तो लाख देने सांस निकाली ला सर अब देखी ला सर हर आदमी जो ने होले बा पैदा होल बा वो एक दिन गुजर जला कब आल बा कुमा जे है इ दुनिया में कब कुमा जे ने होल बा तो देख लो बा जलसा तो बहुत करेला एक बार आदमी के पहले एगो लड़का होल लड़का होल तो एगो छोकरा होल बाप रे बाप बहुत खुशी से झाल डोलो वो बचाई और कुमा जे खुशहाली के में कब गुजर जला तो ई एगो मोम आवेला कब देखब आदमी कुमा जे सागर होएला अब रोई हुई तर अबे करेला तो ये देखला सर जैसे बा सोसाइटी बा दुनिया बा सब कोई तो जानेला भगवान बोले ला ना जो आदमी आल बा उ तो गुजरबे करेले एक दिन आज नहीं कल नहीं तो हमने देखला सर जो एगो आदमी ने होल बा पैदा होल बा एक दिन गुजर जला हाली जब एगो आदमी गुजर जला पहला जैसे देख ली सर ओके चाहेला एगो डॉक्टर एगो मेडिसिन के वो एग्जामिने करी वो आदमिया के नहीं सकी ऐसे नहीं दे वो पापी देखो नहीं सर एग्जामिने करी ओके कैसे वो आदमिया गुजर गल बा जैसे रीजन जैसे हमने बोले ला तब वो कब एग्जामिने करी तो ओकर देश सेवा में लाख देश सेवा में बोली कौन कौन चीज कैसे कैसे मर गल बा वो आदमिया अभी दे को एगो आदमी तो मर गल हो कजाक से तो मैं हुआ लिख दे अरे गो आदमी तो सिपोसो मरल बा
0: है लेकिन
1: हाँ पसी काहे भी बहुत है तोरा जब मर गल भाई कजाक से तो कोज ऑफ डेथ जैसे हमने बोला हर एगो
0: जितना कोई के देहांत हो जाला जितना कोई मर जाला जरूरी है कि ओकर एगो कोज बताए कि वो कैसे मरल होवन
1: हाँ पसी जाने ला काहे ऊ दुखते हुआ ऊ के बोले के चला ऊ पपीवा में ओकर रीजन कैसे मरल बा जे मरल हो एगो नेचुरल डेथ तक आया एगो बोली कि एगो कजाक से मर गल बा तक मजो मिलिक दे। अब एगो बोली कि उही आदमिया जब मर गल बा

0: supposons blessé ba gao lagal ba kuma je okay supposons ba ya koi khad dele ho ya kuch kar le ho yo kar kuma je chehra
1: koi blessé kar dele ho koi
0: muah dele ho to okay boli ya upapiwa me etil etil se maral ba aur us suspect karata ego foul play मजे ये गो मजे मरल मजे है नियर नहीं और मैं मजे को कारण से नेचुरल डेथ नहीं उप मजे दूसर खातिन बस कैसे उमरल बा तो हिया दिखला कॉज ऑफ डेथ ओकर रीजन और कैसे जैसे बोली उमरल बा उपपीवा बहुत बहुत इंपोर्टेंट है बस कि उही से अभी जाइबा ओके डिक्लारे करे कि उ गुजर गल बा तो पहला चीज हमने देखीला सर चाहेला एगो दुखतिया के पापिए और दुखतिया के पपीवा में सब लिखल बा ओकर रीजन कैसे मरल बा।
1: हां एगो सवाल करे खोजता
0: है जी, हाँ।
1: जब एगो लड़का पैदा होएला तो कितना दिन में सब जाओ के डिक्लारे करे
0: ओके सुसंतम सुसंत माफ कर सुसंत बताई कुमा जी सुसंत जू सुसंत जू में कुमा जी चाहेला ओके कुमा जी डिक्लारे कर दे के
1: तो जब कोई की मृत्यु हो जाला तो कैसे पापी बोला अभी ओकर जो लग देने सांस बाहर निकाले के सांस जू बा
0: हाँ।
1: ओकर अंदर अंदर सकब निकाले
0: हाँ।
1: तो जब कोई की मृत्यु हो जाला
0: हाँ।
1: तो ओकर जो सेचफिका
0: हा हां
1: देसी
0: जोली चीज बोला जाने ला नहीं नहीं भनत बिन जब हम तोरा एगो चीज भी हां कोते करेला अब एगो आदमी गुजर गल बा तो ओकर लिकोवा जोन बानो कर नहीं सकब कुमाजे रखे बहुत दिन बोले लनसन चाहेला कुमाजे कैसे तोहरा है लेता मिली चाहेला ओके दिखलारे करे की मैं कभी तक कुमाजे देखब एगो आदमी के वक्त नहीं मिलेला ओके कुमाजे दिसवित जाके कुमाजे देखला मैं एगो कुमाजे 24 के आगे ओके चाहेला कुमाजे ओके दिखलारे करे की अरे बान आदमी बोलेला तरी तो मर गल बा शामदी के दिन सिपा दिमाश के दिन लेता सिविल कुमाजे नहीं कुमाजे बाकी ओके दिखलारे करे नहीं बा एगो कुमाजे इमरजेंसी सेक्शन उले जब एगो आदमिया गुजर जाला तो जाके जाए उल ऑफिसवा प्रेजेंट रहेला कभी तो टेलीफोनिक करे लनसन कि यहाँ तेल होल बा तो बोलेला आई के ओकर बिरोवा में तो सब कुमाजे फॉर्मालिटी करेला अली जब बोलत हुआ कब दिखलारे करल जला जानेला कभी एगो आदमी के डिक्लारे करे के बड़ी दिन लगेला कितना बरिस अभी बोलिला एगो आदमी आवियों में जाता सी बुझो दूसर देश अब अवियों में आग धर गल वो आदमिया मर गल अब ओकर बॉडी ओकर है शरीर ओके लौगते नहीं बा एगो चीज है तक यहाँ तो नहीं जाना था आदमी वो मर गल बा कि जीता ही बा दूसरा बा लामेर में देख बा आदमी बा हुआ जो है गल बा हुआ जो नाशे करत हो या कोनो सिकलो नो नाल सिपा होल वो देख बा वो भी गुजर गल बा अब ओकर लिकोए जो नो कर है बा शरीर लगते नहीं बा तो कैसे कुमा जे एगो वैन कतरे में गड़िए कुमा जे सकबा डिक्लारे कर दे कि वो आदमी मर गल बा
1: जब लेकर लेको नहीं मिली तब नहीं सकबा
0: अरे यहाँ तो एगो बोली के बे एक से एक ऑप्शन बा बस हमने आपसे गो पोगा मई में एक्सप्लिक करे कि कैसे गो आदमी कब कुमाजे है ऐसन कामे हो जाला अली तो सब जाफे हो वो मांग करी एगो है कहीं 5 बरिस 6 बरिस लग जाला नहीं जाना था वो बा कहाँ कभी तो एक आदमी अपन घर छोड़ के चल गल बा तू सोचत हो कि वो गुजर गल बा यहाँ तक शायद दूसर देश में हो या कौन चीज तो आदमिया के नहीं सक बन मजे दिखलारे करे के तब बा एगो प्रोसीजर लाखों के मांग करल जाला कि ई आदमिया के होतना 5 बरिस हो गल 10 बरिस हो गल आज तक हमने नहीं कुमा जे ओके लौकल बा न घर में आल बा न कोनो कोरेस्पोंडेंट कर ले बा तो ए सोचत है सर उमर गल होई कुमा जे अर्जिते नहीं होई तब लाखों उदेश दे करेला उजीज दे सीधे करेला जे कुमा जे है कोवें के कर देला उजीजवा के जीजवा कुमा जे एक्सेप्ट हो गल तो सकेला वो डिक्लारे करे कि वो आदमिया हुआ गुजर गल बा।
1: अच्छा जी एक साथ एक गीत सुनी ला जा और अगर बाद में वापस आए ला जा अम्मी के कार्यक्रम आज की चर्चा के आगे ले जाए खाते
2: आज की

0: एक बार फिर से सबको की स्वागत करती थी आज की चर्चा कार्यक्रम में। हम हैं वेदिता, हमारे संगे हवन, हमने के आज के मेहमान हमने के वकील कपिल देव रघुनंदन जी। आज विषय बा हमने की डेथ सर्टिफिकेट जिस वजह लाख दी से, और अभी हमने बताया था रिजाना कि कोई के अजय मृत्यु हो गल बात कितना दिन लगेला ओकर लाख दी से निकाले के।
1: हाँ जरूर, और जैसे बोतरी से ना हौ आदमिया औसन से कॉन्स्टेंस में कब गुजर जला आदमिया तो हमने नहीं जानी ला सक कब गुजर गल बा नहीं उतर नहीं सब वैन कातरिया में कुम अजय ओके एनरजिस्टर करके ओकर लाख दी से जे मिले के तो वो आदमी से चाले को केस लाकू में डाले के लाकू में दलबा तो ओके
0: मृत्यु हो गलबा जैसे कैसे बोला कि भी प्लेन क्रैश रही या तो फिर हाँ, कोई लामिया में डूब गलबा हाँ, तो इकर खातिर पर लाकू जाए के।
1: हाँ, जब उ नहीं जनबा उ जीता बा की मर गलबा उ अवियों
0: अच्छा,
1: में
0: मतलब की मतलब की आज ओकर ले को नहीं बिलल बा।
1: हां तब हां तब पता नहीं जनबा ना उ मरिए गलबा या एक बार आदमी तो देखबा कि वो एक क्रैश में उ सकेला सांस होयो के सापे हो गलबा तब तब जीता बा किसी के देख ओके लाख दे से ओके मंगबा की डिक्लेयर करबा की उमर गलबा नहीं सब नहीं मिसल में ये खातिर कानून बोलेला कभी तो आदमी सैफ नहीं जनबा सब नहीं करेला ओकर घर वो से छोड़ के चल गल बा ओके लगते नहीं बा तो पत्नी ते यहाँ तराकास हो रहा
0: नहीं जनबा जीते बाकी कौन छोड़ बा।
1: हाँ तो ऐसा नहीं सन कामे द है वैन का तो रहता मैं नहीं सक बा ओके डिक्लेयर करे ना तो ये गो एक्सेप्शन है। मैं अभी हमने देखी ला सा जब एगो आदमी मजह कब गुजर गल बा तो चाहे ला अनरजिस्टर करे के ओकर है कि गुजर गलबा ओकर देशे जैसे हमने बोले दस तो आर ओकर जैसे लेके गई ओकर राख देने सांस शादी कर ले हो तो लाख मया सहेला ले जाए के और एगो प्रेम लादेस बस कि बोली नहीं सब ओकर का ही सब एपोत ओकर प्रेम दे लादेस कहाँ मरल से बुझो एगो है

0: Rosil me morel ba kon kon la riame te mon lig de leba ou kor l'adresse ou kor carte identité or ou kor nam ou kor ma or bab ki nam
1: अच्छा
0: तो हाँ तो लाग दे नेसंस कबले गई ला तो बानो ओकर है है लाग दे नेसंस वा में ओकर नाम तो का करी जब हुआ ले जाई लेता सिविल वा में एगो बा हमने के बोले सिविल स्टेटस ऑफिसर

0: सर्टिफिकेट हुआ से तब सगब वो आदमी आके ब्यूरियल होकर क्रीमाशियों करे
1: अच्छा
0: न तो नहीं सगब मजे अगर ये दिन हई मर गलबा नहीं सगब के मजे जाके हई कैसे बोले जराई के हई में शमशान में जाके के गाड़ देब या के मजे जाके मजे हई जरेब नहीं तब लेक उ हई नहीं मिले वो क्रीमेशन पेमित नहीं सगब वो आदमी आके मजे हई हई मजे करे ओकर खिमाशो करे तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बा और तब ओकर बाद सगब मजे वही फिनेगाई जैसे हमने करे सर एगो आदमी मर गल पापिए मिल गल तब सके ओके कंधा में लेके जालन सन आर सिपा देखब जहाँ जाला जा दे हई कभी हम देखी ला कि मजे को लाख आवाज में रहला तो एगो सिस्टम करे लन सन या ले जा ला आर दूसर जे एगो खुशियाँ हुई तो कर तो नहीं बहुत तो जाई हुआ जी गई आर धामने एगो लेता सिविल देखब ऐसा काम में जो एगो आदमी कब गुजर गल बा तो ओके वित्तीय कारण से निवे मोए कैसे सेजे तक ओके कुमा जो लास्ट सेमेन में खुले ला मिसल में बा एगो सामदी और दिमास या एगो है बारह बजे हुआ सकब कि एगो आदमी बारह बजे तक वो खुलल रहेला उ सकी एगो आदमी जाके हुआ ओकर कुमा जो आदमिया गुजर गल बा ओके दिखला रे करे और जे कुमा जो हो गल बा सामदी हो या दिमास हुई बारह के
1: पब्लिक हो रही कुछ हो रही था
0: हाँ तो बा एगो सिस्टम ऑन कॉल जिसे हमने बोलिया सर बा एगो सिस्टम कुमा तू है एगो कॉल करब तो हुआ बोली तोरा कहाँ बान कर था ओके आए के और हुआ चाहे ला आली अब हमने देखब सर कौन चीज है एगो डेथ सर्टिफिकेट एगो एक्ट से ही तो प्ली इम्पोर्टेंट पोर मोआ के विषय है बस इतना एक मान आदमी कुमार जी एगो कुमार जी लेवे एगो लाख दे से या गो लाख देने सांस उठा के खाली ओकर चुवार में डाल ले पहले के ते माता जी या पिताजी रहल का करे लमाल में एगो लाख देने सांस डाल देते रहल तो लाख दे से वो भी कोनो आदमी कब गुजर जला बस क्योंकि पिता रवि सेवी कर एक दिक्कत से ओकर ले पोतांस तो लमाल में डाल ले अब तक घर में डाले सन एल्बमू में लिमन से हई रख देवे सन आ जे गुजर बिलैयो गलो तो लेता सिविल से तो ओके एगो कॉपी मिलबे करी आली हमने देखे ला सा एगो आक दे से एगो लीगल डॉक्यूमेंट एगो डॉक्यूमेंट जो उनके कानून रिकोनेट करेला ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये जैसे हम बोली ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस ओके डिक्लारे करेला है देवेला ये है पपी हुआ जब वो आदमिया सब डिक्लारे कर दे लेवा अब कौन सी बा एगो लाख देशे में हाँ कल तो सगब घरे जाए अपन लाख देने सांस में सब चीज तब देख लेला तो वो जो आदमिया तो गुजर गल बा तो अपन लाख देशे हुआ तो नहीं सकी ना तो अब हमने देखे अब सर ये सब अभी देखब सब क्या ये इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम हुआ हमने रख ली सर आगे देशे हुआ में अब यहाँ देखब एगो लाख देशे में ओके कब दिक्लारे करेला वो लेता सिविल हुआ वो सब मत कब देखब तो पहला देखब एगो दात दतुआ कब वो आदमिया गुजर गल बा अरे कब दात हो गल बा ओकर प्लास इज बोलत नहीं एगो लादरस ले जाए के चाहला बोले कि कहाँ गुजर गल बा तो ओ लाख दे सेवा में डाली ओकर दात ओकर लही प्लास कहाँ मिला ओके पाशो कौन आदमिया ओ का करे से बुझेंगे क्लॉक रह तो लिख दे हुआ क्लॉक बा अब हुआ डाल दे ओकर ओके पाशो तो ओकर लादरस डाल दे ओकर रिलीजन भी डाले ला एगो चीज नहीं सोचले रहल तो रिलीजन के डाल दे जहाँ जन्म ले रहा बा अब जहाँ प्लस मर गल बा
1: हाँ दोनों चीज
0: दोनों ओके है डाले ला और कहाँ वो जाए ब्यूरियल कहाँ जाए क्रीमाशन करे से
1: बुझूला
0: हाँ सब अभी अभी बोले सर काहे ओकर अभी इतना इम्पोर्टेंट है आदमी सोचेला वो तो मर गल बा वो का वो तो नहीं देखेला वो तो गुजर गल बा कहाँ के लौकी मैं सिलमा अब यहाँ देखत है क्रीमाशोवा में बोली ये नहीं अब ओकर देता ही ओकर आई डी बोली कौन चीज ओकर नाम रहल ओकर सेक्स कौन चीज रहल मेल या फीमेल ओकर लाज का रहल और कई बजे वो आदमिया गुजरलक कई बजे मर गल कुमा जे वो आदमिया आर ओकर दात देख रजिस्ट्रेशन तो वो सब कब हुएला तो वो ऑफिसियवा सब चीज रिकॉर्ड करेला लिख देवेला पस कब दे वो लाख देने सांसवा में सब चीज जोन बोली सा वो बोली आर ओकर बोली वो बेस्ट आई में सर्टिफिकेटवा में डाली ओकर नाम ओकर शियनो ओकर बाप के नाम और ओकर माँ के नाम और कौन दिन ई सर्टिफिकेट हुआ दे सर्टिफिकेट हुआ दिले रहल आलू तो देखेला ई एगो बड़ी चीज इम्पोर्टेंट है अब एगो चीज देखेला सर एगो लाख दिशे ओकर लाइम्पोर्टेंस है कौन चीज है त एक बांची दिखिला सर जोन चाहेला।

0: एगो लागदेश एगो रिकॉर्ड है एगो आदमी के कि आदमिया गुजर गल बा। अब जे गुजर गल बा तो एगो चीज इम्पोर्टेंट है बताई के हर आदमी कब इलेक्शन आवेला तो जाके एनरजिस्ट्रे करेला उकुमा जैसे इलेक्टोरल रजिस्टर में उकर नाम तो हिया कबू आदमिया गुजर गल बा तो इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर वो कैसे जानी बस कि कुमा जा लेता सिविल में वो भेजिए ना हुआ ना कि ई आदमिया गुजर गल बा। हाँ। एगो लालिन डाल दे जहाँ ओकर नमुआ रहल तो एगो कि कुमा जे ऐतेल ऐतेल जू मर गल बा न तो सकत एगो फोड होई कब वोते होई तो वो आदमिया जोन मर गल बा कोनो दूसरे आदमी से कि बोले कोई तो नहीं जानत कि मर गल बा जे नहीं रहते से हाँ तो ओकर ऊ जाके वोते करत तो देख लो हिया ओकर इम्पोर्टेंस कौन सी है एगो आके दे देसे के। अब ये तो कोरेक बा कितना गवर्नमेंट बेनिफिट्स बा कि एगो आदमी के मिलेला कब गुजर गल बा तो देखिए कैसे
1: पेंशन मिलेला कोई के
0: यही पेंशन जे मिली था जे कटा गल हुई पेंशन या कुमा जे पेंशन नहीं मिली तो ओकर नमुआ तो हुआ कटा जाए ना कि ये तो गुजर गल बा। अब सिर्फ नहीं एगो आदमिया जब गुजर गई पति हो या पत्नी हुई तो एगो बेनिफिट मिलेला वैव पेंशन दे वैव तो अब सर्टिफिक हुआ तो आकब देश हुआ चलेला अरे वो पपेवा नहीं रही तो कैसे सकी वो आदमिया एगो है बेनिफिट मांगे है वैव के एगो पेंशन तो कि नहीं मिली मैं फोदे ये चाहे जब जाए के हुआ तो ओके मिली तो ओके सब हुई अले हमने तो जान ला सर एगो आदमी एगो पासपोर्ट निकाले खोजता हाँ कभी एगो पासपोर्ट निकाले खोजता तो देखे लन सर न कि ये आदमिया मर गल बा। अब जो मर गल बा तो रिकॉर्ड हुआ हुआ का करेला जाके सब सांसे करेला ओकर दोने नहीं कि एगो आदमी फुस पासपोर्ट करके एगो फुस नाम में ओकरे नाम में से बोझो को मर गल बा ऊ जाता तो हियाँ कंप्यूटर बा जाने लगे ओपो जाइबा तो एगो बड़का कंप्यूटर पर ऑफिस हुआ जो वहाँ पुलिस हुआ बैठेला वो देखेला इन आदमिया के नाम पहला इन आदमिया कुछ कर ले बा कि नहीं कर ले बा पंगर एगो ऑब्जेक्शन तुदी पहुँचे बा तो वो सब सब दे सब
1: चेके कर ले
0: सब चेके करेला तो हियाँ दे लाख दे से हुआ नहीं बा तो सब जो आदमिया तो जीता बा तो वो सब चीज देखे लंसन कौन चीज पोता कि वो आदमिया जीता बा कि जीता नहीं बा तो हमने बोली सन और देखल जाए कि ये आदमिया जो गुजर गल बा तो पोता बतावेला कि ये आदमिया कब मर गल बा सिपोजों कर पत्नी अब तो वेव हो गल अरे कालो की मन बा शादी करे के अरे हाँ कबो के मन बा शादी करे के तब सब कुछ तो बोली अरे फलाना तो के मराम के नहीं जाने ले वो तो कुमार जब खोजा था छोकड़ी एगो छोकड़ा से जा कि शादी करे के तो पति मर गल बा तो कैसे करी आलो जाए कब शादी करे ओकर कुमा जे है देखलाशो दे के हुआ फुमुआ गांपड़ी करे तो के बोले के चाहला कि देख हम कुमा जे है शादी कर एगो वैव है में है का हमर एगो बा एगो पापिए कि हमर बूढ़ा मर गल बा तो सब जे अब हम कुमा जे सकब शादी करे बस कि जब तब एगो आदमी कुमा जे ओकर पति बा पत्नी बा दोनों जीता बा तो नहीं सकी ना एगो दूसरा शादी करे
1: हम तो हर से को और सवाल करे देखला हाँ। जैसे बोला अभी एक जना के देहांत होगल बा मान ला पति के देहांत होगल बा
0: हाँ जी।
1: तो जो पत्नी हुआ तो विधवा हो गई
0: हाँ।
1: ना
0: हाँ।
1: ओकर जो अवथी बा जो ओकर लाग देनी सांस बा तो मान लगे लाग देनी सांस निकल ले हवन ओकर जो शादी की ओकर जो लाग मौयाज बा तो कहीं ना कहीं जब मदा मुआ के ओके जहाँ लिखा रहला वीडियो
0: हाँ जी।
1: तो ओकर कौती दौचते ओकर कौती ओकर जो लाग देनी सांस बा पर बदले के
0: नहीं
1: नहीं
0: वो लाग देने सांस हुआ रही वही में लाग देने सांस में कहूँ नहीं लिखल बा कि ये एगो विडो है समझ लो ना नहीं बा खाली लिखले हो कि शादी के मजे कर ले हो एगो लाग देने सांस हुआ में तो नहीं बा लाख मजे मौयाजुआ में बोलत हुआ लाग दे मौयाजुआ में हुई तो ऐतिल से शादी कर ले बा वो मर गल बा तो ओकर लैपो तो सके के गो चीज़ बताई कि देख जहाँ कुछ सर्कमस्टांस आई कि देख लो हम शादी कर ले रही मैं हमर पति मर गल बा यही सकल ओके बताई और उस फाइले करी वो लाग दे है दिस हुआ कि बताई के कि सच्चे के मर गल बा
1: हाँ।
0: अब जाई हुआ लेता सिविल अब ओके मन हुई शादी करे के तो ही तो पहला चीज मानिए पूछे लन सन ऑफिस हुआ हुआ और लिखल बा फूमा में एस की वैब हो एस की शादी कर ले हुआ या नहीं शादी कर ले रहा ये सब सब तब ऑफिस हुआ कुमा जी कब शादी में आप सर तब नहीं देखब सर कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहे एगो आदमी के शादी करे के आले तब हियाँ ओके मिल गल तो चल ओके सांस हो गल शादी करे के एगो दूसरा आदमी के बिना

0: फित मिला था वो पपीवा में। अब बतावल जाए कि वो शादी नहीं कर लेबा। अब सबसे बड़ा चीज एगो लाग देसे ओकर लैपोटेंस से कब एगो इरिटेंस जब तोरा एगो कुछ मिली है के कुमा जे जमीन के तो ऊ जाने के लापोटास ऊ जाने इनहेरिटेंस ले इरिटास में इरिटास में बहुत बहुत इंपोर्टेंट है कि चाहे ला एगो लाग देसे। अरे माँ बाप जमीन छोड़ के चल गल बा, जमीन छोड़ के चल गल बा तरी तो लड़को भी छोड़ के चल गल हुई है। जब वो लड़का हमने देखो सर एगो दूसरे पुका मानव सर कभी गोदमी शादी करेला लड़का नहीं बा तो का हो ला ओके यहाँ तक दे से कि हम बात करते हैं सर जहाँ यहाँ भी आवा था ओके अब ओके मिले कुछ ना कुछ ओकर माँ बगल से या बाप बगल से बस कि छोड़ के चल गल बा। तो अब पहला चीज माँ बपुआ कभी यहाँ रखल तो पोताज नहीं कर ले बा, नहीं दे ले बा अपन लड़का लोग के जीता में तो एक बार कोई बोले ये हम नहीं देव कब मर जाब तब वो लोग देखे अनसन से अब का करे अनसन। तो यहाँ कब वो लोग गुजर गल बा तो वो लाख दे से वह पोता बा पोताज करे के बस की कब पोताज करे के चाहे ला पहला चीज वकील या वो कोई जे करता हुआ है मेमकिन होतेर तो बोली अच्छे है जमीन हुआ तुहर भाई चाहे बा के तुहर पिताजी के पिताजी बा कहाँ या माता जी कहाँ बा तो बोली मर गल बा। तो बोली हाँ तो को ऐतेल ऐतेल डॉक्यूमेंट अन्य अन्य तोहर लाख दे से जोन पिताजी के कुमा जो गुजर गल बा तो उ लाख दे से वा से जानल जाए के छोड़ के गल बा ओकर जीवी चिए एगो पोताज यहाँ भाई ए करता ओकर पोतजुआ में छोड़ ले बा उ कौन कौन है ओकर लड़का है। तब सकी लड़का कुमा जा जाके पोताज करे जीता में तो माँ बाप हुई तो मन हुई पोताज करे के दे के या कुछ करे के तो वो तो जमीन ओकर है जीता में वो करता या एगो तेस्तामा करी या कुछ करी मैं यहाँ देख ल पहला चीज चाहे ला ओके कुमा जे एगो लाख देसे लाख दे सेवा में मांगे पसके तब लेक एगो सचिफिका जैसे आग दे सिक्सेशन जब कहानी बोली रहा करल जाला तो आग दे सेवा नहीं रही तो नहीं सकबा वो आदमी आगे डिक्लारे करे कि मरल बा या कुछ होल बा। तब जय मिल जाए ई एगो डॉक्यूमेंट बड़ी इंपोर्टेंट हुई जब एगो पोताज होला जब एगो जमीन या वो बंटवारा या होला या लड़का लोग अपन नाम में जो माँ बाप छोड़ के गल बा मजे जमीन वो लोग के नाम में करत है वंशन। तो ये देख लो बड़ी बड़ी ऐपोता बा एगो से आ दूसरा कभी को लाफी दावीद करी
1: हाँ ये भी बोले रहला जब लाफी दावीद होला तो एकर में भी कहीं ना कहीं जितना दुखीमो बा ओकर में डेथ सर्टिफिकेट आज कोई मर गल बा था ओकर हाँ, भी काम चलेला
0: है का। तो देख लो वो लाफी दावीद करी जाए काल तो बोली ना वो लाफी दावीदवा में कि देख अरे कभी एगो आदमी है कब गुजर जाला तो एगो लाफी दावीद सिक्सेशन दूगो ते मुँह के ले जाए के चाहेला बताए के चाहेला कि आदमिया ओकर बाप हो या माँ हो माँ हो कि दोनों है गुजर गल बा। तो हियाँ लाफी दावीद चाहेला हुआ है कि आगे दे सेवा पूज्य करे के तो दिख ल बड़ी बड़ी इंपोर्टेंट है कहाँ कौन से कॉन्स्टेंस में देखब हियाँ एगो लाग दे से काम करेला। अरे अब सोचत हैं सर कि बहुत बतिया दिली सर है आग दे सेवा में अब हम चली सर के प्रोग्राम बेसिक कब आई सर चेंज ऑफ नेम
1: हाँ।
0: कैसे एगो नाम बदले ला
1: हाँ।
0: जाने ला एक बार है प्रोग्राम कर ली सर फेनो सियनो कैसे एगो आदमी के मिलेला अब कुमा जे ऊ कब हो जाला कैसे एगो माँ बाप अपन लड़का के खुशी या आदमी कब हुआ भी जीते बा वही ओकर मन बा ओकर नाम साझे करे के
1: हाँ।
0: कभी तो देख बस साझे करे लनसन दोनों ओकर पहनो साझे कर दे या ओकर माँ बाप के कुमा जा फिलियासों जोन से रगल ओकर बाप के ओकर सरनेम ओ साझे करी बस क्योंकि नहीं मन बा कोनो रीजन के भी देखब सब
1: हाँ।
0: दूसरा देखेला सब बहुत गलत हुएला एगो आदमी कब लिखेला ओकर नाम हाँ। कैसे एक बार आदमी हमर रे नाम ले हुआ था रघुनंदन कब बोलेला तो हमर नाम ए आ
1: हाँ।
0: तो एक बार पस मर बाप दादा पर ए आ बा तो मर नाम तो को एक बार सियनों के विषय में एक बार कोई ए ई डालेला
1: हाँ
0: समय ए रघुनंदन मर तो नाम नहीं है ना रघुनंदन नाम तो हियाँ एगो गलत हौ युवा के अब के मान करी चेंज करे के तो हियाँ देखते हैं सर पहनो साझे करता साझे करता ओकर सरनेम के माल लिखल हो तो ऊ भी देखब कुमा जो के मन बा साझे करे के एगो एग्जाम्प दे ला जानेर पहिले के ऑफिसिए

0: जो नेता सिविल में रहल तो उ लोग खोचियाँ रहल तो उ लोग कब खोचियाँ रहल तो उसे जैसे जाने एगो आदमी के बोले एगो कबल सन दिखलारे करे एगो लड़का के तो बोल सन कौन चीज ओकर नाम हो तो के बोली ना तो क्रियोल में तो बतियाता तो हमने के भाई बहन लोग मुश्किल हुए कुमा जे बतियाई के हई में क्रियोली में तो हियाँ जाके बोले के जहाँ एगो आदमी के नाम है बोले हमारे बेटी तोर बेटी के नाम का है तो बोले ओकर नाम है मुंती
1: हाँ
0: तो हियाँ माफ करिए नहीं बोलब राज में तो मुंती से का कर दिले एगो चीज कुमा जे गलत दूसर नाम दिलक एगो गाड़ी नियर नाम समझल ना तब ऊ हर आदमी कबो के खल्ला करिए छोकड़िया के मदमुआ के तो देखिए कहाँ बाहर से हुए तो बोले ये हमार नाम नहीं रहा हमार नाम तो है मुंती है तो यहाँ कैसे कुमा जे एगो ऐसा नाम डाल दिल

0: खला करिए छुकड़िया के मधमुआ के तो कि देखिए कहाँ बाहर से हुए तो बोले ये हमार नाम नहीं रहे हमार नाम तो है मुंती है हाँ। तो यहाँ कैसे कुमा जी एगो ऐसा नाम डाल देला
1: पर नाम में दुगो ए डाल देवेला
0: हाँ।
1: दुगो आ डाल देवेला कब कब ऐसे होवेला
0: हाँ जी
1: तो मान लो हम अपन नाम सोच करत है तो जैसे कि हमार राम कालावन है तो हम बोलब नहीं हम राम खेलावन डालत है तो हम अवा निकाल के एगो अश और एगो ए डाले खोजत है तो ओकर में वजह पूछन जा कि काहे सोच कर रखत है
0: तो ही ऐसे बोलबा कि तुअर बाप मजे तुअर नाम लिखल बा सिपा ए सिपा आ अब तू सोचे करे को जा तो ऐसा नमुआ में बस ही बड़का राम खेलावन राम कालावन बड़का एगो साउंड करेला दिशन बस कि तू नहीं खुशी हुआ कब कुमा जे है के हला करल जाय तो या ई नमुआ तू सोजे करे खोजत हुआ ई सकेला तोरे गो प्यासुनेल तोरे गो मन एगो इच्छा कि तू सोजे करत हुआ या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस खातिन कि नहीं तू सांत अरे सब कोई तो तुम जे लिखल बा तोहर पिताजी के नाम जैसे राम खिलावन तो अब तुम जे हिया तोरा डिक्लारे कर दिले बा उलेता सिविलवा के क्लकवा डाल दिल बा है राम नहीं सिपा एगो है एगो दूसरे में समझ लो ना तो ई तू तो नहीं खुशी हुआ बोत कैसे मर माँ बाप लोग
1: जब जब जब नाम लिखल जा रहा है लड़का के जब जेब एगो लड़का के नाम कहते नहीं बल्कि जो बर्थ सर्टिफिकेट बा बनाए तो जाहिर सी बात वहाँ पर अभी हम जानते हैं कागज में बैलन से लिख के देखे जबकि एरिया नहीं हुई लेकिन आगे के जमाने में ढेर प्रॉब्लम हुआ था हल
0: नहीं बोली ना कब है थरेलवा एगो है खैचियाँ रखल वो लोग मजे सिविल क्लॉक रलन सन तो ओके कब एगो गैलक है एगो माता जी एगो है पिताजी गल ओके को मजे डिक्लारे करके ओकर लैकवा के जैसे ओ पोनो से करलक ओकर लैकवा के नमुआ बस पिता नहीं जानता लिखल कैसे लिखे ओके चाहेला तो वो धल देलक अपन जी से वो लिखलक ओकर सिविल क्लॉक ऑफिसर हुआ ओकर मानियर में तो हिया अनमन जन से बा हुआ लग देने सोसवा में ओकर माँ बाप के नमुआ रखल तो अनमन नहीं बा हिया या एगो ऐसा एगो दूसर नया नाम में कब फोनो से करब तो देखब कुमा जे नहीं बा अब तू सब कोई जानेला ऐसे हो तो अब चाहे सौसे करे के नमुआ बस कि पिया सुन लो तू तोर मन बा या जैसे नमुआ लिखते दाँचीते निकल तोर कहते दाँची में तो पिताजी के जैसे पहले कुमा जे नमुआ लिख रहा तोर लग देने सौंस में अनमन हुआ नहीं बा नहीं यार कभी आदमी बोले नहीं तो यहाँ बुझाता कि वो दूसरा आदमी है
1: ऐसा होल बाकी किसी कॉज नौशी में एरिया कर ले नहीं कब गलती से कब कुछ हो जाला ना माना कि माना कैसे एगो नाम लिखत हुआ लक्ष्मण तो लक्ष्मण में कहीं हो गल बाकी वजह कैसे अगर में कैसे बोला कि एल यू से एल आ हो गल बा या तो फिर जब यू आ लिखत लन से एगो आ करीते हो गल बा तो लक्ष्मण हो गल बा तो ये सब निकाल देला बाद में दिखला एक में दूसर कुछ लिखल बा हाँ। प्रॉब्लम होवेला कबो
0: बहुत प्रॉब्लम होवेला बस एक बार आदमी बोला था देखिए तो जैसे तू बोला तो तुहर नाम लिखल बा और जैसे बा हुआ पपीवा में हम तो नहीं लोग अब किसी हम जानब तू ही आदमी हुआ सैप सैप चीज खोजे लनसन कभी मजे को प्रॉब्लम हो
1: भले भले माता पिता जोन बा भले माता पिता जोन बा लैकवा के बर्थ सर्टिफिकेट में माँ के नाम बा बाप के नाम बा लैकवा के निकल बा लेकिन जब खजदे बनल बा तो वहाँ पर ई के बजाय आ डाल दे हुआ सर
0: देखो रेक्टिफिकेशन करे के चाहेला कि कोई ओके आदमिया कबो के मन हो एक नाम हो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में जब ओके अब सर्वे करे खोजा था तो एगो डिफरेंस बताए
1: एक प्रॉब्लम होला एगो अल्फाबेट से
0: बहुत ही भाई नमुआ कब लिमन से नहीं लिखल बा तो वो प्रॉब्लम देबे करेला सब कोई के कभी देख लो एक बान है कि जिहुचिए के एक बान है बा है लड़का एगो माँ बाप के पाँच गो लड़का बा अरे तीन गोली के निमुआ कोरे बा या चार गो के निमुआ नमुआ अनमनो कर माँ बापुआ नियर बा मैं वो करे या एगो भैया के तने डिफरेंस होला तो कभी बोले लंसन नहीं सोजे कर ले हुई तो एगो नाम ऑल्सो नोन एज एगो लाफिदाफिद कब करेला या गो के बोलेला हाँ और नाम दूसरा भी जानल जाना यही आदमी या तो जहाँ अब लिमनवा जैसे बोला था ओकर बाप मावा के नमो एक जाग डाली ऑल्सो नोन एज समझ ल ना ये हर लाफिदाविद में देखब कि हम तो पाची गोल से कितना बैसे दिखते जैसा कैसे हो रहा तो वो आदमिया वही आदमिया है जो उनके नमुआ हिया गलत से होल बा तो देखे ला ये लाफिदाविद का मजे करके है बताई के चाहे ला कि ऊ बा तो हिया ये सब एगो प्रॉब्लम देवे ला एगो आदमी
1: हाँ बात करे थी जब चेंज ऑफ नेम के हम हाँ। जितना भी दर्शक लोग हमने देखा तो बन जा हाँ। तो जब हमने चेंज ऑफ नेम बोला थी तभी तो हमने खाली बोला थी।

0: कि अल्फाबेट कब इधर उधर हो जा रहा
1: जी।
0: लेकिन मान रहे छोकरी शादी करलक तब शादी करलक तो अपन पति के नाम लेलक तो जब जिवोसे हो गल तब ओके तो परिला पति के नाम छोड़े के
1: नहीं नेसेसर डिक्लेयर रिसेंटली के प्रोग्राम में ना अब पति के छोड़ देले बा मिसलमा वो जो नमुआ ले ले रहा पतिया के वो करे रखे खो जाता वो नमुआ नहीं सर
0: पसी का है जो,
1: हाँ कर दुआ है कुछ सिविल मोशन सब लिखल कानून है वो के दुआ देवेला सांजे नहीं करे के या के मन हुई भी सांजे करे के या कर पति के नमुआ रखे के पस के वो बोले खो जाता आले एक आदमी बोली पे काहे तो रखे तो जीवोस्त हो गए बोले नहीं हम जोड़ा नहीं अमर है ओकर नमुआ से बस इस सब आदमी हमके जाने ला एंटेल नेम हमर क्वालिफिकेशन जैसे नहीं बोल सकते दुखते रूप से के दिख ले रही सर
0: तो से जीविका तो जितना कुछ बस सब जो हो नाम है
1: ओकर वही नमुआ से है है चली ये वो सर्टिफिकेट तक कैसे अभी हमके मिल गल बा कब हम कभी सेपे करते ली हम हमने के लिए पोक नियर नहीं रहा अभी सेपे रल तो उमे हमर नमुआ जैसे बात सुपेवा में अनमन भर अरे को बोली के काल नमुआ साँझे कर तो सुपेवा के मजा कब कितना बरिसन में है कब मिल रहा तो अनमन अभी तो नहीं है बराबर नहीं सब साँझे करे ना तो सिलमा वो आदमी बतावेला को नमुआ कब साँझे करेला तो ओके मिला अरे एगो देखे रहा सर चेंज ऑफ नेम दू गो आदमी पहला एगो आदमी जब एगो माजे ओके जिस वितन से ऊपर हो गल बा सकी मांग करे ओकर पैनो ओकर नो फामी सांझे करे के
0: अच्छा।
1: अपने अपने बस वो माजे है मधुरी दीक्षित नहीं दल बना मैं गो बोली के डाल दे बस सकब सौजे कर दे गो नमुआ में बताया देख ला आदमिया के नाम दोनों सबके सौजे अब माजे है मैं ये सिविल स्टेटस है ऑफिसर वा जो हुआ बा वो सकी सांझे करे सिर्फ एगो माजे के नहीं मैं एगो मिनेया के भी एगो मिनेया के कब सांझे करी था सिलमा माजे अपने मने सकी सांझे करे कोई के नहीं चाहना कंसेंट में मैं एगो मिनेया वो अपन माँ बाप के माजे है नीचे जैसे मुने बोलता रहेला ओकर लागद है माँ बापुआ के ओकर लैका लैका कभी गो मिने है अपने से डिसीजन नहीं सकी ले तो कल सांझे करी कैसे सकी एगो मिने अपने मने मिने मतलब एगो जिजुतान से मजा कम रहेला तो ओके चाहे ला कुसंतमा ओकर माँ बाप के या जे माँ बाप नहीं हुई ओकर चुते के एगो प्रोग्राम भी आपसे देख सक कौन चीज चुते कोई मजे जब एगो लैका बा उकर मजे न माँ बाप न है बाप बा उकर फैमिली लोग एगो स्वास करे ला एगो आदमी वो आदमी खड़ा हुएला उकर मजे है उकर देखभाल करे के यहाँ देख लो एगो आदमी जो माजे बा वो भी सखी साँझे करे और कब एगो मिने हुई तो उकर माँ बाप सखी साँझे करे अब भी मॉरिशस में देख बहुत सा दिमान बा इस साँझ म दे है नाम के बहुत खाली लगाजित तू पढ़िए देखिए रोज पस के अभी हम नहीं बोल सको लगाजित में मैं देखब एगो नाम सौजे हुआ था आदमी अपन करता ए आर सौजे करता जैसे देखब मज है जूनाल में पिबलिए करल जला अभी तारे को देख सा लेताप कैसे हुआ देखब आदमी के ओकर नाम माल लिखल बा ए गया बा देखब दूसम ओकर नाम जोन रहल पहले से बोझो ओकर रघुनंदन ओकर नाम रल अब ओके कुमा जब दूसर कोई आदुप्ति कर दे रे बा हमके नहीं से मैं होए पसी
0: हां ई भी बाकी जब लेका के आदुप्ति कर बता
1: हां जब ओके आदुप्ति कर बता उ ले नमवा जुन आदमीया ओके आदुप्ति कर लेवा
0: हां
1: से बोझो तू काले गो छोकड़ी के आदुप्ति कर ल ओकर नाम त कब दिखला रे तब ओकर मां बाप के रल ना तब कब आदुप्शोवा कब होल त सकी कुमा जे तू ना आदुप्ति करबो ओके तोहर नाम में दल बना ओके अपिलता देखब सब कोनो सगी ओके मन हो दोनों के रखे कि नमो में
0: आज मान ला एक एगो एगो जन एगो एगो एगो पति पत्नी हवन जालो के लैका रे बा लोग एगो लैका के आदुप्ति कर लन जा परिवार में एगो लैका के आदुप्ति कर लन जा त उ लैकवा के अपन घरे रख ले वन जा नाम नहीं समझे कर ले वन जा लैकवा भी अपन माँ बाप के नाम पर माँ खाली लैकवा के पोसत वन जा लेकिन लैकवा जन्म से लेके यानी कि बड़ा ले
1: मऊ बपुआ के नाम है
0: लेकिन रहा था ई आदुप्ति जिनकर लेवा ओलो के संगे ना जे लब गोल ले लेवा ओलो के संगे हुआ अब लैकवा 18 साल हो गल 20 साल हो गल अब बोलता नहीं तो हम तब जब से आँख खोले हम तो इलुक के जानी ला उलुक के तो नहीं जानी ला तो अब हम चाहते हैं कि हम अपन बाप के नाम लेब तब कैसे कौन चाहना करेगी
1: हाँ

0: J'ai, comme je dis, 18 ans, c'est des évolutions comme ça. Où tu es gominé. अब जो नो के आदमी अडॉप्ट कर ले बा जो 18 ans से कम रह ले कोआ मवा से बुझो या बपवा जे अडॉप्ट कर ले बा ओके ओकर संगे बा तो ओ के रिस्पांसिबिलिटी है जाके ओ ले कोआ के नमवा संजे करे के ओकर नमवा में डाले के पर काल जे गुजर जाई तो के मिलियो कर धन दौलत एविताज ओ बगल से बान ओकर नमवा उसने रही तो हो बिका दोनों बगल से मिले ला है मिसल मबी ओ नहीं कहते सर तो नमवा बा हो जेकर जन्मवा देले बा तो ओकरे नमवा में मिली हिया मावा बाप का जो नौकर संगे रहता जो नोके आदोपते करेला कुछ तो नहीं मिली मैं चाहेला जो नदमिया आदोपते करेला पहला चीज एगो लेपोक में जाके ओकर नाम सौजे करे के सौजे करके ओकर नाम में डाले के
1: बचपन में चांद सौजे कर दे के
0: नहीं कोनो बखत कोनो बखत मिसेल मा का होई ओके जे आगे जात अलगो बोली के अतान करता दे मिनट अब अपने गुजर गल यहाँ तो नमुआ रगल हवे में ना ओकर मजे नहीं रहल यहाँ चाहत ओके पहला स्टेप करे के जब आदोपते करता तो जाके एगो मौसी होई नानी होई या कोई होई ओकर नाम में बुनेर डाल दे के ताकि ओकर एविताज में जो आदमिया आदोपते कर ले बा ओके मिली आले ये वो चीज है तब तक हमने देख ली स कि एगो आदमी सकी नाम साझे करे भैनो हो या सियनो हो ओके मांगता मिसेल एगो जीज देखेला जब एगो नाम आई अभिशीव जैसे अब देख ली सर एगो मैडम के नाम मुंटी मजे गारी नियम के ओकर जोड़ तो एगो नो अभिशीव या एगो कॉन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेटिव के पैपोस में एगो नाम बा उस जीजवा सके रिफ्यूज करे
1: अच्छा
0: हाँ नहीं दे ऊ नमुआ मजे है ये करे के नहीं समझे करी पसी बोले इ नमुआ एगो कन्फ्यूजन करता या कुमा जे एगो नो अभिशीव एगो गाड़ी नाम के एगो आदमी के है तो एगो गाड़ी नाम के आदमी के नहीं हम सकब सर से भी करे अले सही तो देख ले ली सर अब देखब सर कौन लेटाप है कौन स्टेप है एगो आदमी कौन स्टेप मतलब कौन प्रोसीजर है जब एगो सिटवाइए मोशिय एगो मुशियाँ ओके मन बा सांजे करे के इसके ओके चाला आवो या वो का देखे के नहीं जब एगो आदमी ओकर नाम सांजे करे खोजता तो ओके जाई के चाहला मिनिस्टर दे जस्टिस में जिसे हमने बोली सा अतोनी जनरल के बीरो में हुआ जाके एगो डिमांड करे के अभी तो जब शहर में सिगुले तजुआ में हुआ बा एगो है चेंज ऑफ नेम जहाँ देखबा लिखल बा और हुआ जाके एगो एगो है भी बा एगो आवोका ओ बीमा ओ डील करेला इस सब के जाके हुआ एगो कुमाजे मांग करल जाला अब दूसरा चीज है हुआ कब गई ला चेंज ऑफ नेम हुआ कब है मांग करे सेगुन फ्लोवा में पोलवी में है लौकेला हुआ तोरा दे एगो फॉर्मूले ऑफिशियल एगो कुमा जे है फॉर्मूले है ऊ में तू भरब सब चीज भरे के चला कैसे तोर नाम बा भी कौन ची है के है वह सब दिताई कहते दे चीते ऊ सब बार एड्रेस उस बा ऊ फॉर्मुआ में तू भरब जब भर गल बा कर फॉर्मालिटी हो गल बा तो तोरा चाहेला ऊ प्रोजुए करे के संगे तुहर आग दिन सांस तो जो रिसं बा तीन महीना के है कुमा जे चाहला कोई वैलिड रहे के ऊ में तोर कते दें चीते और एगो लेट दे के चाहला ऊ में रीजन काहे तू मांग करत हो इस सांझे करे के इ नमुआ और दूसरा एपिप हुए तब हम तो जानत ली तोरा चाहला ओ मुए मिल रूपी एगो कुमा जे प्रोसेस करे के दे के हुआ तो ऊ लोग है प्रोसेस करल जला एप्लीकेशन हुआ मतलब तोरा कुछ नहीं बता रखा करे के फॉर्म हुए ऑफिशियल फॉर्म बा हुआ तोरा जाके ले के बस वहाँ सब भर के मांग कर बा सब अहिया दुखी मवा जो चाहे लेतुआ डाल के मांग कर थो कि कम को इन नमो साझे करे के या पहनो हुई या सियनेम हुई तो वो ऑफिशियल हुआ जो हुआ बा कैसे जेब अभी देख बहुआ एगो ला पुलिस खड़ा बा दुआरुआ हिया पूछी तुआरा से कहाँ जात हो और कहाँ जात हो या का करे के चाहेला तो हिया देखब तू बोलबा है तेल तो बोली तुहरा को हुआ एगो फॉर्म बा ले जाए के कब दे सबमिट करब तुहर फॉर्म हुआ जो लिखल बा तो तुहरा चाहे एगो मिल रूपी के कुमा जे दे के ओकर कुमा जे ओकर है दिपेन के या है के तब वो जे सैटिस्फे होल ऑफिशियल जो आंसर्स बा देखब ou ka kari ar rezon sa ba

0: table où enregistrement où majakari la demande ai admia ki enregistrement ke demande karta bien change of name nahi hogal ba ab ka kari जब सब लिख दे बा ओके बोली बो तोहरा जानब जा एगो ले तोहरा हमने भेजब स तो हुआ से आतोने जनरल ऑफिस से कुमा जे देखबा मिनिस्टर दे जस्टिस भेजेला एगो लेट हाँ. एगो लेट भेजेला उ आदमिया के कि हमने देखा था सब वेरीफाई कर ले हाँ सब अब तोहरा चाहे लगो दूसरा स्टेप करे के तोहरा चाहे ला उ ही चीज वा पिबलिए करे के उ दे मनुआ है एगो है में लगाजित में जैसे हमने ही से देखब हर लगाजित कब पढ़ब तो देखब चेंज ऑफ नेम बा हाँ. तो पिबलिए करे के उ हुआ डाले लंसन अब हुआ पिबलिए करी बोली कि तीन हला उ कुमा जे उ आदमिया उ के चाहे ला मजे पिबलिए करे के तीन है गवर्नमेंट गैजेट में और जोन जूनाल उ स्वाजिगे कर ले बा उपमा जो है गवर्नमेंट जो उपमा जो कोई फॉर्मालिटी बा उ स्वाजिगे कर सब ये तीन हला तू क्या करब गवर्नमेंट गैजेट में ई पिबलिए हो ला एगो जूनाल गवर्नमेंट के ई गवर्नमेंट गैजेट बोले ला उ में भी पिबलिए हो ला और दू गो ला गैजेट जूनाल लोकल में एगो मिनिस्टर दे जस्टिस हुआ उ बोले ला कौन है में जूनाल में से बोझ बोली एक जूनाल में तो तोरा चाहे ला ऊ पिबलिए करेगी और दूसरा तू सब अपनो कोनो खुशी हुई है में
1: तो बस हमने की जो कार्यक्रम बा आज एक साथ समाप्त हुआ था वैसे तो हमने की बात करेगी ढेर कुछ बा लेकिन 10 बजे था और 10 बजे के समाचार के बाद बाकी कार्यक्रम आप लोग सुन यहाँ हमने की रेडियो पर तो बस श्रोताओं हमारा जो आज का कार्यक्रम है यहाँ पे समाप्त होता है हम हमारे वकील कपिल देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे कार्यक्रम को बहुत प्यार से सुना अगले शुक्रवार को एक ऐसे कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्ते

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें गीता जी से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स, 284 सिम कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, सिगरेट, अस्थायी रूप से बनाए गए हथियार तथा कई अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को आज सुबह बोबासे जेल में नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई जेल प्रशासन द्वारा कैदखानों में प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, प्रवेश और उनके उपयोग पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों का हिस्सा हैं। हाल ही में मंत्रिपरिषद ने विश्वविद्यालयों में HIV की रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसके तहत जागरूकता अभियान, निशुल्क और गोपनीय जांच तथा जल्द ही प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल मुख्य रूप से युवा वयस्कों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, क्योंकि मॉरिशस में पिछले 2 वर्षों के दौरान सामने आए नए HIV संक्रमण के मामलों में 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 1/3 से अधिक रही है। और अब विदेश खबरें रुद्रानी के साथ।
2: नमस्कार। फ्रांस ने बताया है कि जून में यूरोप में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर के दौरान पिछले सप्ताह 2000 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यूरोप के कई हिस्सों में फिर से अत्यधिक तापमान देखने को मिल सकता है। भीषण गर्मी और लंबे समय से जारी सूखे के बीच दक्षिणी फ्रांस में जंगलों में लगी आग ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। उदित और हेरल्ड क्षेत्रों में कल भड़की आग करीब 900 हेक्टर जंगल में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए 800 से अधिक दमकल कर्मी, 150 दमकल वाहन और 4 वाटर बम्बर विमान तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान इलाके में एक यात्री बस के खाई में गिरने से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल हो गए। बस 36 यात्रियों के साथ क्वेटा से निकली थी, लेकिन रास्ते में खराब हुई एक दूसरी बस के कुछ और यात्री भी इसमें सवार हो गए।
0: और इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: MBC Radio.TV.
1: MBC Radio.TV. 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।
2: आपकी चिट्ठी मिली, आपकी चिट्ठी मिली, आपकी चिट्ठी मिली। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। रेडियो मनोरंजन की लहरों पर मैं हूँ रत्ना, पहुंची हूँ आपका साथ है देने के लिए। आपकी चिट्ठी कार्यक्रम जो है आप ही का बहुत ही मनपसंद कार्यक्रम, जहाँ पर आप ही के भेजे हुए खतों को हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं।

आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेंजर पर आने वाले मैसेजेस या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेजेस को हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम कुछ ऐसी चिट्ठियां जो बहुत ही संवेदनाशील होती है, बहुत ही और कहते हैं ना कि बहुत ही दिल के करीब होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, पर आज के इस कार्यक्रम में बेशक हम आपकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं। और बिल्कुल अगर आप नाम ना बताना चाहें तभी इस प्रोग्राम में आपकी चिट्ठियों को हम शामिल करते हैं। चलिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस वक्त सफ़र में हैं और सफ़र में आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू अगेन, साथ देते रहिएगा रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूँ रत्ना, बिल्कुल शाम के 5 बजे तक। और आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में, कुछ चिट्ठियाँ ऐसी होती है जो हमारे परिवार को लेकर होती है, कुछ चिट्ठियाँ, कुछ बातें हमारे बच्चों को लेकर, कुछ पति पत्नी की बातें, कुछ दोस्तों की बातें, कई बार ऐसी बातें भी आती हैं जो मैं समझती हूँ हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो कहीं ना कहीं हमने दिल में राज बनाकर छुपा लिया होता है, और इसी के कारण कई बार ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हम नहीं जानते कि इन बातों को लेकर कौन किस तरह से हमारे ज़िंदगी के घाव को कुरेद कर उसे और भी ज़ख्मी बना दे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो चिट्ठियाँ होती है, ये जो डायरियाँ होती है, ये हमारे जज्बातों को कहीं पर यूं दबाए हुए, छुपाए हुए हम किसी अलमारी के कोने में छोड़ देते हैं और बस नहीं चाहते कि कोई हमारी दिल की उस बात को सुने, समझे या फिर पढ़कर उसे किसी भी प्रकार से दुनिया के सामने रखे। पर बिल्कुल आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में आप ये ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल लड़ाई झगड़े की जब बात होती है तो कहते हैं ना कि ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है, चलिए छोटी छोटी नोक जोक तो ज़िंदगी के इस रिश्ते को खूबसूरत बनाती है, रूठना मनाना, पर कई बार अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि इंसान चीखे चिल्लाए, आवाज़ करे, शोर करे, रो दे, पर एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पर झगड़ों के कारण इंसान बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, और ये वो लेवल है जहाँ पर उस दर्द का जो एहसास है वही ख़त्म हो जाता है, इंसान बिल्कुल अंदर से पत्थर बन जाता है। और ऐसे भी कई लोग हैं हमारे समाज में जो ऐसे मंजर का सामना करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक भी कह सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उस इंसान ने चोटें खाई है ज़िंदगी में। और यहाँ पर एक महिला ने हमें एक लेटर लिखा है, एक मैसेज भेजा है यहाँ पर कि कई बार उनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ जहाँ पर उनके साथ आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, और एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर वो बिल्कुल ही खामोश हो गई। क्योंकि आपके भेजे गए मैसेज से मैं यही समझ पा रही हूँ, आप लिखती हैं कि लड़ाई झगड़े के बाद महिला की खामोशी का मतलब है कि वो पुरुष को उस दिल से उतार चुकी है, और पुरुष खुश होता है कि महिला दब गई, पर ये उसकी जीत नहीं, ये उसकी हार है, क्योंकि उस महिला को उसने पूरी तरह से खो दिया। चलिए आपकी छोटी सी बात में एक बहुत ही गहराई छुपी हुई है, एक बहुत ही दर्द छुपा हुआ है, हालांकि आपने पूरे दर्द को बयान नहीं किया, क्या हुआ ये बयान नहीं किया, किसके साथ हुआ, किसने किया ये नहीं आपने बताया, पर फिर भी आपकी ये जो चंद लफ्ज़ों वाली जो स्टोरी कई बार होती है ना कि दो लाइनों में आपने अपनी ज़िंदगी के दर्द को बयां कर दिया, ये आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल सा मंज़र होता है जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आज भी हमारे समाज में ऐसे ही मंज़र का सामना करती हैं। कई सारे पुरुष भी हैं, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ

महिलाओं के साथ ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे समाज में ऐसे पुरुष हैं जो अपने दिल की बात को बयां नहीं कर पाते, अपने दिल के दर्द को नहीं बयां कर पाते, नहीं बोल पाते, नहीं एक्सप्रेस कर पाते, और कहीं ना कहीं उनके दिल में भी वही घाव, वही ज़ख्म इतना बड़ा नासूर हो जाता है कि वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इस बात को दिल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये दर्द नासूर बन जाता है तो ये नासूर ज़िंदगी को जहर बना देता है, ज़िंदगी को बोझ बना देता है, और ये ज़िंदगी जीनी मुश्किल हो जाती है। वैसे आपके इस प्यारे से मैसेज के लिए, छोटे से मैसेज के लिए हम कहेंगे थैंक यू, आपने अपने दिल की बात को हमारे साथ शेयर किया। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में हमें हमेशा आपका सहयोग मिलता रहा है, और ये कार्यक्रम बिल्कुल आप ही का कार्यक्रम है।

आपकी चिट्ठी मिली और यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है। वे लिखती हैं कि मैं पहले बेटी हूँ, फिर शादी हुई, पत्नी बनी, माँ बनी, नानी बनी, दादी बनी, लेकिन इसके बीच में बहुत से ऊंच नीच हुए, फिर भी आज अपने परिवार के साथ जी रही हूँ। साधना जी आप हैं गिवेदिक खयोल से, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और बिल्कुल एक महिला के लिए आसान नहीं होता, हम ये नहीं कहते कि ये महिलाओं को ही बढ़ावा देने वाला प्रोग्राम है, यहाँ पर हर पुरुष भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरुष भी अपनी भूमिका निभा रहा है, पर महिलाएं जो हैं वो हर पहलू पर बहुत सारी भूमिकाएं निभाती हैं, बहुत सारे रोल निभाती हैं और ये आसान नहीं होता हर पहलू पर। और फिर भी कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना और इस सीमा में बंधे हुए रहना, कहीं ना कहीं वो अपनी एक पहचान खोती चली जाती है। कभी वो किसी की बेटी है, कभी किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की नानी या किसी की दादी है, पर

कई बार जब महिला अपनी खुद की एक पहचान बनाती है समाज में, तो उसके साथ साथ उसे बहुत सारी चीज़ें दांव पर लगानी पड़ती हैं। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती है कि इन सारे रिश्तों को निभा कर भी वे अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं। महिलाओं का जीवन संघर्षों से भरा होता है, पुरुषों का भी जीवन संघर्षों से भरा होता है, और हमारे साथ ऐसे कई सारे श्रोता हैं जो हमेशा साथ देते हैं, अपने जीवन की घटनाओं को हमारे साथ शेयर करते हैं। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वक्त खाना बनाते हुए हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। सुदेवी जी जो मौका से हमारे साथ जुड़ी हैं, और भाई लाजवाब व्यंजनों की जो लिस्ट आपने हमें अभी बताई, बिल्कुल हमारे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। और सच में आपने हमें इनवाइट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बेशक आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं 4028070, जी हाँ 4028070, एंड साथ ही साथ 5250600 पर आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस वक्त सफ़र में हैं, तो हम ज़रूर नाम जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारे साथ है आकाश, जो इस वक्त सफर में है और अपने प्यारे भैया विकास को छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट, जो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने वाले हैं। तो चलिए, हमारी पूरी रेडियो टीम की ओर से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी प्यारी पत्नी है अनुषा, आपका बेटा युग, साथ है सोनिया, आदर्श, और सभी फैमिली की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी गुड विशेस। बिल्कुल, आप फैमिली का नाम रोशन करें और जल्द से जल्द आप अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी फैमिली के पास वापस लौटे सुरक्षित, और हमारी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ आपको। और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए बहुत ही प्यार से, और ये सफ़र सभी के लिए हसीन रहे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब रहे।

आपको बिल्कुल आराम से इस ट्रैफिक में हंसते फंसाते चिड़चिड़े ना होइएगा, बिल्कुल हमारा साथ दीजिएगा। और यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि ज़िंदगी में बिल्कुल कई बार जहर के ऐसे घूंट भी पीने पड़ते हैं जो कोई नहीं चाहता पीना, पर फिर भी हमारे नसीब में क्या लिखा है, इसे कैसे हम अपनाते हैं, कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, बस सारा खेल इसी का है। और आप ये भी लिखती हैं कि आजकल के जो रिश्ते हैं वो इतने ज्यादा नाजुक हैं, इतने ज्यादा कमजोर, जब किसी को आपसे रिश्ता तोड़ना होता है तो ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से चले जाओ, ताकि सिर्फ वो आपको ही दोष दे कि आपने रिश्ता तोड़ा। भाई हमने रिश्ता नहीं तोड़ा, बिल्कुल आपने सही बात कही है। और हमारे जिंदगी में कई ऐसे लोग आते हैं जो हमें ये भी सिखाते हैं कि हम सभी से दोस्ती नहीं कर सकते, सभी से इतनी गहराई से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। दोस्तों सच में देखा जाए तो जिंदगी में रिश्ते जो है वो जुड़ते बहुत आसानी से हैं। हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी से भी बात शुरू करके एक रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं, पर उस रिलेशनशिप को ऑन गोइंग कंटिन्यूड रखना, यही तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। रिश्ते जोड़िए, पर रिश्तों के साथ साथ उस रिश्ते की अहमियत को समझिए। आजकल हम कहते हैं ना कि हम लोगों का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, लोगों के साथ दोस्ती तो हमने कर ली, और कई बार दोस्ती के पीछे कोई उद्देश्य होता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जिसके कारण हम उस इंसान के साथ जुड़ते हैं, और फिर जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम उस रिश्ते को यूं भूल जाते हैं जैसे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने कि राह चलते आपको उसी इंसान से कभी मुलाकात हो जाए तो आपने यूं नज़र फेर ली जैसे आप उस इंसान को कभी मिले ही नहीं थे, कभी जाना ही नहीं था, कभी पहचाना ही नहीं था। नहीं, दिल को चोट पहुंचती है। और सच में देखा जाए तो जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप उस इंसान के साथ जुड़े, उस इंसान ने कभी आपको मदद की, भले छोटी सी ही सही, पर उस ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में कभी उसका एहसान मत भूलिए। और बिल्कुल ज़िंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, क्योंकि आसान होता है खिलवाड़ करना, पर जिनके ऊपर कोई ऐसी हकीकत बीतती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ बीतती है, केवल वो ही जान सकता है कि उसमें उन्होंने कितना दर्द झेला है। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में, आप बहुत ही प्यार से हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लिखते हैं कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है और हर हफ्ते हर सप्ताह आप बिल्कुल ज़रूर इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं या सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। चलिए, सफ़र हसीन है, गाने भी कुछ ऐसे ही लाजवाब हम चुनकर लाए हैं आपके लिए, और ये सफ़र आपके लिए बहुत हसीन रहे, हम तो यही कोशिश में लगे रहते हैं। और 90s के कुछ ऐसे हसीन गाने जो हम अपनी प्लेलिस्ट में सजाते हैं, और बस आशा करते हैं कि आपको ये सफ़र अच्छा लगे।

तो दोस्तों इसी के साथ आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम को बस यहीं पर हम समाप्त करेंगे और आज का ये सफर बस आप लोगों के बदौलत बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा। वैसे आपको ये भी याद दिला दें, अभी थोड़ी ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे एक ऐसे कलाकार जो हैं मॉरिशस की एक जानी पहचानी आवाज़। बिल्कुल कलाकार के बाद में हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे श्रोता जो भाग भी लेते हैं और इतना ही नहीं हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे रोशन भैया जी। हाँ, रोशन हर नाम जो आपका साथ देते हैं और लाजवाब इस सफ़र में आपका साथ देते हुए इस सफ़र को और भी हसीन बनाते हैं। तो चलिए आप उनका साथ दीजिए और हमें दीजिए अनुमति और आपके लिए छोड़े जाते हैं 90s के ही दौर का ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मशहूर सा गाना जो बिल्कुल लाजवाब रहा उस ज़माने में। और बिल्कुल आपसे अब हम मुलाकात करेंगे अगले सप्ताह, जी हाँ, आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: यह तुहरा पन्नम रेडियो मनोरंजन RM3 के रेडियो चैनल तुहर मनपसंद कार्यक्रम अभी शुरू होए के बाद चला है सुना आगे तब तुहर हमनी स्वागत करब जा रत्ना जी के खूब सुनला आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम में तो चलो बारी बा ई प्रोग्राम के
2: कलाकार की बात

0: श्रोता लोगन भाई बहन लोग हमर संगतिया लोग कैसे हो जा शुक्रवार के सांझ के बखत चलाल बा पांच से लेकर छह बजे तुहर अपन मनपसंद कार्यक्रम कलाकार के बात और रोशन के साथ रेडियो मनोरंजन पर जहां तुहर मनोरंजन त हमनी दिल खोल के करी लजा और आज हमनी के मध्य में दो ऐसन सुपरस्टार चलाल बा मॉरिशस के भोजपुरी जगत में वो लोग के नाम चमकते चमकते अक्षर में लिखल जाला ता वो लोग के आज हमनी स्वागत करब जाए का बहुत ही विभिन्न तरीके से त चल हमनी के जो पहला कलाकार है ओकर मधुर आवाज में एगो इंट्रोडक्टरी गाना हो जाए त चल तैयार होवा जा
1: चिंता के छोर के

0: तू बांट ले अरे आज के गमटक को लाले लाल बारे आज के गमटक को।
1: बहुत ही तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमर भाई जैसन दोस्त किशोर किमिया जी के। बहुत स्वागत बा भाई जी।
0: नमस्ते रोशन भाई, और जितना लोगन हमने के सुनत हुआ जा, सब लोगन के प्यार भरा नमस्कार।
1: दर्शोता लोग हमके याद करत हुआ जा कि हम बोलत रही तो ऐसे कि पार्ट टू भाई किशोर के साथ रही था आज ऊ मुबारक दिन चलाल। तो चल ही रहा हमनी के पहला कलाकार और ओकर जैसन एगो और कलाकार अभी हमनी के स्टूडियो में उपस्थित हुआ ना, और ओकर नाम हम नहीं ले खाली ये दोनों के गाना सुने ला जा आज होके लाइव एंड डायरेक्ट स्टूडियो में सुना जा। तो चल अपन मधुर आवाज में अपन गाना प्रस्तुत कर।
2: भोजपुरी जलसा हमनी के खून में है जब इस सुनबत मन करी नाचे के। भोजपुरी जलसा

0: हर भोजपुरी जलसा हम नी के खून में हा।
1: बहुत धन्यवाद। और हमनी के जो दूसरा कलाकार है उकर नाम है कृषि मोनिक जी। बहुत स्वागत बा तुहरा कृषि जी हमनी के स्टूडियो में आइला। तो हम सबसे पहले दोनों के बहुत ही धन्यवाद करते हैं जा कि अपन कीमती समय निकाल के हाई स्टूडियो में आइला जा और ये प्रोग्राम में शामिल हो के अपन रजामंदी देला। बोला किशोर भाई कैसे हुआ?
2: सब ठीक। और रोशन भाई सर्वप्रथम धन्यवाद आपके बुलाप और एमबीसी के हमने के मौका मिला फिर से आए के और आज हमने संज्ञावन कृषि भाई
1: कृषि
2: जैसे बोला ये प्रोग्राम हमने के प्रोग्राम भोजपुरी प्रोग्राम
1: बिल्कुल
2: और तोरा भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भाई। जैसे बतियात हुआ हमके तो याद बात हुई देखो अजय रला
2: बहुत पहले काम कर लें जा मगर फिर भी हमेशा अजय भी नहीं मगर फिर भी हमेशा हम श्रोता लोगन जितना संज्ञावन जा आप लोगन के आशीर्वाद के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं।
1: बहुत धन्यवाद। तोहरा हम टीवी में देखले रही आशा भोसले स्पेशल में गेले रला जा और बहुत गाना

0: गरेरला किशोर दा के गाना चाहे रफ़ी साहब के होए जोन कलाकार होए जोन गायक कलाकार होए तू एगो ऐसन कलाकार हुआ जो सबके आवाज़ में अपन कला के ढाल देवेला
1: तो लोग के आशीर्वाद है रोशन भाई अपन अपन कोशिश करी ला जा जैसे बोला गुरु तो एक है जैसे किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब मगर अपन ओर से कोशिश कैला जा कि चला टेंशन गा ले ला जा अपन अंदाज में कैसे तू ही तो किशोर कुमार के गीत गावेला। हाँ
0: तो बहुत धन्यवाद हमेशा जो बड़ा कलाकार के ओकर चिन्ह रहेला ओकर कैरेक्टरिस्टिक रहेला उ है बहुत सादगी सिंप्लिसिटी जैसे कि बोले ला जा बहुत ही सिंपल टोन इसी जितना अपन म्यूजिक संगीत के क्षेत्र में चलाल हुआ पहुँच गल हुआ फिर भी है तू अपनाओ अपनापन अपनावेला और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड बात तो हर
1: ये बहुत बहुत धन्यवाद बोला एक बार फिर और जैसे बोला रोशन भाई ये है कि जैसे हम हमेशा बोली ला सब कोई में अपने कोई स्किल बात है कोई पोटेंशियल बात है ये हम जब गायला संगीत करीला जा एकर में तो लोग के भी सहयोग बा और ही तो लोग के आशीर्वाद बा।
0: बहुत धन्यवाद भाई किशोर जी और चलो हमनी भाई कृषि की ओर बढ़ब सब तो भाई कृषि जी बोला कैसे हुआ
2: हम बहुत बढ़िया जैसे बोले सब बढ़िया बहुत बढ़िया
0: बहुत प्रोग्राम हम तो हर संगे कर ले हाई जहाँ पर तू तो स्टेज में आग लगा दे वेला अपन आवाज से अपन भोजपुरी अंदाज से और स्टाइल से तो हमने के बताओ कैसे जिंदगी चलता कहाँ रहेला और परिचय दतनी अपन
2: हम जिंदगी तो सब चाहे बोले के मजा में
0: मजा में
2: और हम पंतिपमा के रहे वाला
0: अच्छा उत्तरी क्षेत्र में जैसे भाई किशोर जी प्लेंदे पापाई रहेला
1: जरूर
0: तू भी पंतिपमा रहेला जा
2: हमने जैसे बोले पड़ोसी पड़ोसा नहीं
0: पड़ोसी तो चला देखा हां गांव के पड़ोसी तो देखा पंतिपमा और प्लेंदे पापाई पीछे शुरू होला और बोला थोड़ा पड़ोसी भी तब पीछे शुरू होला
2: पीछे निकला
0: ये तो बहुत ही इत्तेफाक की बात है और एकर से आगे देखबा किशोर कैसे कृषि कैसे का बोली तोहरा
2: ये भगवान का हां
0: तो चला हम एगो सरप्राइज हमनी के श्रोतागण के रख ले हैं सब अंत में एगो ऐसन प्रदर्शन हुई कला के दोनों की ओर से ये सुन के तू बहुत खुश हो जाएगा अब कौन सरप्राइज हो ये रोशन बाद में बोली तो चला हमनी के भाई किशोर के और भाई कृषि के हमनी फिर से स्वागत करते हैं जा
1: बहुत बहुत धन्यवाद रोशन
0: और संगीत के क्षेत्र में तो बहुत प्रश्न पूछ ले ले हैं और बहुत से बहुत लोग तोहरा जाने लग जा दोनों के और बार बार लगातार रोज के भोजपुरी तड़का रात के 9 से लेकर 11 बजे तक तो लोग दोनों के तो गाना चलते रहे रहा बाप क्या बोले
1: हाँ तो लोग क्या बोला हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद गाना चला और श्रोतागण भी खुशी रहे लंजा और ये हमने के एगो एगो मुची वासियों एगो
0: बिल्कुल
1: एगो एनकरेजमेंट जैसे बोला जा कि नवा नवा गीत बनाए के
0: हाँ बहुत अच्छा एगो कलाकार बने के बहुत आसान बात नहीं है तो सकब से देखा है कि बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा जगत में इतना बड़ा बड़ा कलाकार बा लेकिन हमनी के जो मॉरिशस भोजपुरी जगत के जो कलाकार हुआ जा अपन गाना लिखेलन म्यूजिक कंपोजिशन करेलन और गावेलन जिस अंदाज से तो लोगों उनसन कलाकार से तो कम नहीं हो का बोले
2: हाँ ये सच्चाई है
1: कोशिश करेला जा
0: कोशिश करेला जा बिल्कुल तो हमनी के जो कलाकार है जाओ वन हमेशा बोले ला हमने गाय ले ला सा हमने कोशिश करी ला सा यही हमेशा एगो जिंदगी एगो कोशिश है एगो स्ट्रगल है हमेशा जब नहीं जानबा दूसरा पल में का होई इन्हें सब बजाने
1: जैसे रोशन भाई बोला था हम और कृषि भाई जब बचाए ला जा कि हमेशा सोच ला जा कि ऐसा गीत बनाब जा अपन खातिर नहीं एक कलाकार के को लक्ष्य ये भी है कि जब गीत बनाए ला जा लिखी ला जा तो खाली अपन खातिर नहीं
0: अपन खातिर
1: जे लोग सुनत मन जा वो लोगन के भी अच्छा लगी कि चलो जो गीत बनल अच्छा बा ओकर शब्द अच्छा बा
0: बहुत अच्छा
1: हम हमेशा एकर पर हम ध्यान देला कि जो शब्द इस्तेमाल कैला जा उस शब्द चला अच्छा रहेगी
0: बहुत अच्छा हाँ एगो गाना में अगर शब्द अच्छा नहीं रही एगो सुंदर संदेश नहीं रही अगर पीछे तो गाना तो फिजूल हो गल ना बिल्कुल यही सब जो तुहर शुभ विचार बा एक गाना में डाल दे ला और आदमी लोग सुने ला यही खातिर तो मांग करे ला जाना हर तरह के गाना गए हो अपन कार्य में चाहे भाई कृषि हो चाहे भाई किशोर हो तो चला हमने बात जारी रखब जा हमने के श्रोतागण के बता देना जा कि समय समय पर तो ऐसे प्रश्न हमने पूछब जा और जोन प्रश्न हमने पूछब दोनों भाई के जोन गाना पर बा वही गाना पर लेके जा उन दोनों भाई जोन बतियात हुआ जा होवे पर एगो प्रश्न तुरंत हम तुहरा से

0: 402-8070 पर। लेकिन अभी एगो बहुत ही चौचक गाना चले के हमके मन कर ले बा, तो चले पहला गाना हमनी भाई किशोर के सुनब जा, एकर बाद में बातचीत भाई किशोर और भाई कृषि से हमनी जारी रखब जा। का बोले ला तोरा अनुमति से?
1: हाँ। जरूर भाई।
0: अच्छा
2: RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार के बाद
1: कलाकार के बाद भाई किशोर जी और भाई कृषि जी के साथ चिरैया भी सुन लो भाई किशोर के मधुर आवाज में। तो चलो पहला प्रश्न भाई किशोर जी के गाना पढ़ी 402-8070 पर जल्दी जल्दी हमने के बतावा। तो लोग तो हम नहीं जानी ना, तो हर मन में देशभक्ति के भावना बहुते बा, तो हमने के बताओ नेशनल बर्ड ऑफ मॉरिशस जो मॉरिशस के राष्ट्रीय पक्षी है ओकर नाम का है। तो चल हमने के जल्दी जल्दी जवाब द, इतना जनरल नॉलेज पर हमने प्रश्न पूछ ले हैं सर, हम जानी ना तो हर लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब दे बचा 402-8070। तचरा भाई किशोर जी चिरैया
2: बोला रोशन भाई
1: बहुत ही सुंदर गाना गेला, लेकिन इतना ज्यादा लंबा नहीं रहा। लेकिन जब एगो गाना लंबा नहीं रहेला ओकर संदेश बिल्कुल जहन में बस जाला।
2: जरूर संदेश यही रहा कि हमने के चला हमेशा

0: कि चिड़ैया एक गीत जब सुनला ओकर में भी जान बा, ओकर में भी प्राण बा, और हमनी के देश के हमनी के दुनिया के शोभा
1: चिड़ैया। बहुत अच्छा, हमनी के दुनिया के शोभा चिड़ैया, बहुत अच्छा। तो चलो जैसे शोभा बोलत एगो एगो चला
0: श्रोता के नाम शोभावी नाम नहीं
1: काजन अब चला देखे के। तो चलो हमनी बात करब जो हमनी के पहला श्रोता के साथ। हेलो
2: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन नाम तो है
2: भाई जी के? नमस्ते बोला।
0: नमस्ते नमस्ते
1: नमस्ते, नमस्ते। हाँ, भाई के नमस्ते।
2: चिराई पूछा था ना?
1: हाँ चिराई पूछा था।
2: दुदु है ना?
1: दुदु उता नेशनल हिस्टोरिक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उता जो अभी जीवित नहीं हुआ दुदु है ना?
2: हाँ,
1: हाँ अभी नहीं होता। अभी जो जीवित पक्षी बा जेक बचावल गल बा जैसे बोलेला स्पीशीज इन डेंजर, तो वो ओकर दूसर एगो नाम है वो पक्षी के हमनी के बताओ। दो ता जस्ती पॉपुलर दो है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तू कोशिश कर ले। हाँ हम तो देखा था लालमुनिया नाम सुन ले तू तो।
2: हाँ
1: लेकिन लालमुनिया नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से हम कोशिश अब
2: करें।
1: सुना तो चल हमनी के दूसर श्रोता के सुनी ला जा हमनी। तो हमनी के दूसर श्रोता के हमनी सुन ले ला रहा, तब हमनी फिर से बात करब जा। तो चल एगो अंतिम श्रोता के सुनी ला जा। हेलो हेलो
3: हेलो रसंत जी नमस्ते।
1: नमस्ते, के बात करत हुआ?
3: हाँ इंदिरा।
1: इंदिरा जी मौदा अभिया से बात करत हुआ। हाँ बोला, कौन जवाब दे?
3: बोला
1: दो अभी अभी तक वो लोग जवाब देने जा दो। हम जानी ना सबसे लोकप्रिय पक्षी दो हुआ, लेकिन हाँ। मॉरिशस केस्ट्रेल जैसे बोले ना केस्ट्रेल वो है हमनी के राष्ट्रीय पक्षी। ओके ओके इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहरा। ओके बाय। हाँ भाई, तो बोला देखा तुहर प्रश्न तुहर गाना पर एगो प्रश्न निकल गया भाई। तनी हमनी बता दे ला जा जानकार जानकार लोग के, अच्छा लगे ला प्रोग्राम में भाग ले के।
0: बहुत अच्छा रोशन भाई, ये साथ में बातचीत भी होता और साथ में जनरल नॉलेज पर भी थोड़ा चर्चा होता।
1: तो चलो भाई किशोर के चिड़िया हमने सुन ले ली सा। तो चलो हमनी के भाई कृषि के बात करी ला सा। तू भी तो बहुत गाना गैले हुआ भाई कृषि जी।
4: हाँ
1: अब हमने सका पूछे कि तोहर सब गाना में कौन ज्यादा पसंद बा तोहरा? सब तो तोहरे बेबीज हुआ
4: है
1: ना?
4: सच्चाई है।
1: हाँ तो खासकर हम तोहरा दोनों संगे बोले लिया जा। अगर हमने के श्रोता के याद बा गत सप्ताह रंभा जी आ रलन और साथ साथ कुनल जी आ रलन, एगो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम के आयोजन होल बा। तेकर बारे में खुलासा करे खातिर भाई कृषि जी और भाई किशोर जी तनी हमनी के श्रोता के बतावा कि हमनी को कौन प्रोग्राम के बारे में बात कर बजा और वो प्रोग्राम कैसे रही। चला
0: अच्छा रोशन भाई, जैसे बोला गत सप्ताह हमनी संगे रहल प्रोग्राम में कुनल हिरेलाल भाई और साथ में रंबा राम तोहल जी,
1: जी
0: खास आ रहल जा हमनी के जो प्रोग्राम बा जलसा के रात बा जो कंसर्ट की आयोजन हुआ था।
1: अभी था हम के जलसा के शाम बजा था दोनों के साथ।
0: जरूर ये शाम तो एकदम जलसा ही जलसा बा।
1: बिल्कुल,
0: और वो जैसे बोलली प्रोग्राम के नाम है जलसा के रात बा, ये हमनी के जलसा है। जैसे बोली हमने संगे हुआ कृषि भाई कुनल हिरीलाल भाई, साथ में हुआ रोशन सादा सिंह, नीरज गुप्त मधु और रंबा राम तोहल जी। हम भी साथ में रह, तू भी साथ में रह।
1: बहुत बढ़िया। हम तो
0: जरूर बोले के मतलब ये बा की जितना लोग हमने के सुनत हो जा, हमने के संदेश यही बा
1: बिल्कुल,
0: ये जो प्रोग्राम करे थे जा कॉन्सर्ट करे थे जा ये हमने खातिर नहीं है, ये हमने के सब कोई खातिर है जो भोजपुरी खुशी रहला, भोजपुरी गाना गावे लन जा, भोजपुरी गाना पसंद करे लन जा, भोजपुरी गाना में जलसा करे लन जा, तो बोलब जा आई के
1: बिल्कुल बड़ी संख्या में आई के
0: जरूर। और एक चीज जैसे कृषि भाई बोलत हल कि ये प्रोग्राम के बाद हमने सोच रहे जा और जो कलाकार हो जा बहुत कलाकार हमने के कॉन्टैक्ट कर लन जा कि किशोर भाई कुनल भाई सकब जा हमने यो प्रोग्राम में मान लग गाय सकब जा संगे जलसा करे, तो बोले जा फिकर नहीं, अभी हमने सोचना कृषि भाई के छह गो या आठ गो गीत बा, हमर छह गो या आठ गो गीत बा, तो जितना छह गो कलाकार रह जा तो ऑलरेडी मान लग तीन घंटा के प्रोग्राम तैयार हो गल बा। और साथ में भी हमने संगे वन डीजे।
1: बिल्कुल
0: डीजे के काम कौन सी बा, शुरुआत में वो लोग

0: नी भोजपुरी के गीत चलाइन जा ओकर बाद भी हमनी के प्रोग्राम जो होगा लाइव ओकर बाद भी डीजे हो जा रही
1: अच्छा
0: ओ लोगों के काम बा हो जा पर
1: बहुत काम बा
0: और ओ लोग ऐसा ना बन सके जैसे बोले सहयोग बा उन लोगन के साथ में होन जा जैसे बोले ली शुरुआत में खाली हमनी नहीं जा कलाकार लोग हमनी के पीछे और ही भाई लोग होन जा बहन होन जा जो सहयोग देवत होन जा हमनी के भाई

0: ऐसा नहीं सर ने प्रोग्राम के आयोजन बड़ा होला और बहुत सहयोग चाहेला सबके कला सैन पर देखब कलाकार लोग आवेलन जा लेकिन ओकर पीछे कितना काम रहेला एगो पूरी टीम के सहयोग योगदान से ही तही सब सफल होला और ऐसा कॉन्सर्ट जहां तक हम जानीला भाई किशोर जी भाई कृषि जी नहीं दिख रहे हैं ऐसे हम तो
1: हां और ये खासकर ये पहला आला हुआ था
2: ही सही बात बोला कृषि
1: जैसे बोला जाए
0: पहली बार हां
1: भोजपुरी कॉन्सर्ट
0: इतना कलाकार साथ आवत हुए जा छह कलाकार हुआ जा तो किशोर जी होवन कृषि जी होवन रंभा जी कुणाल हिरिला जी होवन रोशन सदा सिंह जी और नीरज गुप्त मधु जी सब तो बहुत ही बढ़िया कलाकार हुआ जा और अब छह कलाकार मिल जला तो हो जला सुपर सिक्स हाँ बिल्कुल
1: सुपर सिक्स सुपर सिक्स सुपर
2: सिक्स जितना हमने के श्रोतागण हुए जा बोला जा तू लोग आओ हाँ बिल्कुल सुपर सिक्स सक्सेस बनाओ जा तू लोग आए बस तब
0: हाँ बिल्कुल सुपर सिक्स से कलाकार लोग संगे सुपर सिक्सटी हो जाए 160 हो जाए बाद में चल के 160,000 भी हो हमने के अनुमान लगाया सब काहे बोला था 60,000 भाई जी काहे कि आज तो एआई के जमाना है और मोबाइल नेटवर्क की सब जो प्लेटफॉर्म बा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकर भी बोल बाला बा था जो प्रोग्राम चली खाली मॉरिशस में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विश्व भर में ये प्रोग्राम के आनंद उठावल जाए है ना तब भाई कृषि जी हमने के बताओ हमने के श्रोतागण के कि जब जितना बार हमने बात करब जा उतने बार हमने के दिमाग में बैठ जाला तब फिर से हमने के बताओ कि है जो प्रोग्राम जलसा की रात है कहाँ होता और कितना बजे शुरू होता
1: हाँ ये आसेनाल में हुआ था
0: आसेनाल में
1: एगो हॉल में
0: हाँ
1: छः बजे शुरू हुई
0: छः बजे शुरू होता रात्रि के
1: हाँ रात्रि के
0: हाँ
1: जैसे
0: और तारीख का है भाई
1: 26 सितंबर
0: 26 सितंबर यानी 26 सितंबर के होता अच्छा बहुत अच्छा 6 बजे से लेकर रात तक और हॉल के नाम का है
2: ब्लिस पॉइंट के हॉल में हुई
0: बहुत सुंदर
2: ऋषि भाई बोला 6 बजे कहे कि होजा पर हमनी के एगो फूड कोर्ट रही
0: बहुत अच्छा
2: हमने के जो मनोरंजन के प्रोग्राम नी जो कार्यक्रम लाइव कॉन्सर्ट वो शुरू हुई लगभग 7:30 या 8 बजे
0: अच्छा
2: हाँ मगर 3 घंटा के शो लाइव रही उसे क्या टेंशन जस्ट वो हो जाए मगर एक पहले फूड कोर्ट हो जा खाना पीना सब रही
0: सब रही
2: सगबा बुनुरे आई 6 बजे सगबा चलाई हो जा तैयारी हो जाए खाना पीना के बाद तब जलसा हुई
0: बहुत अच्छा और ऐसा सुंदर जगह हो जा
2: जब ऐबा जाकर आयोजन
0: सब कुछ कर हो जा और जब ऐबा तब बहुत ही सरहबाऊ जगह के तो चला 6 बजे चलाइया जा ब्लिस ब्लैंकेट होल आसेनाल में जहाँ पर हमने के भाई कृषि जी और भाई किशोर जी के साथ अन्य कलाकार लोग रहन तो ये प्रोग्राम सफल कैसे हुए जब तुलो गए बजा जब तुलो अपन प्यार बैसर बजा और हमने के कलाकार के मान बढ़ा क्योंकि उत्साह बढ़े भाई इतना बड़ा कार्य होता है इतना बड़ा भोजपुरी में कार्य होता हमने के और हमने के जो भाई हों जा दोनों अपन ठोस अपन इंटेंशन इरादा रख दिले वन से कि भोजपुरी के और आगे बढ़ाए कि हमने के देश में तो ऐसे न कार्य से ही तो भोजपुरी के बोलबाला होला और ज्यादा ओकर मान बढ़ेला शान बढ़ेला है ना भाई
1: खासकर हमने के पूर्वज लोग के
0: पूर्वज लोग बिल्कुल हाँ ये तो बड़ा अच्छा बात कर ला हमने के संस्कृति के हमने के छाना हमेशा जीवित रखे के तो चला हमने के भाई कृषि के एगो गाना सुन लेला जा पहले अब सुन लेला जा सास बहू के हई गाना हई कहानी सुन लेला जा तो एक बाद में फिर से हमने के बातचीत हुई और श्रोतागण अभी भाई किशोर जी और कृषि जी से हमने के बात होता कलाकार के बात और चल है गाना सुना पहले

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार की बात
1: भाई कृषि जी, सास बहू में हो गर्भा सुला। हमने तो ईश्वर से यही प्रार्थना करब जा कि सास बहू के जो न रिश्ता है, पवित्र रिश्ता तो है ही, लेकिन कभी कभार अनबन हो जाला। तो है जो न अभी है जो न सास बहू के गाना सुननी ले जा, एकर पीछे तुहर मकसद का रहा है गाना निकाले के?
2: हम अभी एगो सच्चाई तुरु के बाद ढेर कोई नहीं जानेला, ये गाना कुणाल गिरा लिखले बा।
1: कुणाल जी लिखले हुआ? अच्छा।
2: बेस चाह बोले के बेस होकर रहा, तब हम तनी एगो एक दूगो चेंज कर लियो। मैं एक बेस जैसे सच्चाई है सब परिवार ढेर परिवार में बोला अनभनुला सास बहू में।
1: हाँ।
2: बेसवा तो उकरे पर।
1: हाँ बिल्कुल, सचमुच सास बहू में जब सास अपन बहू के बेटी मानेला तो स्वर्ग हो जाला वो घर, है ना?
2: ये सच्चाई है।
1: हाँ, जब बहू के बहू माने लगेला, बहुत ही कठिनाई होला दोनों में, तब तो बहुत ही का बुलब तोहरा ऐसा
2: अनबन
1: हो जाला, नरक लगी लगा। तो चला हमने के भाई कृषि के है गाना के सुनैली तोहरा, और हम आशा करते हैं कि गाना बहुत ही पसंद कर ले हो जब हाई भाई म्यूजिक वा सुना भाई कृषि जी। ई कृष रिडोई के हाँ म्यूजिक है। हाँ, सोची तोहर है। काहे कि तोहरो नाम कृषि है, लेकिन हमने प्यार से तोहरा कृष बोली ले जा, है ना? हाँ, तो जलसा की रात है जो नाम है भाई किशोर जी। जलसा की रात बोला हमने के जैसा कि रात है, नमुआ कैसे चुन ला जा?
3: देखा जैसे हमेशा भोजपुरी भाषा में बोली ला जा कि जल जल

0: जलसा जब बोला था एक मतलब घमट
1: घमट
0: हंगामा और ये हो जा पर सोचला कि हो जा पर धमाका हो के बा
1: धमाका।
0: हाँ, अब जैसे शुरुआत में कृषि भाई बोलक भोजपुरी जलसा हमने के खून में बा, ये में भी जलसा बा
1: बहुत अच्छा।
0: कुनल भाई के गीत में बा जलसा के रात बा हो, ये में भी जलसा बा
1: बहुत अच्छा।
0: आज के गमट को लाल लाल बा आज इकर में भी बा। हमर एक जोगन बा जलसा जलसा लाल बा जलसा लाल बा, ई में भी जलसा बा
1: जलसा बा।
0: जैसे ही खाला हम प्रोग्राम में बोलल जा हमनी ने कब से शब्द एवंती करी
1: सच्चे के
0: ऐसे ने को शब्द हमनी के लोकल कि हमनी के जलसा ते काहे ने जलसा के रात बा। ती जलसा के रात बा सब कोई के जलसा है तो सब कोई मिल के जलसा करी जा
1: काहे नहीं। बिल्कुल सही बात बोला भाई किशोर जी। जलसा गमत ये सब जो इन विशेष शब्द है हमने के भोजपुरी के शब्दकोश में है। ऐसा ऐसा शब्द नहीं रही तब भोजपुरी में तो तड़का ही नहीं लगी जैसे बोली रहा स्पाइस नहीं नहीं मिली। ये कहते देखो प्रोग्राम तो हल कहते हमने तैयार करी ला सा भोजपुरी तड़का
0: भोजपुरी तड़का
1: रात के है चलेला जहाँ पर हम बोले रही सकी तोरों के दोनों के तक गाना के फरमाइश तो हो भी करेला और जब तो लोग अपन गाना सुनेला जा रेडियो पर तब बहुत ही संतोष तो लोग के मिलेला है ना।
0: बहुत अच्छा लगेगा रोशन हाँ। भाई हम हाँ। तो हर बात करके उचित कृषि हाँ। भाई से पूछा तो वो गीत जो चलल सांस बहु में हो गल लड़ाई हम सोचते रही कर इंस्पिरेशन प्रेरणा कहाँ से मिलल हुई वो तुलसी हो
2: सांस बहु सच्चे के
1: हमने हमने खोज बोले खोज लिया है
0: हो तुलसी पार्ट टू ने तुलसी पार्ट वन
1: पार्ट वन
2: अरे अरे अरे बात कर रहा है वो सच्चे के
1: सच्चे के बोल रहा है।
0: हाँ तो हमारे विचार अच्छा
1: विचार तो बहुत ही
0: एकदम खूबसूरत गाना बा
1: सुनाने सच। हाँ जैसे मिहिर और तुलसी के कहानी रहल वैसे ही अहे में देख के एगो वो लोग एगो चाची रह दक्षा वही बोला था आरा रा रा है ना
0: सब याद बा रोशन
1: हाँ तो चाहना का कर बचा याद रखी
2: फिल्मी हुआ
1: हाँ फिल्मी आप बोल के बोले हमें के फिल्मी पुरुष है कहा बोली तोरा अब हम बोला पुरुष ही नहीं हम महापुरुष
0: हैं
1: तो बहुत ही मजाक कर रहे थे कौन के महापुरुष और भाई जिंदगी में आजकल सबके हम हमनी के हम अंदर बुराई बा सच्चाई बा
0: सच विस्तार बा हाँ परफेक्ट मगर अपन और से
1: पूरी कोशिश करेगा
0: संगीत के माध्यम से गीत के माध्यम से अच्छा चीज बनाए के अच्छा संदेश पहुंचाए के और जैसे प्रोग्राम जलसा के रात बाई का पर बात कर रहे थे जा हमनी के मकसद ये बा लक्ष्य ये बा कि जोन कुल कुल गाना बा थोड़ा छोड़ब जा जैसे 2 नवंबर तो उन्हें गाओ जा हो जा पर उकर जगह है उकर स्थान है हो जा पर हमने सोच ली जाए ऐसा को सिलेक्शन कर लें जा कि हंगामा ही रही
1: हंगामा बिल्कुल
0: 6 जोन कलाकार रही जा हंगामा करब से जो है अपन जो चिंता के जो शुरुआत में बोली चिंता के छोड़ के हंसले गाले
1: हंसले गाले अपन
0: चिंता के छोड़ द घरे आइए हमने संगे आओ हमने संगे चलो टेंशन जलसा करब जा संगे में हाँ
1: बहुत अच्छा। और ये जलसा के रात बा सचमुच बोल रहा इकर से हमने के जो नागरिक हो जाओ लोग के चिंता तो दूर हो भी करी ऐसे ऐसा कार्यक्रम हमने के चाहला फ्रीक्वेंटली हम आयोजित करे के आयोजित करते रहे के ताकि जब लोग भाग लियन जा देखियन जा कलाकार लोग के परफॉर्म करते हुए तो सचमुच लोग के दुख दूर हो जाए के सकबा बोले जिंदगी में आजकल के दुख ने बा सबके अपन अपन दुख बा परंतु ऐसा ही ना ऐसा कार्यक्रम से सचमुच दिल के बहुत ही सुकून मिला आनंद मिला बिल्कुल। तो चला गत सप्ताह हमने जलसा की रात के बारे में बात कर ली सा आज भी बात होता ई प्रोग्राम के बारे में बहुत ही मच अवेटेड प्रोग्राम है। तो हमने के नंबर मिला हुआ 402-8070 पर जल्दी जल्दी अपन सुंदर आवाज में प्यार से बोला हमने के कि जलसा के रात ई कौन तारीख के है प्रोग्राम मॉरिशस में चली जहाँ पर तो लोग अपन मनपसंद कलाकार के परफॉर्म करते हुए दिख बजा अपन सामने रूबरू। तो जल्दी जल्दी नंबर मिला हुआ 402-8070 पर बताओ कि कौन तिथि के कौन दात के है प्रोग्राम जैसा कि रात निर्धारित होल बा और हम तोहरा एगो क्लू दे देला कि एगो रविवार के दिन है रविवार की रात है ना
0: सही बात।
1: तो चला हमने के जल्दी जल्दी नंबर वहाँ मिला हुआ इतना बार हमने तोहरा बोल ली सब पता तो तोहरा चल गल बात तो देर किस बात की। तब भाई किशोर जी
0: बोला
1: जैसा कि रात जहाँ ऑसिनाल में होता और

0: उमें खासियत बाकी डीजे प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम के बाद में भी अपन जलवा दिखाई तो ऐसन अरेंजमेंट ऐसन प्रबंध होल बाग की हमने के जो न हो जा ऑडियंस रही वो लोग के समय मिली मौका मिली तनी डांस करे के
1: जरूर रोशन भाई हमने ऐसा प्रबंध कर ले जा कि हो जा पर जगह ही बैठे के भी थोड़ा सा मगर जहाँ पर हमने हंगामा के प्लेटफॉर्म हमने की स्टेज रही हो जहाँ पर उन लोग के स्थान रही और ये वो ओपन नहीं रही ओपन ए नहीं रही भरा होल बातें सेकेंड जो हो जा पर आई और जब जलसा हुई तो सेकेंड जो साथ में हमने संगे कंवरिया डुलाई हमने संगे गाई और धूम मचाई
0: बहुत अच्छा भाई किशोर जी तो देखा तो जैसे प्रश्न पूछ ली है जाते गो श्रोता उपस्थित हो गल होवन ओका से हमने बात कर लेला सा चलो हेलो
2: नमस्ते रोशन जी
0: नमस्ते तो शोभा जी होवन
2: जी हाँ और मेहमान लोग भी नमस्ते
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते शोभा जी तो अपन का बोली तोहरा
1: शुरुआत में शोभा बोली जरा शोभा जी फोन कर लन
0: हाँ चले
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: शोभा बढ़ा देला आके
2: धन्यवाद
0: और अभी व्हाट्सएप पर देखा था कि आज तोहर वेडिंग एनिवर्सरी है
2: जी
0: हाँ का बात ना तो
1: बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं
0: देखा तुम्हारा वेडिंग एनिवर्सरी के हमने दुगो बढ़िया सुपरस्टार के बुला दे रही सर देखा तो
2: बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी
0: हाँ देखा तो किशोर
2: एक बार धन्यवाद
0: हाँ बहुत कैसे लगा था तो दोनों दोनों की आवाज इतना नहीं चाहना पूछेगी
2: आवाज तो एकदम सुंदर
1: तुम्हारा आवाज एकदम सुंदर
2: सुंदर सुंदर आवाज
0: तो बोला शोभा जी हाय जोन जलसा के रात बा ये प्रोग्राम कौन तिथि के हुई चल हमने की कलाकार से पूछी रह जा
1: जरूर अच्छा अच्छा शब्द यानी कि अच्छा जवाब
0: दिला
1: शनिवार 26 सितंबर के
0: शनिवार देखा तो हम तुहरा रविवार बोल दिली
1: अच्छा जवाब दिला एकदम सही
0: हाँ तो शनिवार 26 सितंबर के जलसा के रात और शोभा जी के लिए जोरदार तालियों की गूंज
2: ओके धन्यवाद और शुभ रात्रि आप सभी लोगों को
0: शुभ रात्रि आपको
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: धन्यवाद तो देखा तो इतना लोग फोन करत हुआ जा और अभी तक फोन आ हुआ था लेकिन अगर सही जवाब तो मिल गल और 5:39 तो हो गल बा देखा केवल 20 मिनट रह गल बा इतना सारा चीज बा अभी पूछे के जैसा के रात के बारे में तो हमने के बतावा भाई किशोर जी और भाई कृषि जी सब अपन अपने कॉम्पोजिशन के गए बजा
1: सही बात बोला
3: ज्यादातर अपन अपन कंपोजिशन के गाव सा और बाद में जब प्रे रही मैं
0: समाप्त हुई के
3: तब एक दुगो दूसरों
0: दूसरों के हम सोचा था भाई जी कि जो हमनी के कलाकार भोजपुरी जो इतिहास रच देले हुआ जा हमनी के भोजपुरी जगत में वो लोगों के तोरा तनी श्रद्धांजलि अर्पित
1: करते जा सही बात बोला
0: एकर बारे में तनी बात कर
1: रही हाँ जरूर जैसे कृषि भाई बोलक ये प्रोग्राम में सम्मिलित कर जा ऐसा गाना भी हमने के गीत रहे हमने के बनावल गीत कंपोजिशन रही मगर जिस वजह से प्रोग्राम में चुने ऐसा सिलेक्शन में ऐसा गाना रही जो धमाका करब जा मगर फिर भी दूसर ऐसा कलाकार जो हमने के संगे नए उन जा सकब जा बोले वो लोगन के भी गीत गाओ जा जैसे कि सुनानुयन जी हवन बासंत सिपोल जी विनोद शिवदत्त अभी वो लिस्ट नहीं पा रही कल नहीं जा मगर श्रद्धांजलि का मैं रही
0: बहुत अच्छा
1: श्रद्धा तो विचार एकदम अच्छा बा
0: तो भाई किशोर जी भाई कृषि जी ऐसा एगो प्रोग्राम करत हुआ कि हमने के जो बड़ा जन हुआ जा जो अपन नाम कमा ले हुए ऐसा कार्यक्रम करत हुआ लोग के गाना भी चले बा श्रद्धांजलि के रूप में तो ओकर से बुझाए कि वो लोग अभी जिंदा हुआ जा हमने के साथ हुआ जा तो यही बोला जरा श्रद्धांजलि और हमने के कलाकार किशोर जी और कृषि जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बारे में सोचत हुआ
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई
0: और किशोर भाई हमने के बताओ कि जो उत्तरी क्षेत्र में जो अवसनाल बोलत हुआ देखा जरूरी नहीं है कि खाली नॉर्दर्न रीजन के लोग
1: नहीं नहीं नहीं एक बारे में हम बोलब कि अभी हमने अपन ओर से चिकेट जिस बोलते हैं सब बेचत है जहाँ मतलब बोले कि ये बाकी और सेलिंग पॉइंट रही पॉइंट दिवांत रही ये खाली उत्तरी क्षेत्र में रही उत्तरी क्षेत्र में नहीं यानी कि साउथ में रही वेस्ट में रही पूरा मॉरिशस
0: में
1: हाँ कहे कि ये खाली हमने लक्ष्य नहीं बा खाली उत्तरी प्रांत के जो लोग बा
0: नहीं
1: ये पूरा हमने के जो मॉरिशस के

0: भोजपुरी सुनेला नेसेसरी नहीं, जैसे बोलते हैं खाली भोजपुरी सुनेला तो हम आओ नहीं, सब कोई क्या आमंत्रित करते
1: जा,
0: ये जब एक कंसर्ट होला तो खाली जे भोजपुरी सुनेला समझेला नहीं, मगर खास हमने एक से मान जा भोजपुरी खुशी रहला सब वो लोगन के बोलब जाए के, मगर ऐसे नहीं कि हम भोजपुरी में बात नहीं कराते नहीं सके भाई नहीं
1: ऐसे नहीं,
0: ये कंसर्ट ओपन बा
1: सब
0: आई, जैसे बोला जा म्यूजिक इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो जब हंगामा होता गमट होता तो तू सब आई
1: सम्मिलित हो जा,
0: सम्मिलित हुआ
1: में कोनो रेस्ट्रिक्शन नहीं बा,
0: अंतर फर्क नहीं बाकी
1: सब वर्ग के लोग सके आए, सब कैटेगरी के चाहे बड़ा हो छोटा हो नौजवान हो कोनो महिला हो नव युवती हो या कोनो भी, और साथ ही देखबा अपन कार्यक्रम में रंभा जी भी होवन और महिला कलाकार होवन, और इसने चाहे हमनी के करे के तब जाके हमनी के भोजपुरी के और बोलबाला होई ना,
0: एकदम सही बात,
1: बहुत अच्छा। तो हमनी के जलसा की रात प्रोग्राम के बारे में फिर से हम तो चर्चा करब जा अगला सप्ताह भी तबा, और जैसे कि हम तोहरा बोले थे है प्रोग्राम करे खातिर हम तोहरा से सुनिए अभी कि बहुत सहयोग की जरूरत पड़ेला, तो सहयोग हाथे हाथ सब कोई करे तो अच्छा रही, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली चाहना तोहरा स्टेबल रहे के
0: सही बात,
1: अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं रह ओकर चाहना ठोस रूप से फाइनेंस के प्रबंध करे के, तो एक बारे में सकबो कुछ बात करे भाई।
0: जरूर रोशन भाई, देखा एगो प्रोग्राम तैयार करे के एक पीछे बहुत बड़ा काम है, अकेले से काम नहीं होला, जैसे हमने जो साथी कलाकार रह जा गायक हैं जा और साथ में हमने संगे और ही ऐसा संगतियाँ हों जा मित्र दोस्त हो जा परिवारगण हो जा जो सहयोग देवत हो जा कि हमने के चलना जैसे बोली जा हॉल देखे के और सिक्योरिटी सर्विस चलना अब मार्केटिंग ओकर आर्टवर्क और पीछे हमने के संगीतकार हों जा म्यूजिशियंस लाइटिंग साउंड सिस्टम, हाँ जैसे कृषि भाई बोलक अब हो जा चाह हमने के प्रबंध करे कि जैसे फूड कोर्ट बा कहाँ पर रही परिवार सहित आवत हुआ हमने के चाह पॉकिंग खोजे के सब चीज मन से हुआ
1: सब कुछ
2: रिहर्सल
0: रिहर्सल जैसे संगीतकार के बात चल हमने के जो और कलाकार आवत हो जा ऐसा नहीं कि हमने के अपन ओर से सहयोग कौन छी भाव उलोक देवत हो जा, हमने नहीं बोलते हैं जा कि हई म्यूजिशियन के इतना देवत हैं जा है म्यूजिशियन के इतना हई कलाकार के इतना सब कोई मिल के करते हैं जा, मगर फिर भी एक पीछे कोस बा कैसे होल जो देख ली जा एक पीछे कोस बा अब जो म्यूजिशियन बा ओकर पीछे ओकर ट्रांसपोर्ट बा
1: बिल्कुल
0: बहुत चीज ऐसे ऐसे बा जो हमने अपन ओर से करते हैं जा, मगर सब कोई जब मिली सब कोई संगे आए
1: तो
0: हमने के गो तनी हल्का हो जाए
1: बिल्कुल हौसला बढ़ जाए
0: हौसला बढ़ जाए तनी हल्का हो जाने के बोझ, मगर फिर भी हम के लक्ष्य बा ये गमट करब जाए जलसा करब जा और ये जितना कोई अयन जा इस उतना हमने संगे जैसे बोला जो पहुंच फैनौत हो
1: बहुत अच्छा सबके सहयोग रहे बहुत अच्छा। तो हमने के श्रोतागण के बता दे ला जा कि ऐसा बड़ा कार्यक्रम तो होता और ये कार्यक्रम एक्सक्लूसिवली केवल तोलोक खातिर होता, कलाकार सचमुच है जा होवन जा जाने माने कलाकार होवन कोनो प्रमाण नहीं दे के परे कहे कि लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जा, लेकिन है जो कार्यक्रम होता खासकर तुरुक खतिर होता और मॉरिशस में पहली बार के ऐसा कार्यक्रम होता जहाँ पर बहुत कलाकार लोग संगे मिल के है तोहर खतिर परफॉर्म करियन जा, तो तोह लोगों अपन दया उदारता दिखाइय है जा आइय 26 सितंबर को, और हमने के भाई किशोर और कृषि जी बोलन कि पहली बार के लिए उत्तरी प्रांत में होता, अगर ऐसा सक्सेसफुल रही सफलता प्राप्त हो तो कहीं नहीं दक्षिणी प्रांत में भी हो सगरो
2: भगवान की इच्छा से
0: भगवान की इच्छा से और आप लोगों के सहयोग से
1: बिल्कुल अच्छा
2: खासकर
0: आशीर्वाद रही तुम के सहयोग मिली, जैसे रोशन बहन के आज बोलक आय के हेजा पर तो ई हमने खाते रहो एगो प्लीजर जैसे बोला जा और साथ में संगे ही जा
1: संगे
0: चलो कोनो चीज तैयार करे थे जा मिलजुल के
1: हमेशा जब एगो काम मिलजुल के करबा एकता में तो बहुत बल है, जब अकेले पर जब बुझाला पहाड़ तो हरागे
0: कैसे मरो गीत में बा संगे संगे संगे संगे चली जा हाथों में हाथ मिलजुल

0: के चली जा, संगे चली जा, संगे चली जा, संगे चली जा, आगे बढ़ते ही चली जा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई किशोर जी। तो चलो एक छोटा सुन गाना चलाए के समय अगर भाई किशोर जी।
0: अच्छा?
1: एक गाना ऐसे रहर सुगा रानी। हाँ। के चला
0: आज, के आज हमने के प्रोग्राम में ऐसा गीत चला जाने अलग से बा।
1: अलग से बा, बिल्कुल। कहे कि
0: ये गाना भी चिड़ै पर आधारित बा।
1: हाँ बिल्कुल। तो चलो तुहर इजाजत से चला देना, तब बाद में एक छोटा सुन दौर से गुजारिश करब जा दोनों से। 5:47 होकर बा श्रोतागण, तो चल है गाना सुना, एक बाद में बात फिर हमने जारी रखब जा।

0: Continuous music. RM3.
1: कलाकार की बात।
2: तू बोल सुगा रानी के कह संगे जाइबे जब सुगा रानी सुनी किशोर बा है जा और कृषि बात है ओका संगे तो झट से चल जाए
3: रोशन भाई भी साथ में माने
2: हां हमर तो बोला ओहो भाग गया तो चलो भाई किशोर जी एक गाना बहुत ही रियली चलाई लस है ना
3: जरूर हां
2: तो एक अच्छा लगा तुम्हारा ये गाना
3: चले बहुत अच्छा लगा रोशन

0: भाई। हाँ
1: तो भाई
2: बहुत अच्छा लगा है,
1: अच्छा लगा तहरा। हाँ तो हम तो लोग दोनों से गो मांग कर रहे थे कि चला दोनों तो दोस्त हुआ जा, भाई हुआ जा, एक ऐसा हिंदी फिल्म के गाना सकबा गाई साथ साथ में, सुनी सतनी
0: चला
1: आली।

0: सचमुच भाई किशोर, भाई कृषि जी, तो लोग के अफसाना हमेशा दुनिया याद रखी, खासकर भोजपुरी जगत में। और है गाना जब गैला तो हमार आँख में तनी लोर पर गए सच्चे के, और हमके हमार जो रोंगटे हाँ खड़े हो गए, काहे कि दोनों के जो आवाज़ है बहुत अच्छा, और जिस अंदाज से जिस भावना से है गाना गैला सचमुच हमके फूसों लेके लगा।
1: सचमुच तो लोग के आशीर्वाद रोशन भाई, और हम हमेशा बोला एगो चीज कर बस दिल से अच्छा से, और खास हमने के श्रोतागण सुनत हो जा ये गाना रहल तो लोग भी खाते काहे कि तो लोग भी हमने के संगे हवा।
0: हाँ बिल्कुल संगे है सर,
1: संगे
0: सब साथ है सर, तभी तक कलाकार के बाद प्रोग्राम चलेला। देखा कितना लोग फोन कर रहे सर, तो लोग से बात कर रहे जा, और तो लोग के बहुत ही अच्छी तरह से संबोधन
1: हमने के भी खुश महसूस हुएला कि चला जो काम करत है जा कि भर सक कोशिश कर जा कि तो लोग तक पहुंची और तो लोग के अच्छा लगी।
0: धन्यवाद भाई किशोर जी। 5:54 हो गए बा, और ठीक 6 बजे आप लोग समाचार सुन बचा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के समाचार। तब एगो अंतिम संदेश भाई किशोर जी, भाई कृषि जी, चला हमने भाई कृषि जी से बात करी ले जा। भाई कृषि जी एगो अंतिम संदेश हमने के श्रोतागण के सुना दा, और जैसा के रात के बारे में तनी इन्विटेशन भी दे दा।
2: हाँ, हम जो बोले चाहते हैं ये खास कर जैसे बोल ली ये पहला हाला सच्चाई में पहला हाला एगो भोजपुरी कॉन्सर्ट हुआ था। तो ये लोग ये सब तो लोग सब कोई के सहायता चाहिए तभी तनी सक्सेस हुई। और ये जैसे नहीं भूला या ये हमने के भोजपुरी हमने के पूर्वज के दिन है छना सम्मान करे के, तो लोग के सहायता बिना कुछ नहीं सकी हुई।
0: बहुत धन्यवाद भाई किशोर जी, बहुत धन्यवाद। चला भाई किशोर जी अंतिम शब्द तो हर ओर से।
1: हाँ जरूर, हम भी जैसे कृषि भाई बोलक ये एगो बहुत हमने के एगो लक्ष्य रहल कि ऐसा एगो भोजपुरी कॉन्सर्ट करब जा कि अभी जैसे बोलत हैं इतना कलाकार रही जा, बाद में और संगे इतना कलाकार रही एक बड़ा और कॉन्सर्ट के आयोजन करब जा, और खाली उत्तरी प्रांत में नहीं बल्कि पूरा मॉरिशस में धीरे धीरे। तो अहिया जा याद करिए हमने के जो तारीख बा 26 सितम्बर यानी कि 26 सितंबर के रात के 6 बजे से उच्च चली हमने के जलसा।
0: बहुत अच्छा, तो ऐसन बात के बाद भाई किशोर जी और भाई कृषि जी तोहरा बहुत दिल से धन्यवाद देवत हैं जा।
2: धन्यवाद
1: आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई,
0: हमेशा हमने साथ में काम करे हैं सर, और बहुत अच्छा लगेला जब जब हमने बात करी रहा तो बहुत कुछ से सीखे के फिर से मिलेला।
1: जरूर
0: यही बोल जाना विचार के आदान प्रदान,
1: आदान प्रदान।
0: बहुत तो चला श्रोतागण, आज भाई किशोर जी रलन और भाई कृषि जी रलन ये पौतू रह भाई किशोर साथ किमिया जी के साथ, और पौतवान भाई कृषि जी के साथ, पौतफ्री बाद में आए और पौतू आए, बहुत अच्छा। तो चला ईश्वर की कृपा तो लोग दोनों पर हमेशा रही, धन्यवाद माता सरस्वती तो लोग के बहुत आशीर्वाद दे, आगे और बढ़ जा, और अपन जो नया जनरेशन बा वो लोग इंस्पायर कर बा, प्रेरित कर बा। हाँ तो चला भोजपुरी की जय
1: जय,
0: बिल्कुल। और यही इसी के साथ हम तो से अनुमति चाहते हैं 5:56 हो गए बाद। नमस्कार, और
1: नमस्कार, नमस्कार रोशन भाई, और सब श्रोतागण के भी
2: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते
2: नमस्ते, नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घर मिला चीज। चलिए शाम के ठीक 6 बजे हैं। शुक्रवार 3 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 1300 से अधिक मोबाइल फोन आज सुबह बुबासैन जेल के प्रशिक्षण केंद्र में नष्ट किए गए। प्रिजन्स कमिश्नर ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अब और भी सख्त तथा व्यवस्थित निरीक्षण लागू किए जा रहे हैं। अक्टूबर से प्लास्टिक की सभी बोतलों पर 2 रुपए का टैक्स बिना किसी उपवाद के लागू होगा। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उपभोग के उपयोग को कम करना और रिसाइकलिंग के लिए धन जुटाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्राइम विजन एक आधुनिक सॉफ्टवेयर है जो वास्तविक समय में हमलों का पता लगाकर तुरंत अलर्ट भेज सकता है। मॉरिशस के एक आईटी पेशेवर द्वारा विकसित इस परियोजना ने हाल ही में MRIC के नेशनल इनोवेशन चैलेंज में सामान्य श्रेणी का पुरस्कार जीता है। MRIC अब ऐसे नवाचारों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए समर्थन देने की योजना बना रही है। विदेश में जून के अंतिम सप्ताह में यूरोप में आई भीषण गर्मी के दौरान फ्रांस ने 2000 से अधिक अतिरिक्त मौतों में वृद्धि दर्ज की है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में और अधिक चरम तापमान की चेतावनी भी दी है।

0: नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। 22 अप्रैल 2020 में एयर मार्शल को स्वैच्छिक प्रशासन के तहत रखा गया। उस समय प्रशासनिक परिषद ने बताया कि कोविड 19 महामारी और सीमाओं के बंद होने के कारण एयरलाइन अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं रह गई थी। इसके बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई, फिर एक व्यापक पुनर्गठन योजना की शुरुआत हुई। कर्मचारियों की संख्या घटाई गई, नकदी जुटाने के लिए 5 विमानों को बेचने का फैसला लिया गया। करीब 17 महीने बाद वर्ष 2021 में एयर मॉरिशस स्वैच्छिक प्रशासन से बाहर आ गई। एक साल बाद एयरलाइन ने अपने फ्लीट को मजबूत करने के लिए 2 एयरबस विमानों को लीज पर लेने की घोषणा की और अगले वर्ष एक नया विमान भी खरीदा। इन्हीं 3 सौदों ने वर्ष 2025 में कंपनी की कमान संभालने वाले नए प्रबंधन का ध्यान अपनी ओर खींचा। मार्च 2025 में उन्होंने स्वतंत्र जांच के लिए क्रोल फर्म को नियुक्त करने का फैसला लिया। जांच रिपोर्ट एयर मॉरिशस को सौंपे जाने के बाद उसकी शुरुआती निष्कर्षों का खुलासा पिछले मंगलवार प्रधानमंत्री ने संसद में किया। ये घोषणा उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें पायों के बिल्डिंग से कहा गया था कि एयरलाइन अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इन कदमों में संबंधित तथ्यों को सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाना शामिल हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ये जानकारी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और पुलिस को भी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा कंपनी के पास उपलब्ध सिविल कानून उपायों का सहारा लिया जा सकता है और कानून के प्रावधानों के अनुरूप उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। 1300 से अधिक ये संख्या उन मोबाइल फोन्स की है जिन्हें आज सुबह बुबासैन जेल के प्रशिक्षण केंद्र में नष्ट किए गए सबूतों में शामिल किया गया है। पिछले बार ऐसी विनाशकारी कार्रवाई 2019 में हुई थी। ये प्रतिबंधित वस्तुएं तलाशी के दौरान जब्त की गई थी या उन्हें दीवारों के ऊपर से फेंककर जेल में भेजने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था। पहले से ही अधिक सख्त और व्यवस्थित निरीक्षण लागू किए जा रहे हैं। प्रिजंस कमिश्नर ने कहा कि उन्हें अपनी टीम के सहयोग से इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने का पूरा भरोसा है। अक्टूबर महीने से प्लास्टिक की बोतलों पर लगने वाला 2 रुपए का टैक्स सभी उत्पादों पर बिना किसी भेदभाव के लागू कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य इनके उपयोग को कम करना और रिसाइकलिंग के लिए धन जुटाना है। लेकिन ये कदम सर्वसम्मत नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि कई उत्पादों के लिए अभी भी प्लास्टिक का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वास्तविक समय में हमलों का पता लगाना ये क्राइम विजन का एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट है। मॉरिशस के एक आईटी पेशेवर द्वारा विकसित ये सॉफ्टवेयर जो तुरंत अलर्ट देने में सक्षम है ने हाल ही में MRIC के नेशनल इनोवेशन चैलेंज में सामान्य श्रेणी का पुरस्कार जीता है। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल पुरस्कृत परियोजनाओं का समर्थन करना जारी रखने की योजना बना रही है ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके। क्रिशन सिचिया की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। हिंसा की घटनाओं का रियल टाइम में पता लगाने वाला एक सॉफ्टवेयर, यही विचार आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ निविन के मन में आया। क्राइम विजन नाम का ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध हिंसक गतिविधियों की पहचान करता है और तुरंत अलर्ट भेजता है।
1: Crime Vision, c'est un projet qui émerge suite à, comme je disais, un rapport statistique Mauritius.
0: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की एक हालिया रिपोर्ट पढ़ते समय क्राइम विजन का आइडिया मुझे आया, जहां अपराधों की संख्या मॉरिशस में कम हुआ पर अपराधों की तीव्रता और गंभीरता बढ़ती जा रही है। जो कैमरा चारों ओर है पर ये फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान नहीं करता और व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करते हुए ये हिंसक गतिविधियों की पहचान करता है। नेशनल इनोवेशन चैलेंज के हालिया संस्करण में सामान्य श्रेणी के विजेता रहे। इस परियोजना का आम लोगों के लिए एक निशुल्क संस्करण फिलहाल अंतिम चरण में है। इसमें भेजे जाने वाले अलर्ट को उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट कर सकेंगे। ग्राहक उदाहरण के रूप में चुन सकते

0: कहता है कि उसे लाइट नहीं चाहिए बल्कि उसे मैसेज व्हाट्सएप पर भेजना है या विभिन्न विभागों में वह ईमेल भी भेजना पसंद कर सकता है। इस परियोजना को अभी और बेहतर बनाने की आवश्यकता है जिस पर निवीन लगातार काम कर रही है। उनकी तरह कई अन्य प्रतिभागियों को भी उनके नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के स्तर पर सहयोग केवल पुरस्कार देने तक ही सीमित नहीं रहता। हम ये करते आए हैं जहां हम संबंधित अधिकारियों को किसी अत्यंत ही नवाचारी परियोजना के बारे में सूचित करते हैं जिसको अपनाया जा सकता है और काबिल भी है। हमारे पास स्कीम भी उपलब्ध है जहां विजेताओं को अपनी परियोजनाओं को और विकसित करने में मदद मिल सकती है। इस परियोजना को व्यवहार्य, सुरक्षित, विपणन योग्य और सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं ताकि हम उन्हें अनुसंधान समन्वयकों के संपर्क में डाल सके जो उनकी परियोजनाओं को परिष्कृत करने के लिए धन जुटाने में उनका मार्गदर्शन करें। चौथे संस्करण में सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 287 प्रतिभागियों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। हर परियोजना अपने आप में नई सोच और संभावनाओं से भरपूर नजर आई। खबरों का आगे बढ़ाते हैं, बात करें फुटबॉल के बारे में। स्पेन का 2026 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। लाहोजा ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से राउंड 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये एक दमदार प्रदर्शन है जो टूर्नामेंट में उनके प्रबल दावेदार होने की पुष्टि करता है। आश्ले सिताना की रिपोर्ट पर अरविंद बिसेसर का विवरण।
1: वर्ल्ड कप में लाहोजा का सुहाना सफर जारी है और इस बार ऑस्ट्रिया को हराकर आगे बढ़े। मैच में सॉलिड रहे और अच्छा फुटबॉल का प्रदर्शन स्पेन की टीम जल्द ही मैच पर पकड़ मजबूत कर लेती है। मिकेल ओयोजाबाल 36वें मिनट पर पहला गोल स्कोर करता है मॉकुहेला के पास पर। सेकेंड हाफ में पेड्रो पेहो दूसरा गोल बनाता है और ओयोजाबाल फिर से एक गोल स्कोर करता है, इस बार फिर कुकुरेला के पास पर। दो गोल स्कोर किया ओयोजाबाल ने और इस प्रकार डिफेंस जो है स्पेन का उसे अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। इस क्लीन शीट के पीछे उनाई साइमन का हाथ है जो 519 मिनट तक अजीत है और ये रिकॉर्ड वोल्ट जेंगा का था वर्ल्ड कप में। 3-0 की जीत। अब अगले राउंड में स्पेन का मुकाबला पोर्टुगल से होगा।
0: और 2026 विश्व कप में शुक्रवार रात यानी कि आज रात को राउंड 16 के अंतिम फैसले हो जाएंगे। क्वार्टर फाइनल के लिए बची हुई 3 जगहें आज तय की जाएंगी। अपेक्षित पसंदीदा टीमों और हैरान कर देने वाले प्रदर्शन वाले करने वाली टीमों के बीच दबाव अपने चरम पर है। मारिन रेजिजी की रिपोर्ट पर एक बार फिर अरविंद बिसेसर का विवरण।
1: बेस्ट ऑफ 32 के 3 अंतिम मैच आज और कल सुबह खेले जाएंगे। आज रात 10 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इजिप्ट से। दी सोकरूज जो अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पे आए थे अपना सफर जारी रखना चाहेंगे और बर उनके सामने है मोहम्मद सलाह की टीम इजिप्ट। इजिप्ट की टीम ग्रुप जी में पहले स्थान पे आई थी बेल्जियम से आगे। सो इस प्रकार ये मैच कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट दोनों अच्छी अच्छी टीमें हैं। सुबह 2 बजे अर्जेंटीना और केप वर्दे के बीच मैच। लालबी सिलेस्ते अपने ग्रुप में पहले स्थान पे आई थी 3 जीतों के साथ। लियोनेल मेसी 6 गोल स्कोर कर चुका है। देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियन फेवरेट हैं लेकिन ब्लू शॉक्स कुछ करना चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में। एक ऐतिहासिक वर्ल्ड कप है उनके लिए क्योंकि पहली बार ये टीम यहाँ तक पहुँची है। ग्रुप स्टेज में इस टीम ने स्पेन और उरुग्वे को रोका था, इस बार अर्जेंटीना है उसके सामने। ये मैच आप लोग एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर देख सकेंगे सुबह 2 बजे। और सुबह 5:30 बजे कोलंबिया का मुकाबला गाना से होगा। ग्रुप के में दी कैफेटोकोस पहले पोजीशन पे आए थे। ब्लैक स्टार्स अपना टिकट बुक कर पाए थे अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर आके। इस टीम से बच के रहना होगा।

0: अब हम एक ऐसे शिल्पकार से मिल रही हैं जो टेक का ठेकेदार बन गई हैं और आज एक ऐसी स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही हैं जिसे निवेशकों के बीच पहले से ही सफलता मिल रही है। क्राफ्टी एक संस्थापक के संस्थापक ब्रूनो लुगाल ने अपनी स्टार्टअप के लिए पहले ही 7 मिलियन रुपए का निवेश जुटा लिया है क्योंकि उन्हें समय पर सही मार्गदर्शन मिला। शहजाद जुमन की रिपोर्ट पर ये विवरण। ब्रूनो लुगाल और उनकी पत्नी एवास किचन नाम से सूप तैयार करती हैं। रेसिपी हो या उत्पादन दोनों इस काम में पूरी तरह दक्ष हैं। लेकिन बढ़ते ऑर्डरों के साथ स्टॉक, ग्राहकों और संचार का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। ब्रूनो का तकनीकी उद्यमिता का अनुभव ही उन्हें एक ऐसा ऑल इन वन सॉफ्टवेयर बनाने की प्रेरणा बना जिसका नाम है क्राफ्टी।
1: Il y a plein d'outils qui existent, mais c'est souvent des outils qui sont faits par les tech pour les tech ou par les tech pour les tech savvy, mais pas pour les gens.
0: ऐसे कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो आमतौर पर टेक्नोलॉजी पेशेवरों द्वारा टेक उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है, पर ऐसे भी लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए एक ऐसा माध्यम ढूंढना पड़ा जो व्हाट्सएप की तरह वॉइस नोट या मैसेज भेज सकते हैं। असतन जो है वो ठेकेदार के लिए सभी प्रशासनिक और कमर्शियल कार्य करते हैं जबकि ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। शुरुआत में व्यक्तिगत जरूरत से जन्मी ये स्टार्टअप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। केवल 6 महीनों में ब्रूनो लुगाल अपने प्रोजेक्ट के लिए लगभग 70% वित्त पोषण जुटाने में सफल रहे। पहले चरण के लिए मुझे 10 बिलियन रुपए की आवश्यकता थी, फिलहाल केवल 7 बिलियन रुपए तक पहुंच पाए हैं जिससे सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर पाऊंगा। इसके बाद दूसरे चरण के अंतर्गत 3 से 7 बिलियन रुपए तक का बंदोबस्त करना होगा जिससे धीरे धीरे सॉफ्टवेयर का विकास कर पाए। विचार ब्रूनो का था लेकिन इसे एक सफल व्यवसाय में बदलने के लिए उन्हें लाप्लाज फैक्ट्री का सहयोग मिला। इस इंक्यूबेटर ने परियोजना के हर चरण में उनका मार्गदर्शन किया। इसी के माध्यम से उनकी मुलाकात एक मेंटर से भी हुई जिन्होंने शुरुआत से उनका साथ दिया और कारोबार को खड़ा करने में मदद की। आज सुबह भी ब्रूनो की अपने उसी मेंटर लाप्लाज फैक्ट्री के संस्थापक मिशेल कोदानी के साथ ऑनलाइन बैठक हुई।
2: Ça veut dire que à la fois on a des nouveaux investisseurs qui s'intéressent au projet et qui deviennent des membres donc du syndicat mais aussi de qui vont investir dans le programme d'autres projets.
0: इसी तरह किसी भी स्टार्टअप की सफलता में इंक्यूबेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 8-9 महीनों तक चलने वाले इंक्यूबेशन अवधि के लिए सहायता प्रदान करते हैं जहां ठेकेदार को परियोजना की नींव रखने में मदद करते हैं। बिजनेस डिजाइन, मार्केटिंग, परियोजना का विकास कैसे करें, कैसे संसाधन बनाना चाहिए, ये सब जानकारी देते हैं। अंत में फंड कैसे जुटाना चाहिए ये भी बताते हैं। लाप्लाज फैक्ट्री अपने प्रत्येक समूह की लगातार निगरानी करती है और जिन स्टार्टअप्स की नींव मजबूत होती है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष एक्सेलरेशन कार्यक्रम भी उपलब्ध कराती है। इस वर्ष इंक्यूबेशन कार्यक्रम में शामिल 14 संस्थापकों में से 4 पहले ही इस अगले चरण तक पहुंच चुके हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई ने एक नया कदम आगे बढ़ाया है। अब्यूज बिल में पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा करने और हिंसा पहचानने के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं जिनका पता मुश्किल होता है। इन उपायों में मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हिंसा, घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन और एम्पावर और रेज ब्रेव गर्ल्स शामिल हैं। इस विधेयक का स्वागत उन्होंने किया। हिंसा के उन पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है जो पूरी तरह से इसको हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। इस पर क्रिस्टल लिबास की रिपोर्ट पर ये विवरण।
3: घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हमलों तक सीमित नहीं है। प्रस्तावित डोमेस्टिक अब्यूज बिल में ऐसी हिंसा के उन रूपों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जो अक्सर दिखाई नहीं देते लेकिन पीड़ितों पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। इनमें आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न भी शामिल है। एम्पावर गैर सरकारी संगठन की अध्यक्ष और वकील मोक्षदा पैतुब का कहना है कि भले ही इस प्रकार की हिंसा के स्पष्ट शारीरिक निशान न हो फिर भी उचित साक्ष्यों के आधार पर इन्हें अदालत में सिद्ध

0: किया जा सकता है। तलाक या सेपरेशन की स्थिति में देखा गया है कि हिंसा करने वाले सबसे पहले आर्थिक नियंत्रण करते हैं, जहां वे खाने पीने के लिए पैसा देना बंद कर लेते हैं और महिला के पास अपने बच्चे की शिक्षा, स्कूल इत्यादि जारी रखने के लिए आर्थिक माध्यम नहीं है। पर अब इस तरह की हिंसा के खिलाफ भी अदालत में ऑर्डर प्राप्त कर सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा के कई पहलुओं को अब परिभाषित किया गया है। सबसे बड़ा पहलू नियंत्रण और नियंत्रणकारी व्यवहार, जहां इस प्रकार से मानसिक तौर पर पीड़ित से हेरफेर यानी मैनिपुलेशन किया गया हो कि जो उससे कहा जाता है वह करती है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को ये समझना चाहिए कि ये आम बात नहीं है।
1: Et bien, les femmes, elles comprennent. Et bien, les hommes aussi, elles comprennent. Que ça, c'est pas normal.
0: जब घरेलू हिंसा होती है तो उसके सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में बच्चे भी शामिल होते हैं। बच्चा घरेलू हिंसा का शिकार तब बनता है जब ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां वह परिवार और घर का हिस्सा होता है, जहां सब कुछ वह देखता है, सुनता है और जिसका उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसमें जरूरी बात ये है कि यहां बच्चे की सुरक्षा की बात हो रही है, जो एक अतिरिक्त सहायता है जो चिल्ड्रंस एक्ट को प्राप्त हो रहा है। ये साथ साथ चलता है। हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर से जुड़ा होगा। इस विधेयक में डिजिटल माध्यम से होने वाले नए प्रकार के दुर्व्यवहार को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत साइबर उत्पीड़न यानी हरासमेंट तथा किसी साथी को अपमानित करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक या निजी सामग्री भेजना या प्रसारित करना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा की जाने वाली बैंकिंग सीक्रेसी के उपवादों का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने बैंकिंग एक्ट में संशोधन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कानून में सामंजस्य स्थापित करना है। यासीन तेनमामो की रिपोर्ट पर यह विवरण। अप्रैल से यदि FCC को संदेह होता है कि कोई संपत्ति अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है, तो वह सीधे किसी बैंक से ग्राहक, उसके खातों और लेन देन से जुड़ी जानकारी मांग सकती है। संबंधित बैंक को 48 घंटे के भीतर मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। हालांकि बैंकिंग एक्ट अब भी वित्तीय संस्थानों पर गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी डालता है। ऐसे में इन प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हो गया है। ये सुधार कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही एसेट रिकवरी एक्ट में मौजूद था। इसके तहत एसेट रिकवरी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के तले कार्यरत था, किसी भी जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जांच के चलते बैंक स्टेटमेंट पाने के लिए अपील नहीं करना पड़ता था। पर जब से एसेट रिकवरी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन FCC के तले आ गया, इसका FCC एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था। इन अधिकारों का इस्तेमाल केवल संपत्ति की वसूली से जुड़ी जांच के दौरान और तभी किया जा सकता है जब कानून में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों। ये अपील करने के लिए एक केस का दायर होना जरूरी है और जिसकी जांच चल रही हो। ऐसे मामले में ही हम एक वित्तीय संस्थान से मांग कर सकते हैं। कई स्तरों पर स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, रिकॉर्ड होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि क्या इस वित्तीय संस्थान से ये जानकारी मांगना जरूरी है या नहीं। ये कार्रवाई कई विभागों से गुजरती है, जहाँ हमें सुझाव प्राप्त होता है कि किसी विशेष जाँच के लिए इन जानकारियों की जरूरत पड़ रही है। ये बदलाव 2027 समय प्रस्तावित ईसाम LG की म्यूचुअल इवैल्यूएशन से पहले वित्तीय अपराधों के खिलाफ व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। मंत्रिपरिषद ने हाल ही में विश्वविद्यालयों में HIV रोकथाम कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसमें जागरूकता बढ़ाना, मुफ्त और गोपनीय स्वैच्छिक जांच और जल्द ही प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्रेप तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। ये पहल मुख्य रूप से युवाओं पर केंद्रित है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में मॉरिशस में सामने आए नए संक्रमणों में से 1/3 से अधिक मामले 25 से 34 आयु वर्ग के हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर छात्रों को जांच के लिए प्रेरित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। समय के साथ ज्ञान का स्वरूप नहीं बदलता, लेकिन उसे समझने और नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के तरीके अवश्य बदलते हैं। इसी सोच के साथ गोरखपुर का प्रतिष्ठित गीता प्रेस पहली बार भगवद गीता का एक विशेष त्रिभाषी संस्करण लेकर आ रहा है, जो संस्कृत, हिंदी

0: और अंग्रेजी को एक ही ग्रंथ में समाहित कर आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक व्यापक और सुलभ बनाने का प्रयास है। विधि मासिब्रन का विवरण।
1: शास्त्र नहीं बदलती, केवल हमारे पढ़ने का तरीका बदलता है। प्रकाशन के एक सदी से अधिक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में गोरखपुर के गीता प्रेस ने पहली बार भगवद गीता के

0: अंतरण यानी ट्रांसलिटरेशन और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में व्याख्याएं शामिल होंगी। प्रकाशक के अनुसार ये संस्करण विशेष रूप से युवा पाठकों और देवनागरी लिपि से परिचित न होने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है।
1: नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को,
2: दिस बुक इज बीइंग ब्रॉट आउट स्पेशली विद द यंगर जनरेशन इन माइंड। द एंटायर बुक विल बी प्रिंटेड ऑन आर्ट पेपर एंड इट विल आल्सो फीचर इलस्ट्रेशन रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्सेस। दिस इज अवर इनिशिएटिव एंड प्लान टू पब्लिश इट हैज नाउ बीन ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड। वी एक्सपेक्ट टू रिलीज इट वेरी सून एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट पीपल विल अप्रिशिएट इट।
0: उच्च गुणवत्ता वाले आउट पेपर पर मुद्रित और श्लोकों के संदर्भ से मेल खाते चित्रों के साथ ये पुस्तक आकर्षक प्रस्तुति के साथ सुलभता को जोड़ने का प्रयास करती है। गीता प्रेस जल्द ही इस विशेष संस्करण को जारी करने की उम्मीद करता है, जिसकी कीमत अभी तय की जानी बाकी है।
3: फ्रांस ने कहा है कि जून में यूरोप में आई भीषण गर्मी के अंतिम सप्ताह के दौरान उसने 2000 से अधिक मौतों में वृद्धि दर्ज की है, जबकि मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों में महाद्वीप में और अधिक चरम तापमान की चेतावनी दी है। इसके साथ पेश हैं कुछ अन्य विदेशी खबरें इस रिपोर्ट में विद्या सिवरन के साथ।
0: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को कीव पर रूस के हमलों, जिनमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए, का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने हमले में आंशिक रूप से नष्ट हुई एक अपार्टमेंट इमारत का दौरा करते हुए ये बात कही। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई का जनाजा और सार्वजनिक शोक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो उनके गुजरने के कई महीने बाद हो रही है। अयातुल्ला अली खमनेई की हत्या 28 फरवरी 2026 को तेहरान में एक हवाई हमले के दौरान हुई थी। वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप के बाद ढही एक इमारत के मलबे में 8 दिनों तक फंसे रहने के बाद एक व्यक्ति को जीवित बचा लिया गया है। मध्य दमिश्क के एक भीड़ भाड़ वाले कैफे में हुए बम विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी समूह ने नहीं ली है। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि सूडान में हुए एक ड्रोन हमले में दक्षिण कोर्डोफान में कमजोर समुदायों के लिए भेजी गई 50 मेट्रिक टन मानवीय सहायता नष्ट हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के घातक प्रकोप के लिए जिम्मेदार वायरस के संभावित उपचारों का परीक्षण शुरू हो गया है। WHO प्रमुख ने गुरुवार को बताया कि कोंगो में पहले मरीज को इस परीक्षण में शामिल कर लिया गया है। WHO के अनुसार कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अब तक 1400 से अधिक मामलों और 438 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद दक्षिणी फ्रांस में जंगल की आग से निपटने के लिए लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और पानी गिराने वाले विमानों को तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई में मानसून की भारी बारिश जारी है। मध्य प्रदेश मानसून सीजन के अपने पहले रेड अलर्ट के दायरे में है। ये अलर्ट 19 जिलों के लिए जारी किया गया है और मानसून की शुरुआत के बाद से ये अब तक की सबसे गंभीर चेतावनी है, जबकि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मानसून की भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हो गया है, जिससे कई वाहन फंस गए हैं।
3: इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, हवादार इलाकों में रात के दौरान बादल छाए रहेंगे और रहकर वर्षा होगी। अन्य इलाकों में आसमान साफ रहेगा। कल आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय सुबह के समय ऊंचाइयों पर थोड़ी वर्षा हो सकती है। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। बाद में समुद्र में सुधार आएगा। खुले समुद्र में विशेषकर रात के दौरान न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:42 पर और सूर्योदय कल सुबह 6:46 पर।

0: सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शुभ समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे तकनीकी सहयोगी को लुडोविक जो कंसोल पर है।

शोक समाचार सुनिए. I'll be a road कल बस में, I'll be a road कल बस में. 42 साल की, 42 years old की श्रीमती पुष्पा देवी दुखी, श्रीमती पुष्पा कुमारी दुखी पैदाश्रम दुर्गाचरण और जिन्हें लीना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति श्री दुखी योगेश मूल शंकर सिंह के घर कालबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौसा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. कालीमाई रोड पुचिराफ्रे में, कालीमाई रोड पुचिराफ्रे में 56 साल की, 56 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मुनेश्वरी करण जिन्हें करुणा के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर पिचगाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM. विलेज होल लेन प्लेन दे रोश में 57 साल की, 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजवंती रामसन पैदाश्रम गोबीन और जिन्हें राजवंती के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 12 बजे उनके पति ईश्वर रामसन के घर प्लेंदेरोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुएक शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट नून. रेजिडेंस बोसेजू रोजिल में 35 साल के, 35 ईयर्स ओल्ड की श्री विशेष महादेव कालिया जिन्हें मिकी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पिता सुनील कालिया के घर रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. सिमिचिया रोड प्लेन मानियो में 36 साल के, 36 ईयर्स ओल्ड के श्री वितिश बुदन जिन्हें इशले के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी बाद में उनकी माँ संध्या रापूजी के घर प्लेनमानियों से उठाई जाएगी. क्रिमेशन आफ्टरवर्ड्स. कश्मीर रोड लेस्पेरेंस ट्रिबुशे में 68 साल की, 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सीता महादेव बोयरोप पैदाश्रम अलकोरिया और जिन्हें विद्या के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल शाम 3 बजे उनके घर लेस्पेरेंस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.

नमस्कार, शाम के 6:28 हुए हैं, हमारा आपका साथ है और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा समय बीत रहा होगा और आपका जो समय है बहुत प्यार से भी बीत रहा होगा। रेडियो मनोरंजन पर हम आपका स्वागत करते हैं और आपके लिए नई सोच कार्यक्रम लेकर आए हैं, कुछ ऐसे गाने जो आपके पथ को और भी ब्राइट कर जाएंगे और इस ब्राइटनेस की पथ पर आप चलते जाएं और प्रगति की राह पाते जाएं। तो चलिए आपके लिए पेश करते हैं एक ऐसा गाना जिनमें एक नए ज़माने की चाह है।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: रेडियो मनोरंजन पर मनोरंजन का आपका साधन है और रेडियो मनोरंजन पर जो गाने हम पेश कर रहे हैं बस आपको बहुत ही सुकून पहुंचा जाए ये गाने, ये हमारी उम्मीद है। आप देखिए ना, ये जहां है कितना प्यारा सा, इस जहां में कहीं नफरत तो कहीं प्यार होता है, बट इतना सोचिए जब कम समय है जीने के लिए तो कहां से

प्यार बांटने के लिए, लव बांटने के लिए बस एक जरिया बहुत होता है। मधुबन जो खुशबू बांटता है, औरों को खुशी देता है, सूर्य जो रोशनी बांटता है, उससे जीवन में बहुत सी ऊर्जाएं मिलती हैं, बहुत से अंधकार मिट जाते हैं। और ऐसे में जो पेड़ फल देते हैं, उन फलों से लोगों का पेट भरता है और लोगों को चाव से खाने का मौका मिलता है। इसी तरह से हर

कोई किसी न किसी तरह से अगर कोई परोपकार करे तो बेशक ये जहां बिल्कुल बिल्कुल सुंदर हो जाएगा, बहुत शांतिमय हो जाएगा और जीने के लिए बहुत सी उत्साह प्रदान कर देगा।

0: RM3 Radio.
1: चलिए जरा मुस्कुराहट बांटने की कोशिश करें। मुस्कुराहट आपके होठों से आप औरों तक भी बांट सकते हैं। बस आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लीजिए औरों को खुश रखने के लिए। देखिएगा, मुस्कुराहट की लहर उठ जाएगी। मुस्कुराहट से खुशियों की

मुस्कुराते हुए यूं ही चलते रहे, मुस्कुराते हुए इस तरह राहों में अपनी डगर तक पहुंचने की कोशिश करें कि सब साथ चलते रहे आपके। आपके साथ चलते हुए जो हम सफ़र बन जाते हैं वही आपके सफ़र को बहुत ही प्यारा बना जाते हैं। तो फिर प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ये सब हमारे जीवन में रहे तो हमारी राह कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत बन जाती है।

0: जिंदगी का सफ़र बहुत ही प्यारा रहे हर किसी का, यही दुआ करते हैं हम। दुआएं करते हुए हम नई सोच कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बस 7:01 हो चुके हैं, लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए ये अगला प्रोग्राम। ये अगला प्रोग्राम है आपके दिल की आवाज़।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: दिलों की आवाज़ की
0: आवाज़। बेशक अपने दिलों की आवाज़ हमारे दिल की आवाज़ शो में ज़रूर सुनवाइएगा हमें। 5250-6200 नंबर है हमारा मैसेजेस का, और कॉल करने का नंबर 4028070। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं। साथ देते हुए बेहद खुशी हो रही है हमको। आप इस प्रोग्राम की शान बढ़ाइएगा, अपनी पसंद के गानों के बारे में हमें बताइएगा। आप लोगों के नाम करेंगे वो गाने जिनकी आप फरमाइशें कर रहे हैं। सो चलिए दिलों की आवाज़ में हम पेश करते हैं सबसे पहला वाला गाना हमारे भी श्रोताओं के नाम, कुमार सानवल का याग्निक की आवाज़ों का ये सुपर रोमांटिक सा गाना है। चलिए ज़रा वक्त हमारा है मूवी का ये गाना सुनते हैं।

दीवानों की ये महफिल है, दीवानगी का एहसास है, बस दीवानेपन में इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ये जहां बहुत प्यारा है, इस जहां को बहुत

बहुत ही प्यार से आप देखिएगा ताकि हर किसी के लिए हर किसी के दिल में बहुत ही आदर बहुत ही सम्मान रहे। हम है सुरेखा साथ आपका दे रहे हैं, बस यही उम्मीद रखते हैं कि आप इस वक्त बहुत ही खुश होंगे। आप इस वक्त इस ऐसे मिजाज में होंगे कि आप अपनी पसंद का गाना सुनने की चाह भी रख सकते हैं। सो आप अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो 5250-6200 पर मैसेजेस भेजिएगा और कॉल कर सकते हैं आप 4028070 पर। हम सुरेखा है आपका साथ निभाएंगे आपकी फरमाइशों को पूरा करते करते। तो चलिए फिलहाल तो हम अनीता जी की पसंद आप तक पहुंचाते हैं। अनीता जी ने फ्लिक ऑन फ्लैग से फ़ोन किया और बताया उन्होंने कि उनको सुनना है ये गाना जिसे हमने 15th अगस्त मूवी से लिया है। अनीता जी ने फ्लिक ऑन फ्लैग से इस गाने की फरमाइश अपने पूरे परिवार के लिए और अपने सभी फ्रेंड्स के लिए की है।

और इस समय 7:13 हुए हैं। साथ हमारा आपका 11 बजे तक चलने वाला है और दिलों की आवाज़ शो में 9 बजे तक चलने वाला है। तो चलिए हम जरा स्वेनल जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। स्वेनल जी ने मांगा है फिल्म आरजू का गाना और इस गाने को गाने वाले हैं अलका याग्निक और साथी कलाकार। तो चलिए ज़रा हम श्रीनल जी की तरफ से ये गाना भैया श्रवण भाभी कृति के नाम करते हैं, अभिनव कियान नाविया और पूरे तिलक फैमिली के नाम करते हैं और द हैंडसम बॉय अंतिश रामसरन जी के नाम करते हैं जो स्विट्जरलैंड से हमें सुन रहे हैं और श्रीनल जी की तरफ से अंतिश जी के नाम ये गाना करते हुए हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए श्रीनल जी आपकी तरफ से ये गाना स्विट्जरलैंड तक पहुंच रहा है।

चलिए बस इस बार हम किरण जी की पसंद आप तक पहुंचाते हैं। सुखी नाम की किरण जी ने अग्नि साक्षी मूवी का गाना मांगा है, तो चलिए हम जरा सुनते हैं विनोद राठौड़ और अलीशा चिनाई को।

चेहरा जिसका उनके जैसा हो, चेहरा उनके दिल में जो बस जाता है वो दिल से निकल के जाता नहीं है। चेहरों की क्या बात कीजिएगा, जो दिल में बस जाता है चेहरा वो बस अपना हो जाता है। सात बजकर 28 मिनट हुए हैं और चलिए जरा हम फकवा की ओर चलते हैं। सुदेवी जी के यहाँ, सुदेवी जी ने गाना मांगा है, फिल्म डुप्लीकेट से लिया गया, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत हम पेश करते हैं सुदेवी जी की तरफ से, थ्रियले की दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए, दीदी सुनीता, देवीना, बिंदु और संगीता के लिए, मालेगा के पूरे राम रतन परिवार और हमारी पूरी टीम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेवी जी।

होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे ये गाने जिनकी फरमाइशें हमारे श्रोताओं ने की हैं। इस समय 7:35 हुए हैं। रेडियो मनोरंजन पर हम दिलों की आवाज़ प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। हमें सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं और साथ साथ चलते चलते हमारा साथ रेहाना जी भी दे रही है फिनिक्स से। रेहाना जी ने मांगा है फिल्म सुहागन का ये गाना। चलिए ज़रा हम सुने तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ें।

बस जो आपके लिए लेकर आए हैं वो गाना होगा फिर इस बार मुकेश की आवाज़ में लता मंगेशकर के साथ साथ और हरियाली और रास्ता मूवी का ये गाना है क्योंकि हरियाली हरियाली सी छाई हुई है कुशल फैमिली में तो ये लेके कुशल फैमिली में आयुषी का 18वां जन्मदिन मनाया जा रहा है सो पूरा परिवार बहुत ही उत्साह के साथ बहुत ही खुशी के साथ आयुषी का जन्मदिन मना रहा है इसमें शामिल है पापा और मामा पापा अजय और मामा आशना उनको बहुत सारा प्यार बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं और दादी माँ ललिता जी तो बहुत ही आशीर्वाद दे रही हैं आयुषी को आलिया और आलिना आयुषी की दो बहनें शायद ठुमक ठुमक कर नाच रही होंगी अभी इस पार्टी में और फिर ललिता जी ने ये गाना मांगा है सुखलाल मौसी के लिए उषालू का नाम माला राम जावन के लिए सुदेवी जी के लिए देवीना ज्ञानी छोटी जी प्रभावती जी और आत्मा राम जी के लिए

0: RM3 Radio. Radio.
1: चले चले हम म्यूज़िकल रास्ते पे, चले चले हम एंटरटेनमेंट के रास्ते पे। आपका साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत प्यार से हमारा स्वागत भी किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं को जो आप हमारा साथ इस तरह प्यार से दे रहे हैं। चलिए ज़रा हम भाई महेन जी की फरमाइश पूरी करते हैं। पालमा के महेन जी ने मांगा है गाना राम तेरी गंगा मैली मूवी से लिया गया, और ये वो गाना है जिसमें नज़र आता है हमको जो प्यार मोहब्बत के साथ हम जिएंगे तो हमारा रास्ता बड़ा ही प्यारा तय हो जाएगा, हमारे रास्ते में अड़चन तक नहीं आएगी, और चलते चलते आप मंजिल तक इस तरह प्यार से, इस तरह सुकून के साथ पहुंच जाएंगे कि खबर ही नहीं होगी कितना लंबा रास्ता था आपका।

बेशक दुनिया जगाती है कि प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है, बड़ा सही कहती है ये दुनिया। हम तो इस बात से बेहद सहमत है। चलिए प्यार भरी ये महफिल भी सजी है, इस महफिल में आपका हम स्वागत करते हैं। ये है वो महफिल जिसमें आपके दिलों की आवाज़ हम सुनते हैं। ये है दिलों की आवाज़ शो। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं। जो भी गाने आप चाहते हैं हम वो आप तक पहुंचाएंगे। आप ज़रूर हमें मैसेजेस भेजिएगा 5250-6200 पर या फिर 4028070 पर हमें कॉल कीजिएगा। फिलहाल तो हम पेश करने जा रहे हैं गुलशन जी की पसंद का गाना। गुलशन जी ने मांगा है फिल्म इश्क प्यार मोहब्बत का ये गीत, और माफ कीजिए प्यार इश्क मोहब्बत का ये गीत, तीनों सेम सेम है, डोंट वरी। चलिए ज़रा हम पेश करते हैं ये गाना। उन्होंने ये मांगा है एंजल आयशा के लिए, मम्मा प्रभा के लिए, बहन दीक्षिता के लिए और पूरे भोला परिवार के लिए।

उफ़ ये मौसम है कितना सुहाना और हमें भी नहीं जाना इस शो को छोड़ के। हमारे श्रोताओं की तरफ से बहुत प्यारे प्यारे गानों की फरमाइशें जो आ रही हैं, हम भी इसको एंजॉय कर रहे हैं, आप भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। कितनी हंसी सी महफिल लग रही है ये। इस हंसी महफिल में शामिल है इब्राहिम जी पोटवी के। उन्होंने मांगा है एक बहुत गहरा सा गाना, बहुत ही प्यारा सा गाना, और ये है प्यासा मूवी का गीत। ये गाना आप सुनिएगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जब लिरिक्स में गहराई हो, गाने वाले की आवाज़ में गहराई हो और संगीत का क्या कहना, इसकी गहराई में डूब जाने का मन करता हो तो बेशक बेशक इन गानों में हम समा जाते हैं।

और हुजूर हमारा एक घंटा बीत गया, बस एक घंटा रह गया, यानी कि इस समय 8 बज चुके हैं, 8:04 हुए हैं और हमारा आपका साथ दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में 9 बजे तक का है। आप ज़रूर इसमें शामिल रहिएगा, आप ज़रूर अपनी तरफ से इसमें एक छोटी सी महक ज़रूर बिखेरिएगा ताकि खुशबूदार ये शो हो जाए और आपके प्यार की खुशबू से इस शो को हम लाजवाब शो कह पाएं। चलिए ज़रा हम आप लोगों की फरमाइशों की ओर बढ़ते बढ़ते मिस्टर बेचारा मूवी का ये गाना पेश करते हैं। रिविया जोंपा से माला जी ने इस गाने की फरमाइश की है बहू किरण के लिए, केविन के लिए, कबीर, कनील, कनिश और सत्यम तथा शिव के लिए।

गुलदस्ता फूलों का देखा है हमने पर ये गुलदस्ता गानों का ये हमने भेजा है आप तक. इनफैक्ट एक एक फूल चुन कर लाए हैं हम हमारे श्रोताओं की तरफ से और सजाया है ये गुलदस्ता जो एक एक करके फूलों की बारिश हम कर रहे हैं आप तक. चलिए ज़रा हम आन मिलो सजना मूवी का गाना सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में और ये गाना हम पेश करते हैं ताया के रफीक मोहित जी की तरफ से हमारे सभी सुनने वालों के लिए.

रात्रि के 8:16 होने को है और ये है अगला वाला गाना। ये है मोहब्बतें मूवी का गाना और ये गाना हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। चलिए ज़रा सुनते हैं वो गाना जिसमें खुद को खुद से चुराने का ये जो बहाना है ये इश्क कहलाता है। इसी बात पे गौर किया गया है, वो जो हमको हमी से चुरा पाए उनकी यादों में बहक जाने का मन करता है, उनकी बातों में सिमट जाने का मन करता है।

और ये गाना मोहब्बतें मूवी का हम पेश कर रहे हैं नंदा जी की तरफ से। बेशक भाई की नंदा जी हैं जो पुनीता परिवार और गणेश परिवार के नाम ये गाना कर रही हैं।

फ्राइडे की ये रात्रि है, एक हफ्ता थकान के बाद आज शायद आप लोगों को मौका मिल रहा है थोड़ा सा रेस्ट करने का, थोड़ा सा रिलैक्स होने का, और म्यूज़िक उसके साथ

की अंतवाने पिंटो की आवाज में साथ में कई कलाकार हैं और ये गाना हमने लिया है फिल्म सत्य पे सत्ता से और सत्य पे सत्ता मूवी का ये गाना हम सुदेवी जी के नाम करते हैं। वो कैसे सुदेवी जी ने इस गाने की फरमाइश अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए की है। चलिए जरा इस मस्तानी मौसम में शामिल हो जाते हैं, इंजॉय करते हैं म्यूजिक भी मौसम भी और साथ भी।

चलिए जरा हम पेश करते हैं आप लोगों के लिए कभी अजनबी थे मूवी का गाना। अजनबी होना कितना प्यारा होता है, जब अजनबी होते हुए किसी के अपने बन जाते हैं हम तो एक अजीब सी खुशी मिलती है, दिल की गहराई में एक अजीब सी हलचल मच जाती है और यही हलचल हमें जीवन में स्वाद देता है। तो चलिए कभी अजनबी थे मूवी का ये गाना जो हम आप तक पहुंचाएंगे, इसे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुनिएगा। ये गाना हम थयोले के सचिन शर्मा सजादा जी के नाम करते हैं और यही गाना हम पालमा के महेंद्र जी के नाम करते हैं।

और इस बार तलत महमूद की आवाज़ रेशमी रुमाल मूवी का गाना कौफू खोसे आंटी जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपने पति ईश्वर लाल जी के लिए। ईश्वर लाल जी जो हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और इस शो में शामिल होना पसंद कर रहे हैं।

और चलिए जरा हम तैगूर की सुनीता जी की तरफ से पेश करते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों का ये गाना एक नजर मूवी से लिया गया। चलिए जरा पत्ता पत्ता बूटा बूटा जो देख रहा है उन बातों को हम सुनते हैं, जरा उनकी आंखों से देखी हुई बातें हमारे दिल तक पहुंचने वाली है। ये है गाना एक नजर मूवी से लिया गया।

धीरे धीरे चलेंगे हम, आगे बढ़ते चलेंगे हम, और चलते चलते धीरे धीरे साथ बड़े प्यार से निभाएंगे हम। मुकेश की आवाज़ का ये गाना जौहर महमूदीन गोवा हम पेश कर रहे हैं बापू अनाथवा जी के लिए।

और चलिए जरा अपने अपने मूवी का ये गाना हम पेश करते हैं सूरज शर्मा सजादा जी की तरफ से उनके बेटे उनके प्यारे से बेटे निशाल के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए उन्होंने ये गाना मांगा है। सो चलिए हम ये गाना हमारे सभी श्रोताओं के नाम भी करते हैं।

चलिए जरा पेश करते हैं गाना देवी जी के लिए जो हमारा साथ दे रही हैं ये हैं जतिन की आवाज़ जो जीता वही सिकंदर का

जो जीता वही सिकंदर इस फिल्म का गाना ही है जो हमें दिलों की आवाज कार्यक्रम के अंत तक लेकर आएगा और इसी गाने के साथ जो हमारा दिलों की आवाज कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए भोजपुरी का प्रोग्राम भोजपुरी तड़का हम सुरेखा आपसे इस प्रोग्राम के जरिए आगे आ जाएंगे लेकिन थोड़ी देर में मिलते हैं हम भोजपुरी तड़का प्रोग्राम लेकर आप जरूर साथ देते रहिएगा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर प्रस्तुत करेंगे हम तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: नमस्ते हमने के सब श्रोता लोग के 9:11 होल बामने के भोजपुरी तड़का तो हर खातिर प्रस्तुत करे थे जा और हम सुरेखा तो हर खातिर उस सब गाना अनले हैं जिन तो लोग फरमाइश कर बजा यानी कि जिन गाना के फरमाइश कर बजा वही गाना निकाल के तो हर तक पहुँचाओ जा यह भोजपुरी तड़का और ये भोजपुरी तड़का में चला तनी गवड़ भी करी जा और तनी जोरी जोरी गाना भी सुनी जा अभी जिन गाना हम तो लग के सुनवाओ जा यह विनोद शिवदत्त जी के गावल गाना और ये गाना हमने से मंगले हवन ललिता जी त्रियोले से ललिता जी गाना आयुष जी के जन्मदिन के अवसर पर मंगले हवन और ये उनका पूरा परिवार बगल से पापा अजय मामा आशना बगल से और बहन आलिया और आलिना बगल से तो चलो दादी ललिता बगल से आयुषी के बहुत आशीर्वाद और ललिता जी गाना मंगले हवन सुदेवी जी देवीना जी ज्ञानी जी खातिर छोटी जी प्रभावती जी और आत्माराम जी खातिर सुखलाल मऊ जी खातिर उषा लुकाना और माला राम जावन खातिर

दगाबाज सुनरवा के बारे में तो सुन ले ली जा, उनकर गाथा तो सुन ले ली जा, अब चला जा बढ़ी जा हमनी के भोजपुरी तड़का के आगे कुंचबाई पर। अभी तो हमने तो लगे याद दिला दिला जा के हमने के नंबर है 5251700005। ये नंबर है हमने के मिसाज भेजे के, चाहे SMS रही वो चाहे रही व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर भेजा जा। और ये हमने के टेलीफोन करे खोजवा जा तो 4028085 हमें के नंबर है। और अपन पसंद के गाना यही नंबर वन पर सक बजा मांगे, चाहे मिसाज पड़े चाहे कॉल करके। तो चला अभी सुनब जा हमने संतोष महादेव जी के गावल गाना, और ये गाना हमने उमा जी के नाम बजवावत हैं जा।

आगे बढ़ी जा और प्रस्तुत करी जा भोजपुरी तड़का के अगला गाना ई गाना ज्ञान महिपत लाल जी के गावल है और ई गाना हमने प्रस्तुत करे थे आत्मा राम जी के बसिन पर बस यही प्रार्थना करी जा कि आत्मा राम जी सुखी रहियन सेहतमंद रहियन और ये अपन परिवार के बीच में बहुत अशांति पहन तो आत्मा राम जी बगल से ये गाना हमने उनकर बहन छोटी बहन ललिता बहन प्रभावती और बहन सुदेवी जी के नाम करे थे जा और संगे संगे बेले के पूरा इस्नू परिवार के नाम

भोजपुरी तड़का चला ही तड़का में हमनी और तड़का लगाई ला जा बजा बोल संगी सोना नयन जी के गावल गाना संगी गाना हमनी विश्वानी दुमन जी खातिर बजवावत है जा वाकवा से विश्वानी दुमन जी बगल से गाना उनकर दुगो बहिन शारदा और इंदिरा खातिर उनकर दुगो सखी हवन जा नीला और प्रतिभा संगे संगे गीता जाधर जी खातिर और शोभा जी खातिर

दुनिया बात चारों बगल गोल और ये गोल गोल दुनिया में चला हमनी के श्रोता लोग से फिर भेंट होल मुलाकात होल और ये हवन हम के श्रोता अनिता जी फ्रीकॉन फ्लाक से अनिता जी मंगले हवन गाना सुनीता नंद कुजी के गावल देवी मैया के गाना और ये गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर सब संगत यालो खातिर हमने के रेडियो MBC के पूरा टीम खातिर बहुत बहुत शुक्रिया और चला ये गाना सुना जा और देवी मैया से प्रार्थना करी जा सब कोई के हिम्मत दिहन सब कोई के ताकत दिहन अपन जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे।

और अब चला हमने केशव होता सुनीता जी के नाम करी जाएगा गाना गौगुप के सुनीता जी के नाम वैसे सुनीता जी गौगुप से गाना कुंगुमा के अपन बहन विमाला जी के नाम करत हवन ई गाना विनोद शिवदत्त द्वारा गावल

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: चले आगे बढ़ी जा, भोजपुरी के गीतवन बड़ा मजा लगा था सुने के। चल ही गमटवा में हमने प्रस्तुत करी जा, पैंक पैंक को झुलवा लो तो, पैंक पैंक को झुलवा लो तो। चल सुनी जा हमने भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के कलाकार लोग के आवाज़ में। चला संगे संगे रहिया जा, टनी ठुमक ठुमक भी जाइए जा। ये गाना हमने बजवाओ था जा सूरज शर्मा सजादा जी के फरमाइश पर, त्रियो लेके सब परिवार लोग खातिर।

हर चले जुम्बा करी जा अभी तो रात के तनी देरी हो गल बा फिर भी जुम्बा करे के कोनो समय सीमा तो नहीं है चला हमनी तोहर खातिर जुम्बा गाना बिस्वानी दीपुआ जी के गावल प्रस्तुत करब जा और ये गाना हमने सुदेवी जी बगल से उन थयोले के उनकर दीदी ललिता जी के नाम कुशल परिवार के नाम आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेगा के राम रतन परिवार राम गुलाम परिवार कुवारू परिवार खातिर बचपाई ला जा चला आगे बढ़ी जा और यही गाना हमने सुनीता जी के नाम करब जाते खुश के सुनीता जी ये गाना मंगले हो अपन भाई रविंद्र खातिर

और चला सुनी जा हमने सत्यजीत रघु जी के गावल गाना फूलमती रानी, और फूलमती रानी गाना हमने बजवाई ला जा विवेक जी के पसीन पर, विवेक जी गाना मंगल हवन पत्नी सुविता के नाम। चला सुनी जा ये गाना गए हवन सत्यजीत रघु जी।

अब चले हम महेंद्र जी के पसंद के गाना सुने जा फटफटवा व्यास परसे नु जी गए वन और फटफटवा गाना सुन के चल हमने महेंद्र जी बगल से पालमा के महेंद्र जी बगल से उनका दीदी मान के नाम कर अब जा

के 10 मिनट हो गलवा औरी हमनी के कार्यक्रम में और जलसा बढ़ते जाता फटफटवा गाना के बाद चल लुत्तो पर में जायला जा अभी तो फटफटवा सुन ली जा अब लुत्तो के बारे में सुन जा ई जुबेदा के लुत्तो है चल राम रंभा राम तो हल जी के गावल गाना सुनी जा वर्षा जी गाना मंगले हाउ मोहसिन मोहसिन अपन माता पिता और दादी माँ खातिर

चल हमने के कार्यक्रम में तो हर साथ मिला था एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। चल हमने अभी कुछ एगो रोमांटिक गाना सुनवाई ला जा, रोमांटिक या फिर रोमांस पर गाना सुनाई ला जा। तो चल ये गाना हमने रेशमा बिकन के आवाज़ में सुनब जा और ये गीत गीता जी बगल से बचवाओ थे जा। गीता जी प्लेन देखोश से ये गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर।

खुशहाली सब कोई के जीवन में रही, यही दुआ यही प्रार्थना हमारा भगवान से। चले आगे बढ़ी जाओ और पूर्णिमा फकीरा जी के को चौ छक गाना सुनी जाए। गाना हमने बजाए ला जाए नोवेल फॉन्स के गायत्री जी खातिर, उनकर बेटा अजय खातिर और माईबू के उनकर मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, मोतालोंग के बाबी शकुंतला जी खातिर और नोवेल फॉन्स के सखी गीता बाई जी खातिर।

अभी चला माँ बाप के मोल जानी जा, माँ बाप के मोल पर बात करी जा। गीता गजाधर जी के लिए होनी गाना और ये गाना हमने से रूपा जी मंगले वन जुपाए से रूपा जी गाना सुनवावे खोजा था विनीता के, पवन के, राम के और दिलीप के।

अभी चला सुने जा हमने वो गाना जुन हमने के हमने के तनी सन प्यार मोहब्बत के बात बतावेला और ये गाना हमने बजावत है जा संजय सिंह गुलाम जी के गावल ये गाना हमने बजावत है जा वीना जी खातिर वीना जी रहे लन कौफुको ये गाना अपन पति राजन के नाम मंगले हवन

चमेली चमेली गाना सुना थे जामी सुनीता ननकू जी के आवाज में। गाना मंगले हो हमी से अमृता जी पीतों से अमृता जी गाना सोनिया और परी खातिर मंगले होवन विशान और मीनाक्षी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में हमने वेद जी के पसंद के बल्कि

बेच के मंगल गाना प्रस्तुत करे थे जा माया धनु जी खातिर माया धनु जी कौ दे मास पावे रहेलन उनका नाती वेद ई गाना विनोद सिद्धत जी के गावल उनका नाम करे थवन त चल सुनी जा बाप दादा के बोली भोजपुरी बोली।

अब चले आशीष रामफल जी के गावल गाना हमने मीला जी के नाम करे थे जहाँ मीला जी रहे लन गाँव गुब और गाँव गुब से मीला जी गाना मंगले वन तेहूश के उनकर बहिन संध्या के नाम

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समय पूरा हुआ था। अभी तीन मिनट बचल और ही तीन मिनट में हमने तलक के सुनवा उपजा राजकमल चिंतामणि जी के गावल गाना मार्चों का, और मार्चों का गाना के संगे संगे हमने के मुलाकात है जहाँ पर समाप्त हो जाए। 11 बजे सुनिए जा पुराना गीत के कार्यक्रम सुनहरे पल गिनेशा प्रस्तुत करियन आवत हला। फिर मिलब जा तब तक खातिर शुभ रात्रि, नमस्ते।

देखा जाए तो जिंदगी में कभी कभी सिर्फ एक गीत ही काफी होती है हमें सालों पहले ले जाने के लिए। एक आवाज, एक धुन और आंखों के सामने बचपन की गलियां, स्कूल के दोस्त, पहली साइकिल, माँ के हाथ का खाना और घर का वो पुराना रेडियो, सब कुछ जिंदा हो जाता है। और आज हम वही यादें फिर से ताज़ा करने आ गई हैं। तो दोस्तों, ज़रा दिल को थाम लीजिए, दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए और पुराने बॉलीवुड के इन हसीन नगमों के साथ चलिए एक खूबसूरत सी सफ़र पर, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम।

तो मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, हर गीत किसी ना किसी दिल की जुबा होता है। कुछ गाने खुशी बयां करते हैं और कुछ मोहब्बत, और कुछ वो बातें जो हम कभी लफ्जों में

कह नहीं पाते। आज का हर नगमा शायद आपके दिल की कहानी कह दे, तो जहाँ भी है आप मुस्कान के साथ हमें भी अपना साथी बना लीजिए और चलिए बॉलीवुड के सुनहरे दौर का लुफ्त उठाने में चलिए जी। ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

वैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, एक वक्त था जब रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं होता था, घर का एक हिस्सा होता था। वो सुबह की शुरुआत, शाम की चाय और रात की सुकून भरी बातें सब रेडियो के साथ जुड़ी होती थी। आज भी वही रिश्ता हम सबको जोड़ता है और जब उसमें पुराने बॉलीवुड के गीत शामिल हो जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो आइए मिलकर इस प्यारे रिश्ते को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी एक किताब होती है और उस किताब का हर चैप्टर किसी ना किसी गीत के साथ जुड़ा होता है। शायद आज का अगला गाना आपकी कहानी का भी एक हिस्सा हो सकता है किसी अपने की याद दिला दे या फिर किसी अधूरे सपने की। तो दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि पुराने बॉलीवुड के गीत सिर्फ संगीत नहीं है, जिंदगी का एहसास होता है जी।

0: मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं होती है, कभी-कभी एक गीत ही दिल की बात कह देती है। कितना ही प्रेम कहानियां हैं जो बॉलीवुड के गीतों के साथ और भी खूबसूरत बन गई है। आज अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी को याद कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम उन्हीं एहसासों के नाम। चलिए प्यार के इन अनमोल नगमों का आप मजा ले लीजिए रेडियो मॉरिशस पर इन योर सुनहरे पल।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू. इजाजत दीजिए, जाएंगे वापस लौट आने के लिए. वादा रहा आप सभी लोगों से एक और सुनहरे पल के बहुत ही खूबसूरत से सफर में. आप बस अपना ख्याल रखते जाना, प्यार बांटते जाना. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे।

0: मॉरिशियस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस
0: रेडियो मॉरिशियस
1: रेडियो मॉरिशियस।

लड़के हैं।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shudrandariki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बचपन में नंबर 9 पे हम लोग ट्रेन पकड़ा करते थे. कंपार्टमेंट में एक शख्स आकर बैठते थे और विस्लिंग किया करते थे. तो मेरे बड़े भाई साहब कहते हैं, यार ये कमाल सीटी बजाती है, ये कौन है? फिर पता चला कि मदन भैया हैं. मदन भैया की मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन थी. इतना प्यार कि जब मैं गाने गाता था स्कूल में या कॉलेज में, तो वहाँ आकर जब ये जज होते थे, सुनते थे, मुझे गाइड किया करते थे, कहते थे कि अपनी इंडिविजुअलिटी रखनी चाहिए,

0: जब से तुम्हें देखा सनम दिल बेकरार।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।